0: इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: நமஸ்கார்
2: ஸ்ரோதரந்திரிக்கு ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்.
3: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
4: ரேடியோ மொரிஷியஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹை ஆப் சபீ கா.
0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

यन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से श्रावण मास के उपलक्ष्य में शिव संवाद के रूप में यहाँ पर बिल्वाष्टकम का कुछ विशेष मैं प्रस्तुत करूँगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म

0: अर्पणम। हम भगवान शिव जी को बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, लेकिन बिल्वाष्टकम में एक एक शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरह से बताया है, जो शिव पुराण के अनुसार है। और शंकराचार्य जी ने वो बिल्वाष्टकम का रचना किया है, उसमें कहा है तीन दलों वाला तीन गुणों, जिसमें तीन गुणों कौन सा है, सत्व रज और तम का स्वरूप तीन नेत्रों वाले भगवान शिव को प्रिय और तीन जन्मों के पाप का नाश करने वाला यह एक बिल्व पत्र में भगवान शिव जी को अर्पण करता हूँ। दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर सी बात की गई है, त्रिशाखे बिल्व पत्रश्च अच्छिद्रे कोमले तथा तव पूजाम करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। हे शिव, मैं तीन शाखाओं वाले बिना टूटे हुए कोमल और शुभ बिल्व पत्रों से आपकी पूजा करता हूँ, यह एक बिल्व पत्र मैं आपको अर्पण करता हूँ। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्व वृक्ष का दर्शन और स्पर्श से भी पापों का नाश करने वाला माना गया है, ऐसे पवित्र बिल्व पत्र को मैं शिव को अर्पण करता हूँ। काशी क्षेत्रे निवसासम च काल भैरव दर्शनम प्रयागे माधवम दृष्ट्वा एक बिल्वम शिवार्पणम। काशी में निवास, काल भैरव के दर्शन और प्रयाग में भगवान माधव के दर्शन के समान पुण्य देने वाला यह बिल्व पत्र में शिव को अर्पण करता हो। इस श्लोक में बहुत अच्छी बात की गई है, काशी में भगवान काल भैरव का दर्शन जो करना है वो भी बहुत पुण्य की बात होती है, और प्रयाग जहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, जहाँ पर महाकुंभ हुआ था, वही जगह पर माधवम माधव भगवान विष्णु का दर्शन के समान पुण्य देने वाला ए बिल्व अर्पण का पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रैः शुरगणेशेव्ये मानं पापहारकं बिल्वपत्रं प्रयच्छामि एक बिल्वं शिवार्पणम्। कहा है कि जिस बिल्वपत्र की सेवा देवता भी करते हैं और जो पापों का नाश करने वाला है, ऐसा बिल्वपत्र मैं भगवान शिव को अर्पण करता हूँ। आज के जो यहाँ पर बिल्वाष्टकम का जो विस्तृत हुआ उसको यहाँ पर विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। अना

0: मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर के उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। अपुण्याम यत्र पुण्यते पुञ्जयतो न पूज्यते त्रेणि तत्र भविष्यति दारिद्र्यम मरणम भयम्। जहाँ अपूज लोगों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती वहाँ दरिद्रता मृत्यु एवं भय ये तीनों अवश्य होंगे। परमेशां वलदे दनं कर्म न कार्यते यत् सदाचरणं परम द्वेष्टि परमेशां यदात्मनां समृत्तदेजते। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्विज रखता है वह द्विज अपने लिए ही होता है। दातुताम परीक्षाम दुर्भिक्षम रणे सिद्ध्यम जायते आपकाले न तु मित्रास्यतिम त्रिणीम कुलम ही निवेयते संकटे प्राप्तस्य परोक्षित स्नुयस्याम यथा तत्व नन्याथम सत्यमरीक्षते। दुर्भि पकड़ने पर दानी की युद्ध स्थल में शूरवीर की आपत्ति काल में मित्र का समर्थन हो पर स्त्रियों की तथा कुलनी नम्रता तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोपकाल में होता है यह अन्यथा नहीं सत्य कहा गया है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से आज ट्यूजडे 4 अगस्त के इस कार्यक्रम में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शिव सती चरित्र का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, कल जहां से विराम लिया था हम लोग वहीं से आगे बढ़े। भगवान शिव और माँ सती ने दोनों ने श्री राम जी की दर्शन की। राम के दर्शन पा करके भगवान शिव अति आनंदित हुआ, परंतु सती माता की दशा कुछ और ही था, जिसको तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं सती

सती जी ने भगवान शंकर की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत उनकी वंदना करते हैं, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं।

0: कि शिव जी ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रसन्न मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? आज के लिए हम यही तक पाठ करें। कल इस कार्यक्रम के माध्यम से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वैदिक मंत्र। ओम ईशावास्यमिदं

सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। प्रिय श्रोताओं, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला ही मंत्र है जिसको हम ईशोपनिषद के नाम से भी कहते हैं। उपनिषद विद्या बहुत ही हमारे जीवन को बनाने वाली विद्या है। अध्यात्म की शिक्षा ये देती है, हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे इस आने का उद्देश्य क्या है। ये बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी मंत्र है। और यदि मैं इस मंत्र के बारे में कहूँ तो ये हमारे जीवन का एक तरह से निचोड़ है। पहला ही इस मंत्र में एक बात कही गई है, ईशावास्यमिदं सर्वम्। इदम सर्वम का मतलब है यह सब, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत है, संसार है, ये सब ईश से आच्छादित है, परमात्मा से आच्छादित है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं, इसीलिए तो भगवान की घोषणा है। परमात्मा कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, कण कण में बसा हुआ है। वो परमात्मा कैसा है? अज निरंजन सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसा परमात्मा। उसके बारे में कहा कि इस संसार के प्रत्येक कण को अर्थात प्रत्येक पार्टिकल्स को वो गति देने वाले हैं। इसीलिए तो कहा इस वेद मंत्र में यत किंच जगत्याम जगत, निरंतर गतिशील विशाल ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी निरंतर गतिशील हमारा ये संसार है, पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर कोई न कोई चेतनता भरने वाला है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। जगती के अंदर जो जगत, सारे संसार के अंदर अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, सारा संसार भी इन्हीं से बना है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण मिलकर के प्रत्येक संसार का पदार्थ बना हुआ है। जगत का मतलब है संसार, उसके एक एक कण में मानो वो ईश छिपे हैं, कण कण में जो रमा है, ऐसा जो परमात्मा है उसकी हम उपासना करें, उसका ध्यान करें। आप किसी भी वेद मंत्र को लेकर के उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और इस मंत्र को हमेशा हमें जीवन में याद रखना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात उस परमात्मा के द्वारा दिए गए संसार को कैसे भोगो? त्याग भाव से भोगो, अथवा प्रभु के द्वारा प्रदत्त इस संसार के पदार्थों का हम त्याग पूर्वक उपभोग करें। हम ये न सोचें कि ये सारे पदार्थ हमारे लिए ही बने हैं। त्याग का मतलब है उसमें अपनत्व की भावना न रखें। हम धन्यवाद करें उस ईश्वर का जिसने हमें ये सारे सांसारिक पदार्थ दिए हैं। मा गृध कस्य स्विद्धनम्, हम किसी के पदार्थ की लालच न करें। ये धन किसी का नहीं, उस ईश्वर का है। ये बहुत ही प्यारा मंत्र है, इसको हम हमेशा गुनगुनाते रहें। आप सबका धन्यवाद। प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम वेद संदेश के श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं

वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित। ओम यदि जति पतति यच्छतिष्ठति प्राणद प्राणन्निमिषश्च यत् तद्दाधार पृथिवी विश्वरूपं तत्संभूय भवति कमेव। एक अद्वितीय ब्रह्म विचित्र प्रकार जगत को रचकर सबका धारण पोषण करता है।

भूतमूत भव्यमस्य। अनंत मोक्ष स्वरूप परमात्मा कारण कार्य रूप जगत तथा भूत भविष्यत और वर्तमान काल को जानता हुआ सदा वर्तमान है। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरदिश्यमानो बहुधा विजायति अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमसकीतु। परमात्मा अज्ञानियों को नहीं दिखता, उसको विवेकी जन सूक्ष्म दृष्टि से सबके भीतर व्यापर गाते हैं। उसी ईश्वर की सामर्थ्य से यह जगत उत्पन्न हुआ है और उसी की शक्ति में अनंत कारण रूप पदार्थ वर्तमान है। ओम ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं कुंभीनिवोदहार्यं पश्यन्ति सर्वचक्षुषा न सर्वे मनसा विदु। प्रायः मनुष्य परमेश्वर को उसकी स्थूल रचनाओं से देखते हैं, जैसे कूप में से घड़े द्वारा को, परंतु विवेकी पुरुष उस उन्नतिकर्ता ईश्वर को उसकी सूक्ष्म रचनाओं से अनुभव करते हैं। ओम दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊने नहीयति महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभृतो भरन्ति। परमात्मा को विद्वान लोग सब स्थान में पाकर और होकर आनंद भोगते हैं और मूर्ख जन उसे न जानकर सदा दुखी रहते हैं। उसी महाराजाओं के महाराज की सब उपासना करें।

0: हम आपके गुणगान उत्कृष्ट रूप से करते रहें। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हम सब लोग प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करते हैं, आपके बताए हुए दिव्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, धर्म मार्ग पर चलकर ही अपने आचरण को शुद्ध करते हैं। जैसे मनुष्य जगत पोषण एवं अपने प्राणों की रक्षा के लिए धरती में अन्न उपजाता है, उसी प्रकार परमात्मा की कृपा एवं ज्ञानी विद्वानों के सहयोग से मनुष्य अपने मन मस्तिष्क में ज्ञान रूपी बीज बोकर वेद व सत्य विद्या से अपने आप को ज्ञानवान, विद्वान एवं सामर्थ्यवान बनाए। ऐसा व्यक्ति प्रभु की उपासना में लगा रहता है ताकि उसका कोई शत्रु न बने। हे सर्वसंपन्न प्रभु, आप सब पर कल्याण की वर्षा करें।
1: ओम त्वमीशे सुतानाम इंद्र त्वम असुतानाम त्वम राजा जनानाम।
0: परमात्मा ही शुभ कर्मों का प्रेरक और सब लोकों का स्वामी है। वह कुकर्मियों व अकर्मियों का भी स्वामी है, वही सबका शासक है। परमात्मा को कोई माने या न माने, चाहे कोई प्रार्थना करें या न करें, किंतु वह न्यायपूर्वक सब पर शासन करता है। परमात्मा सबका राजा और न्यायकारी होने से सबके कर्मों का निरीक्षण करता है और अपनी न्याय व्यवस्था से सबको फल प्रदान करता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल देता है, इसलिए परमात्मा न्यायकारी और पूज्यतम है।

परमात्मा छल कपट आदि विकारों से रहित हैं, वह शुद्ध स्वरूप और निराकार हैं, जड़ और चेतन तत्व उसी के अधीन हैं, सभी जीव उसी के आदेश अनुसार संसार में विचरण करते हैं। परमात्मा ही द्युलोक एवं पृथ्वी आदि लोकों को संतुलन में रखता है, वह परम पावन होने से सबको पावन बनाता है। जो कोई भी उस परमात्मा के गुणों का कीर्तन करता है, वह परमात्मा जैसे ही पावन बन जाता है एवं छल कपट आदि विकारों से रहित हो जाता है।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
2: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

नमस्कार रौदा पानी के रिजर्व घटते जा रहे हैं सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने फिर से अपनी वितरण योजना पर गौर किया आते सोमवार से नए कदम लागू किए जाएंगे पूरे देश में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल बुधवार से जलापूर्ति को 2 घंटों से कम करने का फैसला लिया गया 10 अगस्त से नए कदम लागू किए जाएंगे सिर्फ सब्जियों के खेतों में सिंचाई की जा सकेगी कौ वाश स्थलों को पीने का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और उच्च दबाव वाली मशीनों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा तथा नल पानी से स्विमिंग पूल को भरने की अनुमति भी नहीं होगी अनाबेल सवाबादी नई जूनियर पर्यटन मंत्री बनी है और तुनिया पोलो नए जूनियर स्पोर्ट्स मंत्री कल दोनों ने स्टेट हाउस रेजी में शपथ ली कारेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय की जूनियर मंत्री बन गई हैं राजनीतिक स्तर पर वेरोनिक लोगोविन ने कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री की हैसियत से इस्तीफा दिया उनके पति

0: गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के चलते उन्होंने स्टेप डाउन करने का फैसला लिया है और वेरोनिक ले गोविंद ने नूवो डेमोक्रेट पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। आज राष्ट्रसभा के एजेंडे में दो अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल की पेशकश और राष्ट्रसभा में क्रेओल मॉरिशियन के इस्तेमाल करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन शामिल है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की जा रही है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका ये बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब तक ईरान के विदेश मंत्री ने वाशिंगटन के साथ बातचीत करने के दावे को झुठलाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। मस्करिंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिराएंगे, पूर्व और सेंट्रल प्लाटू में बारिश होगी, दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। आज रात घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं और लगनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में, इसी वजह से पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में ना जाने की सलाह है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:38 पर और आज शाम को 5:53 पर सूरज ढल जाएगा।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

إنه قد جاء أمر ربك.

0: جل جلاله الله العظيم
1: ما شاء الله
0: الله أكبر
2: مسومة عند ربك.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। सामीन, आला हज़रत के कलाम में हर लफ्ज़ में इश्क़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू बसी है। आपके हर हर शेर पर लाखों करोड़ों उशाक कुर्बान होती हैं। आइए आला हज़रत का ये मशहूर कलाम समाप्त

0: आला हजरत और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामीन, ये नूरानी बयान मौलाना शाकिर अली नूरी दामत बरकातु मालिया की जबानी समाप्त कीजिए।
1: फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद अफलह मन तज़क्का वज़कर रस्मा रब्बिही फसल्ला, बल तुसिरून अल हयातद दुनिया वल आखिरा वल्आखिरतु खैरुन व अबका, सदकल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस माह मुबारक की 25वीं शब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतु वर रिज़वान के विसाल की शब है। दुनिया में जब कभी रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़ुज की बात आई, तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों ने अपना तन मन धन सब कुर्बान करके तहफ़ुज़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानियाँ पेश की। आज दुनिया में जहाँ कहीं भी आला हजरत कहा जाता है तो उसी नामोस रसालत के मुहाफ़िज़ इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतु वर रिज़वान की शख्सियत निगाहों के सामने और दिलो दिमाग पर उभरने लगती है। आप अंदाजा लगाइए, कभी एक बंदे को सुधारने के लिए घर के सारे अफराद मेहनत करते हैं, नहीं सुधर पाता। कभी उस एक बंदे को सुधारने के लिए खानदान के सारे अफराद मेहनत करते हैं, नहीं सुधर पाता। कभी उस एक बंदे को सुधारने के लिए सोसाइटी के जिम्मेदारान मेहनत करते हैं, वो नहीं सुधरता। कभी कभी एक बंदे की खातिर हुकूमत मेहनत करती है लेकिन वो एक बंदा कंट्रोल में नहीं आ पाता। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक बंदा कायनात के इंसानों को सुधारने वाला बन जाता है। एक बंदे को सुधारने के लिए कायनात मेहनत करती है और नहीं सुधार पाती। और कभी ऐसा होता है कि एक ही बंदा होता है और कायनात के गलत रास्ते पर चलने वाले इंसानों को मदीने का रास्ता दिखा देता है। हमें आज की गुफ्तगू में आला हजरत की अजमत के राज को समझना है और कामयाबी के असबाब को तलाश करना है। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब्बे कदीर ने अपने उन बंदों की कामयाबी का सबब बयान फरमाया जिन बंदों की कामयाबी का मुज़दा खुद रब अता फरमाता है। कद अफलहा मन तज़क्का, बेशक कामयाब हो गया वो जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। दिल की पाकी ये सबसे अहम चीज है, तज़किए नफ्स और तज़किए क़ुलूब ये सबसे अहम चीज है। हम अपने वजूद को इस्लामी सांचे में ढाले रखें और दिल हमारा गुनाहों में डूबा हुआ हो, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारा वजूद इस्लाम की तबलीग कर रहा हो और हमारे दिल के अंदर शैतान घर कर बैठा हो, हम कभी कामयाबी और कामरानी से हमकनार नहीं हो सकते। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मकसद को भी जब कुरान ने बयान किया और सरकार की तालीम और तबलीग के हवाले से जब कुरान ने कहा तो यही कहा कि हुजूर ने पहला काम क्या फरमाया, तो कुरान कहता है कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकम। ये रसूल आयतों की तिलावत करते हैं और तुम्हारे दिलों को पाक करते हैं। दिल का पाक होना यह बेपना जरूरी है, दिल की सफाई ये बेपना जरूरी है। जब इंसान का दिल गुनाहों से पाक हो जाता है और शैतानी वसाविश से पाक हो जाता है तो उस बंदे की कैफियत ये होती है कि गुदड़ी पहन कर भी कहीं निकल जाए कामयाबी खुद उसके पीछे पीछे चला करती है। हम हजार लिबासे फाखरा पहन करके जाएं हमें कामयाबी मयसर नहीं हो पाती, लेकिन अल्लाह वालों का आलम यह होता कि वो गुदड़ी पहनकर कहीं बैठे होते थे तो कामयाबी खुद उनकी तलाश में निकल पड़ती थी। वजह यह थी कि उनका मन पाक था, उनका दिल पाक था, उनके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस तरह से जागजी थी कि अल्लाह अकबर दुनिया की हजार हाथ दौलत उनके कदमों में रख दी जाए और कहा जाए कि ये मोहब्बत दे दो तो दुनिया को ठोकर मार देते थे और अपने दिल को अपने

महबूब की मोहब्बत में लगाए रखते थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला नो दिल हुजूर को दे बैठे थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला नो दिल रसूल आजम के दरबारे गौहर बार के अंदर रख चुके थे। इसीलिए तो फरमाते हैं, अरे ऐ रजा तेरे दिल कब पता चला बमुश्किल, दरे रोजे के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया। आला हजरत फरमाते जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हम लोगों का हाल तो ये है कि मदीने में भी रहकर दिल कहीं रहता है, लेकिन आला हजरत का हाल ये है कि कहीं भी रहते हैं लेकिन दिल मदीने में रहता है। ये दिल की कैफियत, ये कामयाबी का राज है, बहुत बड़ा कामयाबी का राज है। मैं कहता हूं कि हम लोगों ने जो दावत का एक मिजाज और सिस्टम बनाकर रखा है उसमें हम ढांचे को इस्लामी बना रहे, वजूद को इस्लामी, लेकिन मैं कहता हूं हमारा वजूद इस्लामी हो उसके फवाइद अपनी जगह पर हैं, लेकिन खबरदार अगर दिल को हमने इस्लामी नहीं बनाया तो हमारा वजूद इस्लामी होने के बाद भी गलत रास्ते का शिकार हो सकता है। इसलिए सरकार और सहाबा ने पूरी मेहनत दिल पर फरमाई, कल्ब पर फरमाई, और दिल से खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा सारी मोहब्बतों को निकालकर फेंक दिया, और जब गर्दन झुकाते तो उन्हें मदीना नजर आ जाता। मुझे याद आ रहा है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया, मदीनतुर रसूल के अंदर है। एक रात ख्वाब में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, आका फरमाते हैं अब्दुल हक हिंदुस्तान जाओ, दीन की खिदमत करो। अर्ज करते हैं पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तबीयत जब बेचैन होती है आपके रोजे पर हाजिर हो जाता हूं, तबीयत को सुकून मिल जाता है। हिंदुस्तान में तो ना आपकी जाली होगी ना आपका गुंबद होगा, वहां तबीयत बेचैन होगी तो क्या करूंगा। तीन रोज तक आका ख्वाब में आते रहे और यही फरमाते रहे, और आप तीन रोज तक यही माजरत पेश करते रहे। आखिरी रोज मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शेख अब्दुल हक हिंदुस्तान जाकर दीन की खिदमत करो, यहां जब तबीयत बेचैन होती है तो मेरा गुंबद देखते हो तुम्हें सुकून मिल जाता है, लेकिन मेरे दीन की खिदमत करो, हिंदुस्तान में तबीयत बेचैन हो गर्दन झुका लेना, मुझे देख लिया करोगे मेरा जलवा नजर आ जाएगा। वजह क्या थी, आका ने उनके दिल को साफ कर दिया था, दिल को सुथरा फरमा दिया था। अब अगर यही कैफियत हम आला हजरत की जिंदगी में तलाश करते हैं कि तन्हा है इमाम अहमद रजा, बरेली की चटाई पर बरेली की गली में रहने वाले वो इमाम इश्क मोहब्बत आज पूरी दुनिया के सुन्नियों के दिलों की धड़कन कैसे बन गए, कैसे बन गए। तो याद रखो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिलों की धड़कन बनने की वजह यह थी कि दिल रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज पर उन्होंने कुर्बान कर दिया, इस तरह कुर्बान कर दिया कि उनके दिल के साफ और शफाफ होने की गवाही किसी और ने नहीं, दुनिया के मुरीद अपने पीर के गुण गाते हैं, लेकिन ऐ इमाम अहमद रजा आपकी अजमतों पर कुर्बान कि ये 22 साल जवान जब मारारा की जमीन के ऊपर कदम रखते हैं और दाखिले सिलसिला होना चाहते हैं तो सैयद आले रसूल अली रहमत व रिजवा उसी मौके पर इमाम अहमद रजा को एक ही लम्हे के अंदर मुरीद भी कर लेते हैं, खिलाफत भी अता कर देते हैं। उस मौके पर मौजूद लोगों ने आला हजरत के शेख से अर्ज किया कि हुजूर ये क्या बात है, जब दूसरे लोग आते हैं तो मुजाहिदा करवाया जाता है, चिल्ले करवाए जाते हैं, औरादो वजाइफ की मंजिलों से गुजारा जाता है, तब जाकर मुरीद किया जाता है, लेकिन ये 22 साल जवान आया उससे आपने फौरन मुरीद भी कर लिया, खिलाफत भी अता कर दी, तो वजह क्या है। तो आला हजरत के शेख जवाब देते हैं कि दूसरे लोग आते हैं तो दिल जंग आलूद लेकर आते हैं, अहमद रजा आए थे तो अपना दिल साफ लेकर के आए। ये है दिल की सफाई, ये है दिल की सफाई। और याद रखो इसी दिल पर सारे जिस्म का दारोमदार है, सारा दारोमदार। लिबासे फाखरा को इंसान देखता है और दिल को मेरा परवरदिगार देखता है। जब कोई चीज चलती है तो धुआं निकलता है, मेरे वालिद साहब का दिल भी सरकार की मोहब्बत में चलता रहता था जिससे धुआं निकलता था और ये छत उससे सियाह हो चुकी। आप अंदाजा लगाइए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शहसवार सज्जदना सिद्दीक अकबर से जब पूछा गया दुनिया की चीजों में तुम्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद,

फरमाते हैं, अन्नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा को देखना ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद। इन्फाको माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माल को हुजूर पर खर्च करना मैं उसको सबसे ज्यादा महबूब समझता हूं। और फरमाते अपनी बेटी को सरकार के अक्द में देना मैं उसे भी पसंद फरमाता हूं। आप अंदाजा लगाइए ये थी मोहब्बत रसूल। याद रखें, इस बात को जहन के अंदर बिठा लो, हमने आज तक अपने जाहिर को संवारने की बेपनाह कोशिश की लेकिन जाहिर संवार कर हम कामयाब ना हो सके, कामरान ना हो सके। जैसी कामयाबी हमें मतलूब थी या हम जिसके मुतमन्नी थे, कामयाबी के हवाले से मेरे रब ने फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, बेशक कामयाब वो हुआ जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, दिल को पाक कर लिया। जाहिर को दुनिया देखती है और कुरान कहता है, हदीस मुस्तफा कहती है, मेरा रब फरमाता है यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, दिल की छुपी हुई कैफियत को तुम्हारा रब देख रहा है। बल्कि एक मकाम पर तो मेरे रब ने फरमाया वनालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा, जो वसवसे तुम्हारे नफ्स में पैदा होते हैं अल्लाह फरमाता है हम उससे भी बाखबर हैं, हम उसे भी जानते हैं, उसे भी जानते हैं। अगर हमने कामयाब होना है तो हमारे दिल में लगे हुए गुनाहों के दरख्त को हमने मिटाना होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत अपने दिल को इस तरीके से गुनाहों की आलाइश से और ख्वाहिशात नफसानी से पाक कर बैठे थे और हुब्बे दुनिया से ऐसा पाक कर बैठे थे कि आज दुनिया का इंसान नवाबों की तारीफ करते अपनी जबान को रोकता नहीं। लेकिन जब नवाब नानपारा ने आला हजरत से कसीदा लिखने के लिए कहा था तो उस वक्त भी इमाम अहमद रजा का कलम और उनका इश्क यही कह रहा था करूं मदह अहले दुवल रजा, करूं मदह अहले दुवल रजा, मालदार की तारीफ में करूं, पड़े इस बला में मेरी बला, इस बला के अंदर तो मेरी बला पड़े, मैं गदा हूं अपने करीम का। अरे दुनिया का बादशाह उसकी तारीफ करने पर क्या दे देगा, तो तारीफ के बोल चंद जमीन के टुकड़े यही तो दे सकता है, लेकिन इसका खजाना खत्म हो सकता है, मुस्तफा की अता कभी खत्म नहीं हो सकती। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मैं तो अपने करीम का गदा हूं, रोटी का टुकड़ा ये मेरा दीन नहीं है। इमाम इश्क मोहब्बत ने कलम चलाया तो मोहब्बत रसूल में, जबान खोली तो इश्क रसूल में, और वजूद को तड़पाया है तो सरकार की मोहब्बत में तड़पाया। किसी खैर का गुजर ही नहीं था। मैं अक्सर कहा करता हूं दो जात की मोहब्बत में आला हजरत गुम थे, एक रसूल आजम और एक गौस आजम, दो जात ऐसे मोहब्बत में डूबे हुए थे, ऐसे डूबे हुए थे कि बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं तो अर्ज करते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बताओ ना ये दिल अगर हुजूर को ना दें तो किसको दें? भाई दिल इंसान किसको देता है? बहुत ज्यादा कोई हसीन हो उसे दे दे, खूबियों का मालिक हो उसे दे दे, कमालात का जामे हो उसे दे दे, क्या मेरे मुस्तफा से बेहतर भी हसीन कोई हो सकता है? मैं जिंदगी रही तो कुरान की रोशनी में सरकार के जमाल के हवाले से जब आपके सामने कि बेशुमार चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई और बेशुमार चीजों की खूबसूरतियों का जिक्र भी कुरान में उसने बयान किया, लेकिन किसी खूबसूरत चीज की कसम मेरे मौला ने याद नहीं फरमाई। अगर कसम याद फरमाई तो रुखे मुस्तफा की कसम याद फरमाई, जमाल मुस्तफा की कसम याद फरमाई। आज की ये ख्वाहिशात नफसानी के दौर के अंदर मुसलमानों को चाहिए कि इमाम अहमद रजा के इस पैगाम को, इमाम अहमद रजा के इस मिशन को, इमाम अहमद रजा की इस तालीम को कि जियो तो मोहब्बत रसूल में और मरो तो मोहब्बत रसूल में, इसको अपना लो, तुम जहां जाओगे मोहब्बत रसूल तुम्हारी कामयाबी का सरिया बन जाए। निकाल दो दिल से सारी मोहब्बत को, निकाल दो सारे गुनाहों के दरख्तों को, मिटा दो उसे, खत्म कर दो। ये माल की मोहब्बत हो या दूसरी मोहब्बतें हो, ये मोहब्बतें तुम्हें रुसवा तो कर सकती हैं, इज्जत नहीं अता कर सकती, लेकिन मेरे हुजूर की शान ये है पत्थर मोहब्बत करता है।

0: तो इज्जत मिल जाती है, दरख्त मोहब्बत करता है तो इज्जत मिल जाती है, जबल ओहद पत्थरों का पहाड़ है मेरे हुजूर से मोहब्बत किया तो हुजूर ने फरमाया ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। सुतून हन्नाना ने मोहब्बत किया उसे जन्नत की तमामी जिंदगी अता फरमा दी, खच्चर ने मोहब्बत की उसे जन्नती बना दिया, कंकरियों ने मोहब्बत की उसका मर्तबा बुलंद कर दिया। तो जब जानवर दरख्त और शजर और हजर हुजूर से मोहब्बत करे तो उसे इज्जत मिल सकती है। तो ऐ अशरफुल मखलूकात अगर तुम मोहब्बत करो तो क्या तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। आला हजरत ने पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया, यही पैगाम दिया, मोहब्बत रसूल में तड़पो, मोहब्बत रसूल में जियो, सरकार की मोहब्बत को अपने लिए लाजिम बना लो। और मैं तो कहता हूं आज के दौर की हर मां की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को दूध के साथ साथ रसूल की मोहब्बत पिलाए। ये वो मोहब्बत है जो मरने के बाद भी तुम्हें कायम, तुम्हें परवरदिगार की बारगाह से सुरखरुई हासिल करा सकती है। बस मेरी गुजारिश ये है, दिल पाक कर लो, रसूल आजम की मोहब्बत सीने में बिठा लो, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बताए हुए खतूत पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो।
1: आला हजरत और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी इल्मे बयान अभी आप समाप्त कर रहे थे मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी की जबानी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आइए सामीन मनकबत की सूरत में खिराज अकीदत पेश करते हैं इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मनकबत समात करके आप भी इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह से अपनी मोहब्बत मजबूत कीजिए।

महाबा

हमला जब भी करारा अजमत शाह सी पे हुआ है हमला जब भी करारा उसको रजाने नो के कलम से उसको रजाने नो के कलम से कर दिया पारा पारा तारा भजगा तारा भजगा।

आला हजरत का दरबार वो दरबार है जहाँ शब रोज लाखों की तादाद में जायरीन अपने दामन को कुशादा करते हैं और झोलियाँ भर भर के वापस आते हैं।

काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। सबल खैर, प्रोग्राम का मुकर्रा वक्त यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। आपकी तवज्जो के हम बेहद मशकूर हैं। अगली मुलाकात तक अनवर को रुख्सत की इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

भक्ति पेरुम नाथ के लिए मुरुग पेरुमानें अलगुदन अलंकरित्तु उरिय मंदिरंगलेयुं पाडल्गलेयुं ओडि वरुगिंदवर नम भक्तर्गल अन्बनुक्कु अन्बनीनी वावा शन्मुगा तिरुमति नागन राधा नागन अवर्गल कुरलिल वरुं पाडल इदु

शक्ति। मंगलवार 4 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:46 हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन, सुमिता की ओर से सादर प्रणाम। स्वीकार करें भक्ति गीतों का कार्यक्रम, भक्ति में शक्ति लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में। अभी से लेकर दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं। मंगलवार का दिन बहुत ही मंगलमय व्यतीत हो रहा होगा और अभी जो हमारे आसपास वातावरण है वो भी कितना पावन है, है ना। हम सावन के महीने में हैं। सावन का जो महीना होता है अपने आप में बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो सावन के इस महीने की मंगल कामनाएं, हर दिन कुछ ना कुछ व्रत होता है, कोई ना कोई विशेष अनुष्ठान होता है, तो आपकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं भगवान शिव उन्हें अवश्य पूर्ण करें। और सावन का महीना है तो हमने सोचा कि आज भगवान शिव की आराधना करते हुए हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

तो चलिए यहां पर भक्ति में शक्ति यह कार्यक्रम है श्रोताओं और ईश्वर के प्रति थोड़ी सी भी आस्था हो ना तो जीवन में बड़े से बड़े मुश्किल को हम पार कर पाते हैं। अभी का जो हमारा समय है काफ़ी कभार संघर्षपूर्ण होता है, जीवन में हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति जो है अपना दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हम करना भूल जाते हैं। कभी कभार हमें जो नहीं मिलता है जीवन में हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ये भूल जाते हैं कि कितना कुछ हमें मिला है। तो चलिए इसी के साथ इस अगले भक्ति गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

चलिए, इस मानव जीवन में कहीं ना कहीं हमें सबके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, सबके भले के बारे में सोचना चाहिए, सबके प्रति एक करुणामय हृदय होना चाहिए, क्योंकि यही तो मानव ये मूल्य है हमारे, जो हमारे जीवन को जीवन बनाते हैं। यदि कोई कष्ट में है और उसे देखकर हम उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम अपने जीवन को क्या उस तरह से जी रहे हैं जिस तरह से जीना चाहिए? यदि किसी को हमारी आवश्यकता है और हम उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उसके दुख में हमें जो है दुखी नहीं हो रहे हैं, उसके सुख में हम खुश नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को वैसे व्यतीत नहीं कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए। क्योंकि एक का कष्ट अपने आप में दूसरे का कष्ट होता है। क्योंकि परिवार में अगर हम देखें श्रोताओं, अगर एक व्यक्ति दुख से गुजर रहा है, दुख से व्यतीत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है उस दुख को की अनुभूति करता है। तो बहुत आवश्यक होता है कि हम अपने जीवन में इन सभी मानवीय मूल्यों को जो है सम्मान करें, उसका आदर करें। यदि किसी को हमारी आवश्यकता है, उसकी सहायता करें बिना किसी चीज़ के, मतलब कि ये ना सोचे कि मैं उसके लिए ये करूँगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। जो मिलना है वो मिलेगा, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, है ना। तो चलिए, यहाँ पर इसी के साथ अगले भक्ति गीत की ओर हम बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं श्रवण मास की बात करें तो भगवान शिव माता पार्वती की आराधना का तो मास है ही, साथ ही प्रकृति को निहारना, प्रकृति का सम्मान करना, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि प्रकृति जो है जननी है, प्रकृति हमें बस देती है, प्रकृति जो है बदले में हमसे कुछ लेती नहीं है।

जी हाँ, एक भी जीवन का क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर ईश्वर का नाम नहीं होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि हमारे हर श्वास, हमारे हर पग पर ईश्वर का नाम होना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे पग हमें ले जाए, ईश्वर हमारे साथ हो, उनका आशीष हमारे साथ हो, क्योंकि यही तो एक आंतरिक शक्ति है जो हमें जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जो भी लक्ष्य हमने अपने जीवन में साधा है, उस लक्ष्य को तब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे भीतर सच्चाई न हो, हमारे कार्य के प्रति आस्था न हो और उस परमपिता परमेश्वर के प्रति विश्वास न हो।

0: का प्रतीक है, वे जो है भक्ति का प्रतीक है, वे हमें बुद्धि भी प्रदान करते हैं, चतुराई भी प्रदान करते हैं कि किस परिस्थिति में किस तरह से हमारा जो है निर्णय होना चाहिए। क्योंकि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, उस परिस्थिति के अनुकूल हम निर्णय कैसे लेते हैं ये हमारे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो शांत मन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, तो विचार भी अच्छे होते हैं, और जब विचार अच्छे होते हैं तो कर्म भी अच्छे होते हैं, और अच्छे कर्मों के चलते जीवन भी अच्छा होने लगता है।
1: भक्ति में शक्ति।

0: शक्ति।
1: जी हाँ, परम पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की बात करें तो वो बल का प्रतीक है, वो शक्ति का प्रतीक है, वो निष्काम कार्य

बेड़ा पार। श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा भक्ति में शक्ति कार्यक्रम समाप्त होने को चला। मंगलवार का दिन सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। 11:30 बजे जिनकी प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे चाइनीज भाषा में कार्यक्रम, और हम आपसे दोबारा मिलेंगे 12 बजे सुहाना सफर इस प्रोग्राम में। तो धन्यवाद आपके प्यार भरे साथ के लिए। जुड़े रहिएगा रेडियो मनोरंजन पर ऐसे ही।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सुधिया संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार आपको
4: नमस्कार आदाब राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का सत्र फिलहाल चल रहा है और जो प्रधानमंत्री को संबोधित हैं पिछले 31 जुलाई को मिस्टर जी पर और ऑनरेबल वीएलजी के घर की तलाशी के सिलसिले में जुली जुंगा जानना चाहते थे कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या क्या जब्त किया गया. वे ये भी जानना चाहते थे कि क्या फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ड्रग तस्करी से प्राप्त पैसों के मामले में संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में पूछताछ कर रहा है या नहीं और क्या अटॉर्नी जनरल दफ्तर ने रीडन टापू से कानूनी मदद की मांग की है या नहीं. अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 26 जुलाई 2026 को खबर मिली थी कि दो व्यक्ति एक स्पीड बोट से रीनन टापू से आ रहे थे. 10 बड़ी काली थैलियों को जब्त किया गया. इनमें गांजा था जिसकी लागत 233 मिलियन रुपए से ज़्यादा की है. फौरन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और पुलिस की दूसरी इकाइयों के अफसरों को तैनात किया गया. सभी जांच और प्रारंभिक सबूतों के आधार पर मिस्टर जी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनका नाम और ससुर इंडियन टापू के बीच ड्रग तस्करी में आया. एफसीसी उनकी सभी संपत्तियों के बारे में पूछताछ कर रहा है और उनकी पत्नी मिसिज वीएलजी के तमाम जायदाद को लेकर भी. प्रधानमंत्री ने कहा कि मौसम दिलामो के खिलाफ उनकी सरकार कभी दया नहीं दिखाएगी और किसी भी तरह का कवरअप भी नहीं करेगी. और आज राष्ट्रीय सभा के कार्यों के दौरान वेटलैंड्स की हिफाजत एजेंडा में शामिल रहेगी. कृषि उद्योग खाद्य सुरक्षा एवं ब्लू इकोनॉमी मंत्री पहली परहत पर वेटलैंड्स बिल को पेश करेंगे. इस विधेयक का मकसद सरकारी और निजी दोनों तरह की जमीनों पर मौजूद वेटलैंड्स के संरक्षण और बहाली के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार करना है. बिल के तहत एक नेशनल वेटलैंड्स कमेटी कायम करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा वेटलैंड्स के आसपास बफर जोन्स बनाए जाएंगे और इन सुरक्षित इलाकों में किसी भी तरह की गतिविधि या निर्माण का काम शुरू करने से पहले परमिट लेना लाजमी होगा. दूसरा अहम मुद्दा राष्ट्रसभा में क्रियोल मॉरिशियन का इस्तेमाल होगा. इस सिलसिले में एक मोशन पेश किया जाएगा जिसके जरिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन किया जाएगा. ये समिति संबंधित पक्षों की बात सुनेगी, जरूरी दस्तावेजों का अध्ययन करेगी और 12 मार्च 2026 को जारी स्टीयरिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा लेगी. कमेटी जरूरत पड़ने पर माहिर सलाहकारों की मदद भी ले सकेगी. इसके बाद वो राष्ट्रसभा की बहस और अन्य संसदीय कार्यों में खेल मुहिसे के इस्तेमाल पर अपनी सिफारिशें भी पेश करेगी. विदेश की खबरों में पूर्वी एशिया में शदीद गर्मी का मसला है. जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य पूर्वी एशियाई मुल्कों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हैं. अभी काफ़ी नुकसानात हुए हैं क्योंकि गर्मी की वजह से आम जिंदगी तहस नहस है. जानवरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. बनवेन कौचे मिलितिया में 78 साल की 78 years old मोहतरमा शेख बीबी आबेदा जानी, जो फिरोजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं. जनाजा आज 12:30 बजे इनके घर बनवेन कौचे मिलितिया से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए इत्तेफाक मस्जिद कौचे मिलितिया और फिर दफनाने के लिए आलमा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM. पिचिपा के रोड मोताई ब्लॉश में 70 साल के 70 years old श्री दयानंद कतोना, जो अनिल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दो बजे इनके बेटे आशिफ कतोना के घर पिचिपा के रोड मोताई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 2 PM. मोगिस रोड मेबर्ग में 58 साल के 58 years old श्री देवेन पायन, जो जेसन के नाम से ज़्यादा

0: जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी गंदरावती पायन के घर मोहिस रोड मेबक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Suhana Safar.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जैसे कल हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपसे मिलने फिर आएंगे, तो चलिए सुहाना सफर इस प्रोग्राम को लेकर आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए। मैं हूँ सुमी, हमारे ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। और हमें पता है आप बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो चलिए इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और खूबसूरत गानों का जो सफ़र है इसे शुरू करते हैं। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। अभी से लेकर 2 बजे तक जो है हम आपके साथ साथ रहेंगे और पुराने गाने तराने जो हैं साथ में मिलकर गुनगुनाएंगे। और तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4028070 पर या तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5250620 पर। और साथ ही थोड़ी देर में हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे। और आज का दिन बहुत खास है, बताइए तो खास कैसे? खास ऐसे, आज है 4 अगस्त और आज किशोर कुमार जी की जन्मतिथि है, आज ही की तारीख जो है उनका बर्थडे है। तो चलिए इस सुहाना सफ़र प्रोग्राम के ज़रिए किशोरदा के खूबसूरत गानों को हम आपके लिए डेडिकेट करेंगे, उनसे जुड़ी कुछ बातें करेंगे। और आपकी भी अगर फरमाइश है कोई किशोरदा के गाने की हो तो बिल्कुल आपका वेलकम हम करते हैं आज के इस 2 घंटे के सफ़र को। चलिए साथ में मिलकर हम मेमोरेबल बनाएंगे।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: चलिए सुहाना सफर ऑन रेडियो मनोरंजन और आज मैं सुमी आप सभी का साथ दे रही हूँ। पुराने गानों का जो सिलसिला है जो कारवा है शुरू हो चुका है और एक के बाद एक आपके डेडिकेशंस भी हमें मिल रहे हैं, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और चलिए आज हमारी कोशिश रहेगी कि आज का जो प्रोग्राम है हम किशोरदा के मैक्सिमम गाने चलाएं, बिकॉज आज ही की तारीख 1929 को इनका जन्म हुआ था। ऐसे आज ये हमारे बीच नहीं है लेकिन इनके गानों को सुनते हुए कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि ये हमारे साथ नहीं है। तो चलिए किशोरदा का कोई खूबसूरत सा गाना सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, आप सभी का वेलकम है इन सुहाना सफ़र ऑन रेडियो मनोरंजन। और इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है तो आप हमारे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए ये है सुहाना सफर। दोपहर का वक्त है, देखते ही देखते दोपहर के 12:28 ऑलरेडी हो चुके हैं। इस समय लंच करते करते हमारे साथ जुड़े हैं तो आप सभी को बोना पीछी हम कहेंगे और चलिए इस पल को हम साथ में मिलकर मेमोरेबल बनाएंगे। और आज हमारी कोशिश होगी कि किशोर दा के गाए हुए गाने हम आपके लिए चलाए, तो हमारे सभी लिसनर्स का तो हम वेलकम करते ही है, साथ ही जितने फॉलोवर्स हमारे इस टिकटॉक लाइव से इस समय जुड़े हैं आप सभी का भी धन्यवाद। उमेश्वरी जी, त्रिनेश, हाय त्रिनेश, कैसे हैं आप? वी हैव यालेश, यालेश मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है। वी हैव मिस्टर, वी हैव ए के, और सुनंदा जी हमारे साथ है, या और फिर केशनी कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो फिजी से, सुरीनाम से भी साथ देते हैं। तो इस समय धर्मेंद्र जी और गीता जी, धर्मेंद्र कुमार और गीता कुमार जी जो है फिजी से हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी का वेलकम है। और वेदना जी, अगला गाना आपके नाम हम करते हैं, अगला जो तराना है पड़ोसन फिल्म का गाना है, मेरे सामने वाली खिड़की में। ऐसे पड़ोसन फिल्म की बात करें तो पड़ोसन फिल्म में सिर्फ किशोर दा ने गाने ही नहीं गाए थे बल्कि इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ऐसे किशोर दा की कॉमिक टाइमिंग बड़ी कमाल की है। हेलो निज़ाम बहादुर जी, कैसे हैं आप? नीनीमा जी नमस्कार, कल शाम भी आप हमारे साथ थी और अभी भी आप हमारे साथ जुड़ चुकी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो गाना आपने कहा थोड़ी देर में हम इसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। हाय माधुरी जी, थैंक यू सो मच, कल आपने मुझे बहुत मिस किया, आपके यहाँ गेस्ट आए थे। ओ कोई बात नहीं आप आज जुड़ चुकी है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अगला गाना माधुरी जी आपके नाम भी हम करते हैं। हेलो सुबी जी, कैसी है आप? मौसम बड़ा मस्ताना है, ओके तो चलिए मौसम मस्ताना तो है ही और इन गानों के साथ ये मौसम और भी खूबसूरत होने वाला है। और ऐसे में अगला जो तराना है यहाँ पर पड़ोसन फिल्म का आप सभी के नाम हम करते हैं।
2: You're listening to RM3 Radio।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: तो चलिए, हमने बातों बातों में हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हमने पूछा था कि पड़ोसन मूवी की बात करे थे, इसमें तो किशोर दा तो नजर ही आए थे, महमूद साहब भी नजर आए थे। मेन एक्टर और एक्ट्रेस का नाम हमने पूछा था और यहाँ पर हमें काफी जो है लोगों ने जवाब भी दिए है। परी बता रही है कि इसमें सायरा बानू थी, सुनील दत्त जी थे, बिल्कुल बड़े ही कमाल की और मजेदार फिल्म थी, है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर बढ़ेंगे और जितने हमारे फॉलोअर्स इस समय हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो तराना है जमीर फिल्म का, ये गाना है हम भी चले तुम भी चलो और चलते रहे जिंदगी। गाना जाता है खासकर नीलिमा जी आपके नाम, सुबी जी आपके लिए, शांति जी भी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ चुकी है, वीमा पेंटिया जी आपका भी वेलकम हम करते हैं, रोशन टेलर आपको भी हम नहीं भूले हैं, और प्रकाश कुमार जी नमस्कार कैसे हैं आप, मालिनी बिसराम जी भी हमारा साथ दे रही हैं। और चलिए यहाँ पर संस्कृत, हेलो माय हस्बैंड्स बर्थडे टुडे वन सॉन्ग प्लीज। तो चलिए अगला गाना आपके हस्बैंड के नाम, लेकिन आपने अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताया संस्कृत जी, अपने हस्बैंड का नाम ज़रूर बताइएगा। परी जी आपका मैसेज यहाँ मिलने के पहले हमें व्हाट्सएप पर मिल गया, थैंक यू सो मच आपके इस लवली मैसेज के लिए। और चलिए जमीर फिल्म का ये गाना चल पड़ा आप सभी के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, खासकर सुबी जी की ओर से गाना जाता है हस्बैंड धीरज के नाम, उनके बेटे हैं दिविज वाकवा से सब बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
2: RM3 Radio.

0: ना सफर
1: हाँ ना चलिए हम भी चले तुम भी चलो और चलती रहे ये जिंदगी जिंदगी का सफर तो बस चलते ही रहता है लोग जुड़ते रहते हैं और ऐसे में अभी हमारे लिसनर्स हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं एक एक करके सुहाना सफर इस प्रोग्राम में और शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए यहाँ पर शर्मिला बुधन जी थैंक यू आपका साथ हमें मिल रहा है यहाँ पर निमचन जी ने कहा कि हो सके तो ओ हंसनी गाना हो जाए किशोरदा की आवाज़ में जहरीला इंसान फिल्म का ये तराना होगा आपका स्कूल टाइम फेवरेट है ये गाना इनफैक्ट यस किशोरदा के गाने की बात करें तो शायद हम छोटे थे जब उनके ज़्यादातर गाने हम सुना करते थे और आज भी हम उन्हें सुनते हैं और यही गाना सरोज जी आपके लिए अनीता जी आयशा यानी कि लेडी जैगवा आपके लिए भी टोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बड़े ही प्यार से आप सभी मिल रहे हैं हमसे यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं विश हाय विश आप किशोरदा के बहुत बड़े फ़ैन हैं ऑल राइट थैंक यू सो मच हरंगी जी थैंक यू आपके मैसेज के लिए यस सुबि जी पड़ोसन फिल्म में सुनील दत्त और सायरा बानू जी नज़र आए थे फिल्म परिषद है अनीता जी मैं आपके मैसेज को समझ नहीं पाई कौन सी फिल्म है तो चलिए यहाँ पर टोनी विवेन जी आर रिक्वेस्ट RM3 नाइट प्रोग्राम वाई सेम ओके इसका जवाब हमारे पास नहीं है सुरीनाम से हरंगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज दर्शन जी थैंक यू हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए और यहाँ पर यशविन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चलिए आपने भी जवाब दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया

यानी कि आप लोग बड़े ही गौर से हमें सुन रहे हैं, हमारी बातों को भी और हमारे गानों को भी, है ना। तो चलिए ललिता जी, आपने भी कहा कि उस फिल्म में सुनील दत्त और सायरा बानू जी थे। रवि यहाँ पर हमारे साथ दे रहे हैं। किरणपुरी जी, आपके भी जवाब के लिए शुक्रिया। डॉन फिल्म का गाना खाई के पान बनारस वाला, ओके थोड़ी देर में शामिल करेंगे। अभी के लिए हो जाए जहरीला इंसान फिल्म का ये गाना, ओ हंसनी आप सभी के नाम।

0: सुहाना सफर
1: चले यहाँ पर सुहाना सफर में अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। सुमी जी आप कैसी है? स्वीट सॉन्ग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनीता जी उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है। अगला गाना चाहता है आपके पति राज के नाम, बेटे हैं अंतिश, अंकुश, बहू है मानिशा, आशिमा पोती है हिमेशा, साथ में आध्या, आंच, पूरे परिवार के लिए जो इस समय फ्लिक ऑफ लक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही ये गाना रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम के लिए, थैंक यू वेरी मच। और गाना जो है आराधना फिल्म का तराना होगा, कोरा कागज था ये मन मेरा। लता जी और किशोरदा की आवाज़ों में, इनफैक्ट अगर हम राजेश खन्ना जी की बात करें तो काफ़ी गाने किशोरदा ने राजेश खन्ना जी के लिए गाए हैं। राजेश खन्ना जी जो है उनके सुपरस्टार बनने में कंट्रीब्यूशन बाकी लोगों का भी है, जहाँ पर किशोरदा की आवाज़ थी, है ना। और चलिए ऐसे में अगला जो गाना है, रोशन जी आपके नाम भी करते हैं, जो गाना आपने मांगा थोड़ी देर में हम जोड़ेंगे। कुर्सी जी ऑस्ट्रेलिया से साथ दे रहे हैं, रवि रोशन जी फिजी से हमारा साथ दे रहे हैं, रीता देवी जी थैंक यू सो मच, ललिता जी वाकवा से हमारे साथ कनेक्टेड है, कल्याणी हरी जी अगला गाना आपके लिए होगा, देवीना जी आपका मैसेज हमें मिला थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम, लिया थैंक यू आपके जवाब के लिए, एंड यशविन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और यही तराना अब्दुल और सायरा बानू जी आप दोनों के नाम हम करते हैं।

0: सुहाना सफर
1: सुहाना। तो चलिए सुहाना सफर में इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं दोपहर के एक बजे के समाचार की ओर और समाचारों के उस पार मिलेंगे हम आपसे सुहाना सफर के सेकंड आवर में। जी हाँ, आज हमारा सुहाना सफर स्पेशल ट्रिब्यूट टू किशोर दा, उनके खूबसूरत गाने हम आपके लिए यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं और जितने भी लिसनर्स जितने भी फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो तराना है कलाकार फिल्म का गीत है नीले नीले अंबर पर चांद जब आए और ये गाना जाता है नमरस जी आपके लिए जो इस समय हमारे साथ आप कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच, ये गाना आपके लिए हम करेंगे। यशविन जी जो गाना आपने मांगा इसे हम चलाने की कोशिश करेंगे और चलिए यहाँ पर माला जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी फरमाइशें यहाँ पर हो रही है, कोशिश करेंगे और एक घंटा बचा है सभी फरमाइशों को पूरा करने की। अभी के लिए खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे आशिता नमस्कार
1: नमस्कार नीतू शाह श्रोताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता की प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित था जो लिजोंगा ने एक महिला सांसद के पैतृक आवास पर की गई छापेमारी के बारे में जानकारी मांगी उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या के साथ साथ जब्त की गई

0: वस्तुओं और वाहनों की जानकारी चाहिए। विपक्ष नेता ने डॉ नवीन रामगुलाम से ये भी जानना चाहा कि क्या इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की कोई जांच शुरू की गई है। अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि इस मामले में कोई भी कवर अप नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद वेरोनिक ले गोविन इस जांच के सिलसिले में अपनी इच्छा से आजसू के सामने पेश हुई थी और उन्हें इस बुधवार को फिर से आजसू में उपस्थित होना है। जूनियर मंत्री वेरोनिक ले गोविन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उनके जूनियर मंत्री पद से इस्तीफा देने के निर्णय को स्वीकार कर लिया है। ये फैसला उनके पति पर लगे मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के बाद लिया गया है। वेरोनिक ले गोविन अब तक कला एवं संस्कृति मंत्रालय में जूनियर मंत्री के रूप में कार्यरत थी। प्रधानमंत्री के अनुसार संभावित जन धारणा और उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को देखते हुए उनसे पद छोड़ने का अनुरोध किया गया। अन्य खबरों में राष्ट्रसभा में ही वेटलैंड्स की सुरक्षा का मुद्दा चर्चा का विषय होगा क्योंकि वेटलैंड्स बिल का पहली पढ़त में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी और निजी दोनों जमीनों पर इन इकोसिस्टम की सुरक्षा संरक्षण और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना है। रेजिडेंस एक अल्टरनेटिव की दाविद सुवाज के अनुसार वेटलैंड्स बिल पर होने वाली बहस को 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं के इर्द गिर्द केंद्रित होगा। उनके अनुसार जब किसी निर्माण परियोजना का संबंध किसी वेटलैंड से हो तो केवल इमारत का ही मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसके आसपास के पूरे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आंकलन होना चाहिए। दाविद सुवाज ने स्पष्ट किया कि बाढ़ से बचने के लिए गांवों के आसपास वेटलैंड्स का निर्माण किया जाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में इस वर्ष जंगल की आग का मौसम असाधारण रूप से गंभीर हो गया है। वॉशिंगटन का स्पोकन शहर अब युद्ध क्षेत्र जैसा दिखाई दे रहा है। लगभग 2,30,000 आबादी वाले इस शहर के कई इलाकों को तबाह करने वाली तीनों आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। शनिवार को यहां आपातकाल घोषित किया गया था। आग की लपटों ने पूरे के पूरे मोहल्लों को अपनी चपेट में ले लिया है और 65,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan. सुहाना सफर।
2: चलिए समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो मनोरंजन पर। सुहाना सफर का ये सेकंड आवर है, आप साथ दे रहे हैं हमारा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत सारे लोग घर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे लिसनर्स और फॉलोअर्स ऐसे भी हैं जो इस समय काम करते करते भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो साथ देने के लिए धन्यवाद। और चलिए फरमाइशी गीतों का ये जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं। रॉक गंगाराम जी हरजाई फिल्म का जो गाना आपने कहा था वो किशोरदा की आवाज़ में नहीं है, तो ये जो दूसरा गाना है आपके नाम हम करेंगे, आपकी ओर से गाना जाएगा कुनल, करिश्मा, कृति, जानव और दवी के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यही गाना जाएगा शिरीन रामजन आपके लिए भी, संजय है, शर्मीन है, रोहित जी हमारा साथ दे रहे हैं, नम्रता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एंड सुभाष मोती जी आपके भी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। ललिता जी कालबास से हमारा साथ दे रही है। ललिता जी थोड़ी देर में अगर आपका ये गाना हमें चलाने का मौका मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। लग रहा है आपके यहाँ बरसात हो रही है इसलिए आपने इस गाने की फरमाइश की है ललिता जी, है ना। चले गाना जाएगा आपके सभी ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम। इस समय हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो छुट्टियों पर हैं, स्कूल कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही, तो ऐसे में आप फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं और साथ में हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इस सेकंड आवर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: और चलिए खूबसूरत गानों के ये जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं।
1: सुहाना सफर
0: 1:10 ऑलरेडी हो चुके हैं। इन खूबसूरत गानों के साथ आप लोगों से बातें करते करते, आप लोगों के लिए गाने डेडिकेट करते करते, ये जो सफ़र है कैसे

0: खत्म होता है पता ही नहीं चलता है ना। और चलें यहां पर वरुणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच वरुणा जी फॉर योर मैसेज। और अगला जो गाना है रोशन जी आपके नाम डॉन फिल्म का तराना है, खाई के पान बनारस वाला, ऑब्वियसली किशोरदा की आवाज में। और ये जो गाना है जाता है राधा सिपचंद जी आपके नाम, आपकी ओर से आपके हस्बैंड के लिए भी। अनिल राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल जी की ओर से गाना उनके सभी दोस्तों के लिए। हाय वर्षा, लग रहा है कि पहली बार आप हमारे साथ जुड़ी है, उम्मीद करते हैं आप अच्छी है और गानों को आप एंजॉय कर रही होंगी। शोभा जी आपने कहा सागर फिल्म का गाना, थोड़ी देर में हम इस गाने को इंक्लूड करेंगे हमारे प्रोग्राम में। ललिता जी की ओर से गाना जाता है उनके भाइयों के लिए, उनके बहनों के लिए। वी हैव राजीव, संजीव, नालिनी, सुनीता एंड होल बाबूलाल फैमिली जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। देवी जी गाना जाता है आपकी ओर से आपके भाइयों के लिए, आपके बहनों के लिए, खासकर गाना उमा जी आपके लिए। दीवा गर्ल गानों को एंजॉय कर रही है तो थैंक यू सो मच। कियारा, कियारा का बर्थडे है, प्यारी बेबी कियारा, एंजल बेबी कियारा, आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अमानसी की ओर से। और चलिए यहाँ पर यही गाना जाता है रेखा रामा जी आपके लिए भी। माया रामदोस जी, चलिए अच्छा लगा जानकर के आप बिल्कुल ठीक है। जितने भी फॉलोअर्स हमारे इस लाइव को शेयर कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। रॉबी रामेसा जी सुरीनाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके भी प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय फिया जी, कैसी है आज? नो रिक्वेस्ट आज, क्यों आप नाराज हैं हमसे? चलिए फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम है, आप फरमाइश ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पर सुबि जी डबलिन में पहले थी और अभी इस समय यहाँ पर है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। ललिता चरण जी, कैसी है आप? ठीक है आप? और रजनी जी, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक है। अगला गाना आपकी बेटी बेटियों के नाम पूजा और तृष्णा जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: और चलिए यहाँ पर गानों के साथ साथ आपकी बातों को भी हम एंजॉय कर रहे हैं, आपके कमेंट्स को भी एंजॉय कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को भी हम एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये तराना होगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। गाना जाता है टोनी जी आपके नाम। यहाँ पर रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरुणा है, खतीबा है, संगीता है। रजनी जी की ओर से गाना जाता है पूजा के नाम, तृष्णा के नाम, कृष्णा के नाम, सभी मेलरोस से हमारे साथ कनेक्टेड है। वी हैव हर्षा, वी हैव वीमी, वी हैव जिमी, सभी बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं और साथ ही टिकटॉक के जरिए हमें देख भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून रेडियो मनोरंजन, ग्रेट फैंस ऑफ किशोर कुमार। दनेश्वर जी है, प्यारी पत्नी सुनीता है, निशा है, देव है, रेखा है, सभी देवदोस्त परिवार बॉम्बू से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। साथ में पोती है हंसवी, बियाना और बबीका, चलिए इतने प्यार से आप सभी साथ दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। और अभी तो छुट्टियों का दिन है, मतलब कि स्कूल हॉलीडेज है, तो ऐसे में फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है भला, है ना। और अगला तराना आप सभी के नाम और मुकद्दर का सिकंदर, ये गाना हमें पता है सभी को बहुत पसंद आता ही है।

0: सुहाना सफर
1: जी हाँ, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, खूबसूरत सा तराना फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर। ठीक है, और चलिए अब बारी है इस अगले तराने की। ये जो अगला गाना है ना, ये भी बड़ा कमाल का है, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मेरे महबूब कयामत होगी। गाना यहाँ पर जाता है पिची वेज़ से। अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनीता जी, गाना आपके लिए और आपके पूरे फैमिली के लिए। आप श्यामा जी, यजना और यति के नाम आपकी ओर से गाना, ज्योति जी की ओर से गाना जाता है, सभी गुली, सभी रामदयाल और सभी तोरा परिवार के नाम। और ज्योति जी, यही गाना जो है आपके सभी मौसियों के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षा जी, आपने कहा कि कालिया फिल्म का कोई गाना हो जाए, ऑल राइट, मौका मिला तो ज़रूर चलाएंगे। सावित्री सिंह जी नीदरलैंड से हमारे साथ जुड़ी है, थैंक यू वेरी मच। हेलो, नेक्स्ट सॉन्ग गोज टू मामा आशा आशा फाकिया पिची राफ्रे से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और फोंजिसाक से विकास बिगू जी भी हमारे साथ है। चित्रा जी नमस्कार, कैसी है आप? हर्षा जी, थैंक यू सो मच हमारे गाने को डेडिकेट करने के लिए। और यही गाना जाता है कल्याणी सिंह जी आपके लिए भी। और माया रामदास जी गानों को एंजॉय कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी जी, वाई नॉट डेडिकेट माई सॉन्ग? कौन सा गाना मांगा रजनी जी, एक बार फिर से याद दिलाए, कभी कभार कुछ मैसेजेस मिस हो जाते हैं तो फिर से याद दिला दीजिए, मौका मिला तो हम ज़रूर आपके गाने को चलाएंगे। अरमानी जी, हाय, कैसे हैं आप? मादालबेर से ललिता चरण हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है युवान के लिए, आपके ग्रैंडसन के लिए, साथ में यही गाना रेखा जी आपके लिए भी। विमल चमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? इस समय सबीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगला गाना जाता है तीन बेटियों के नाम, बिहाव सोनाली शालिनी श्रीना जो गुडलैंड से बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं। आई वॉन्ट टू लिसन तुम बिन सॉन्ग। तुम बिन का गाना तो अभी हम नहीं चला पाएंगे, अगर नया गाना है तो। सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में पुराने गाने चलते हैं, तो मिट्स अगला गाना आपके लिए होगा। ईशान कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे हैं ईशान? आपको रेडियो मस्ती का नंबर चाहिए, अगर मुझे अभी मिला तो मैं थोड़ी देर में आपको शेयर करूँगी रेडियो मस्ती का नंबर। आई थिंक सो इट इज़ 5। चलिए तब तक ये जो गाना है यहाँ पर चल पड़ा है, किशोरदा की आवाज़ में आप सभी के नाम।

0: ना सफर खाना सफर
1: चलें यहां पर जीने मरने की बातें तो हम नहीं करेंगे लेकिन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस की बातें हम जरूर जरूर करेंगे। आंटी जी कॉम्पुक्रो से हमारे साथ जुड़ी है। दर्द फिल्म का ये जो अगला तराना है किशोरदा की आवाज में ऐसी हसीन चांदनी आपके नाम हम करते हैं। बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू सो सो मच। यहाँ पर माधुरी जी कह रही है कि अभी भी हम आपके साथ साथ हैं। चलिए आप साथ हैं तो यहाँ पर हम भी साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए, थैंक यू। आपको भी हम शुभ दिन कहेंगे आयशा। और आपका प्यार हमें मिलता है तो यकीनन ये हमारे लिए एक मोटिवेशन के जैसे होता है, तो बिल्कुल आपका प्यार यूँ ही बरसता रहे, आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहे। और दर्द फिल्म का ये जो गाना जाता है आप सभी लवली लिसनर्स के नाम, 2 बजे तक चलने वाला है सुहाना सफर ये प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. और चले जो गाना अभी चल पड़ा है ये है अमीर गरीब फिल्म से लिया गया और ख़ासकर परी ये गाना आपके लिए हम करते हैं बड़े ही प्यार से और बेसब्री से इस गाने का आप

0: सुहाना सफर।
1: तो चलिए आज का हमारा जो सुहाना सफर था वो किशोरदा पर आधारित था, उनके गानों पर। और जितने भी गाने यहाँ पर चले हैं आज के इस प्रोग्राम में, सभी के सभी बड़े कमाल के रहे हैं। आज किशोरदा की बर्थ एनिवर्सरी है, 4th of August 1929 को इनका जन्म हुआ था एंड 13th October 1987 ही पास्ड अवे। सिर्फ सिंगर ही नहीं थे, म्यूजिशियन थे, एक्टर थे, और जितना ये अपनी गायकी के लिए पॉपुलर थे उतनी ही फिल्मों में कॉमेडी अपने रोल के लिए भी ये काफ़ी जो है पॉपुलर थे। अपने करियर के दौरान इन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए। उसके अलावा कई अन्य अवार्ड्स से भी ये नवाजे गए। और चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं इस अगले गाने की ओर। शराबी फिल्म का ये जो तराना है, इसी के साथ आज का जो हमारा सुहाना सफ़र रहा ये ख़त्म होने को चला। जाते जाते हमारे सभी सुनने वालों का शुक्रिया, आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही टिकटॉक के हमारे जितने भी फॉलोअर्स हमारे लाइव के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस गाने के साथ हमारी आपकी मुलाकात ख़त्म हो जाएगी। 2 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आप रत्ना की प्रस्तुति में सुन पाएंगे उड़ान की कहानी। इस प्रोग्राम को उनका साथ आप ज़रूर दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को, और अपना ख्याल रखिए और रेडियो मनोरंजन से यूं ही जुड़े रहिए।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: एक बार फिर सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। इस बार आपके साथ विधिमा, नमस्कार।
4: नमस्कार नीतुषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। हम मौत के सौदागरों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समझौता नहीं करेंगे और कोई कवर अप नहीं की जाएगी। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कही। वे विपक्ष नेता जूली शोंगो के PNQ का जवाब दे रहे थे। जोरेनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे

0: की कथित तस्करी के मामले में पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेरोनिक ले गोविन के पति गुलशन गोविन की गिरफ्तारी पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि वेरोनिक ले गोविन के वाहन की फोरेंसिक पुलिस द्वारा जांच की गई है, उसमें कैनाबिस का एक बीज और उसके निशान मिले हैं। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने यह भी कहा कि पूर्व जूनियर मंत्री 3 बार रेनन गई थी, जिनमें से 2 बार वो अपने पति के साथ थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने पद के कारण वीआईपी लाउंज तक उनकी पहुंच सामान्य बात थी। अंत में वेरोनिक ले गोविन अपनी इच्छा से आजसू के सामने पेश हुई और बुधवार को अपने कानूनी प्रतिनिधि के साथ उन्हें वहां फिर से जाना है। दूसरी ओर एफसीसी ने ये पता लगाने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जांच शुरू कर दी है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराध भी किए गए हैं। 8 साल की घोषणा के बाद वेटलैंड्स बिल को आखिरकार इस मंगलवार को राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। इस कानून का उद्देश्य वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिन्हें अब तक एनवायरनमेंट एक्ट के तहत केवल अप्रत्यक्ष सुरक्षा ही प्राप्त थी। अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भी एक कानून तैयार किया जा रहा है। मॉरिशस में नैतिक भर्ती को बढ़ावा देना और विदेशी श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने इस मंगलवार की सुबह पोर्टलुई में 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मिक्सा और आगिम के साथ किए गए हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य नौकरी बाजार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हुए अधिक जिम्मेदार श्रम प्रवासन को बढ़ावा देना है। और विदेश में सोमवार रात को मॉस्को के पास एक गोदाम पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। रूस ने भी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर हमले किए, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: उड़ान की कहानी. उड़ान की कहानी. रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और एक और नई उड़ान की कहानी लेकर उपस्थित हो चुके हैं हम. मैं हूँ रत्ना. हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें. और आज की एक उड़ान की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने स्वास्थ्य की दुनिया में अपना कदम जमाया है. और बिल्कुल हम कहते हैं ना कि महिलाएँ हेल्थ कॉन्शियस होती हैं.

0: है, पर जो समाज को भी हेल्दी बनाने का दावा करे, उनके लिए भी कुछ करे, तो भाई लगता है कि सच में ये उड़ान बहुत ही कामयाबी की उड़ान है। और आज हमारे साथ जुड़ी है श्रीमती निवेदिता नाथू जी, जो 32 वर्षों से वेलनेस की इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं, साथ ही साथ वे एक चेयरपर्सन रह चुकी हैं NWEC की, और साथ ही साथ वे डायरेक्टर रह चुकी हैं NEF की, और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। निवेदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में।
1: धन्यवाद रत्ना जी,
0: और
1: नमस्कार आपको और आपके सारे श्रोताओं को भी मेरा तहे दिल से
0: बहुत बहुत प्यार से आपका हम स्वागत करते हैं। और आज की उड़ान की कहानी बिल्कुल आपकी कहानी होगी, तो पहले तो हम जरूर जानना चाहेंगे निवेदिता जी, आपने जब वेलनेस की दुनिया में कदम रखा, वैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि 32 वर्ष हो चुके हैं, तो आपने कैसे सोचा?
1: 40 वर्ष,
0: नॉट 32 वर्ष, माई बैड, बिल्कुल। तो चलिए 40 वर्षों से आप इसमें हैं, तो निवेदिता जी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने पहले, आपकी जो यहाँ तक की जो यात्रा रही है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसका आरंभ हुआ, हमें ज़रूर बताइए।
1: मुझे बचपन से ही बहुत शौक था वो मेकअप का और ब्यूटिशन बनने का, तो मैंने इस क्षेत्र में अपना पैर बढ़ाया। और खुशी की बात है कि मेरे जो पेरेंट्स थे और परिवार था, सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया। तो उस समय बहुत सारे लोग नहीं जाते थे इस क्षेत्र में, तो जब मैं गई तो मुझे लगा कि चलो इसमें स्कोप है, बहुत सारे स्कोप हैं। तो मैं और मेरी फूफू है सुनेत्री विश्वास, उसने भी मुझे बहुत ही एनकरेज किया, और उन पूरे परिवार के इनकरेजमेंट देकर मैं आगे बढ़ती गई। तो और आज 40 साल हो गए मेरे,
0: मतलब यानी आपने पीछे पलट कर कभी नहीं देखा, कभी नहीं बस देखा। आगे देख बढ़ते गए, और जितना सहयोग आपको मिला फैमिली का, फ्रेंड्स का, तो एक तरह से आपके रास्ते अपने आप खुलते गए। तो निवेदिता जी, जब आपने ब्यूटी के क्षेत्र में कदम रखा, तो पहले तो आपने जैसे इसकी इंफॉर्मेशन, इसका जो नॉलेज है, गैदर किया होगा, तो कहाँ से आपने सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, कहाँ से आप अपने आप को इसमें आपने शिक्षा ग्रहण की?
1: शुरुआत में मैं भारत जाना चाहती थी, तो उस समय पिताजी की बात हो गई थी, कुछ लोगों को जानते थे इंडिया
0: जी,
1: में
0: जी।
1: तो उनकी बात हो गई थी। फिर इस बीच शहनाज हर्बल जो है, वो उन्होंने अपना पहला स्कूल खोला था यहाँ पे, श्रीमती बरन चौबे जी और श्रीमती गजाधर जी के साथ मिलकर। तो मैंने सोचा कि वहाँ बाहर अकेले जाऊँ, मैं यहीं पर कर लूँ पहला कोर्स जो है।
0: बिल्कुल।
1: तो पहली जो कोर्स मैंने की यहीं पे मॉरिशस ही में की, क्योपिप में। और उसके बाद मैं बिल्कुल सिलेक्ट ही हो गई काम के लिए रॉयल पाल्म में।
0: तो जैसे मतलब एक तरह से आपने बिल्कुल जैसा आपको चाहिए था वैसा होता चला गया। और बिल्कुल कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है,
1: रास्ते खुलते गए।
0: तो बिल्कुल तो जैसे एक तरह से कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से करना चाहते हैं और अगर उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज हमें मिल जाता है, तो फिर अपने आप आपके गोल्डन गेट्स खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल उड़ान की कहानी कुछ ऐसी ही है। और जहाँ पर हम बहुत सारे चैलेंजेस की भी बात करते हैं, तो निवेदिता जी बेशक आपने जब शुरू किया होगा, तो एज अ स्टूडेंट आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए उस टाइम पर?
1: स्टूडेंट में बहुत अच्छी थी
0: चलो
1: तो मैं बहुत जल्दी से सीख लेती थी। स्कूल में अच्छी नहीं थी, पढ़ाई में मैं काफी कमजोर थी, पर जब काम सीखने गई तो मैं बहुत जल्दी सीख जाती थी,
0: क्योंकि आई थिंक उसमें आपका शौक था,
1: दिलचस्पी थी, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते थे हमेशा। और तो इसीलिए दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न क्यों मुझे सिलेक्ट किया गया था, कि तुरंत ही मैं वो पहली थी जिसको तुरंत ही काम मिल गया था। मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे उस वक्त, और पूरा जो स्किन का एनाटॉमी का सब मैंने
0: क्लियर कर दिया था। तो मैं समझती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई तो बिल्कुल जारी रखनी है, लेकिन आप वो चीज़ें करें जिनमें आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी हो, क्योंकि मैं समझती हूँ फिर वो एक काम नहीं लगता है, बर्डन नहीं लगता, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिलती है और आप अपना पूरा 100% पोटेंशियल देंगे। मैं समझती हूँ
1: अभी 40 साल हो गए पर एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सुबह उठ के

0: काम पे जा रही
1: हूँ. मतलब आप को कहना नहीं पड़ता कि चलो जाओ भाई काम पर जाओ, यानी आपको एक तरह से वो आपको खुशी मिलती है.
0: खुशी मिलती है, बिल्कुल खुशी मिलती है मुझे काम में जाने की. और काम में भी जाती हूँ तो जो चैलेंजेस काम में आते हैं उसको सॉल्व करने में और ज़्यादा खुशी मिलती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि चलिए स्टूडेंट के टाइम पर आपने उतना चैलेंजेस फेस नहीं किया क्योंकि आपको इंटरेस्ट था इसमें, पर जैसे ही आपने कदम रखा काम के क्षेत्र में, यानी

0: Okay. एक से बढ़कर एक चैलेंजेस मिले मुझे. पहली बार जब मैं काम पे गई रालपाल में, तो पता नहीं वहाँ पे एक रिवार्ड सा था कि जितने भी लड़कियाँ जाएंगी, हिंदू लड़कियाँ जाएंगी, तो उनको एक दूसरे नाम से बुलाते थे ये लोग. कैथोलिक नाम से बुलाते थे.
1: ओके.
0: तो मेरा नाम बदल कर वो नाताली रखना चाहते थे.
1: ओके. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज.
0: हाँ, मैंने कहा नहीं, मेरा नाम तो निवेदिता है, आप मुझे निवेदिता ही बुलाएं. तो कहने लगे नहीं, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें प्रोनाउंस करने के लिए. तो इसीलिए जितने भी यहाँ पे हिंदू लड़कियाँ काम करती हैं, उनको हम एक नाम देते हैं जो कि क्लाइंट्स के लिए भी इजी हो और हम सब के लिए भी इजी हो. मैंने कहा नहीं. और जब मुझे बुलाते थे उस नाम से, तो मैं कभी
1: जवाब
0: भी नहीं देती थी. तो वो लोग मुझे निवेदिता ही कहकर बुलाने लगे.
1: ओके. तो मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई क्षेत्रों में आप जब जाते हैं तो ऐसी सारी चीजें भी होती है जहाँ पर आपको अड़कर खड़े रहना है. हाँ, कि हाँ. जो है जैसा है वैसा ही रहने दीजिए.
0: वो तो एक पहला, पर वो ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि अगर कोई आपको दूसरे नाम से पुकारे तो आपको अपना नाम, जो
1: वो आपकी आइडेंटिटी है.
0: आपकी आइडेंटिटी है
1: जी, जो आप जिस नाम से हैं, जैसे हैं, जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं, मैं समझती हूँ उसी को आपको लेकर चलना है. उसे बदलना मतलब कहीं ना कहीं आपके आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल देना होता है. तो एक तरह से बिल्कुल आपने जब वेलनेस की इंडस्ट्री में कदम रखा, ये तो चलिए आपने जब काम करना शुरू किया, आपने बताया कि काफ़ी सारे चैलेंजेस नाम को लेकर, फिर काम में आपको कोई अपना अनुभव याद है जो आपने अपने क्लाइंट्स के साथ फेस किया?
0: पहले हफ्ते में जब मैं काम पे गई तो मैं गांव की लड़की थी, मौसम से आई थी. तो जब मुझे कहा गया कि आपको फोन उठाना है, तो मुझे फोन उठाने में इतना डर लगता था. क्या बताऊं,
1: मतलब हाँ, लोगों से बात करना.
0: हाँ, लोगों से बात करना, फोन उठा कर कहना कि हाँ आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे, मैं आपका अपॉइंटमेंट लिखती हूँ. वो मुझे लगा कि मैं ये कैसे करूँगी. इतना बड़ा काम, मुझे इतना बड़ा काम लगता था वो. पर आज जब मैं देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको, आप परिवार से निकल कर जाते हो, आप एक गांव से निकल कर जाते हो, और एकदम से आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सामने रख दिया जाता है और आपको
1: डील करना है.
0: और उस समय कोई ज्यादा ट्रेनिंग होती थी नहीं, ज्यादा नहीं होती.
1: बिल्कुल, जैसे पब्लिक स्पीकिंग वाला कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होता था. क्योंकि आजकल आप देखिए जहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आपको प्रेजेंटेशंस तैयार करना होता है. आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके सामने आपको खड़े रहकर अपने आप को एक्सप्रेस करना है. तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट वाली जो स्किल्स होती है,
0: उस घर पे आकर मम्मी के सामने, पापा के सामने रिहर्स
1: करते,
0: फोन उठाकर रिहर्स करती थी.
1: ऑफकोर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज हमें जब पब्लिक स्पीकिंग में डाला जाता है, जहाँ पर हमें लोगों के साथ, रैंडम लोगों के साथ बात करना, ये मैं समझती हूँ जनता जनार्दन के साथ बात करना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है. क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि कैसा क्लाइंट आपके सामने आ रहा है, उसकी डिमांड्स क्या होगी, उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा.
0: बिल्कुल.
1: तो ये मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा. तो जब आपने वेलनेस इंडस्ट्री में कदम रखा निवेदिता जी, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मेन चीज क्या थी? ब्यूटी, हेल्दी स्किन या फिर न्यूट्रिशन? इस पर से आपने क्या, मतलब किस क्षेत्र में आपने आगे बढ़ना सोचा?
0: शुरुआत तो मैंने ब्यूटी से की थी
1: जी.
0: फिर बाद में चलते चलते इट वॉज एन इवॉल्विंग इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही थी.
1: सही.
0: उस समय ज्यादा बोलबाला नहीं था स्पा का, ज्यादा बोलबाला नहीं था योगा का. तो इंडस्ट्री ऐसी थी कि हम लोग पायोनियर्स थे उस इंडस्ट्री में.
1: बिल्कुल.
0: तो हम जैसे भी चाहते थे उसको मोड़ सकते थे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो उस समय मैंने एक पहली चैलेंज जो मैंने फेस किया था वो स्टाफ का था. फिर बाद में, क्योंकि मैंने जब काफ़ी साल काम किया वहाँ पे, फिर बाद में मैंने अपना खुद का सैलून बनाया और उसके बाद स्पा भी बनाया. तो मुझे लगा कि स्टाफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस वक्त. स्टाफ को ट्रेन करो, कैसे ट्रेन करना है वगैरह. तो मैं और मेरी असिस्टेंट लो जो है उषा बिदेसी, हम दोनों ने मिलकर स्कूल खोला, कॉम्प्लेक्शन स्कूल ऑफ ब्यूटी थेरेपी.
1: ओह वाओ.
0: हाँ, मेट्रोबोन में. तो वहाँ पर हमने लगभग 3,000 तक 3,200 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया था.
1: ओह वाओ, मतलब ये फिर वो लोग किसी भी क्षेत्र में जाकर या खासकर जब वहाँ पर ब्यूटी सलून्स होते हैं वहाँ पर जाकर अपने आप को मतलब डाल सकते हैं वहाँ पर उस काम में.
0: उस समय के मोस्टली मोस्ट ऑफ द होटल्स जो थे वो हमारे ही

0: स्टाफ हमारे ही स्टूडेंट्स को लेते थे काम करने के लिए,
1: मतलब सर्टिफाइड एक तरह से देखा जाए तो
0: हमारी स्कूल सर्टिफाइड थी, सर्टिफाइड थी और अक्रेडिटेड भी थी। तो मैं साउथ अफ्रीका गई, वहाँ से अक्रेडिटेशन ली मैंने स्कूल के लिए, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी मैंने अक्रेडिटेशन ली थी स्कूल के लिए। तो बहुत बहुत काम बहुत अच्छा हुआ था, बहुत बहुत अच्छा काम हुआ था। और लगभग आप सोचिए उस समय में हम लोगों ने लगभग 3,200 लोगों को ट्रेन किया था।
1: ये कितने साल पहले की बात है आप बता रहे हैं?
0: अब ये तो अभी 15 साल से हमने स्टॉप किया उसको, क्योंकि उस समय फिर क्या हुआ कि IVTB ने स्कूल खोला था ब्यूटी का, तो वो लोग शायद 500 रुपए में कोर्स दे रहे थे, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाए।
1: बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यूज भी हम देखें तो कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
0: तो हमें उसको क्लोज डाउन करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। और फिर बाद में
1: बट एक तरह से देखा जाए तो आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला उस टाइम पर।
0: उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला।
1: तो जैसे इस दौरान भी आपने बहुत सारा अनुभव खुद के लिए भी गैदर किया होगा, मैं समझती हूँ एज अ टीचर जब आप दूसरों को ट्रेन करते हैं तब भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेक।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, सीखने में बहुत। और फिर उस समय मैं काफ़ी ट्रैवल भी करती थी।
1: हाँ जी।
0: और मैंने फर्दर कोर्सेज किए थे सिंगापुर में और साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ से सीख कर यहाँ बच्चों को मैं सिखाती थी।
1: मतलब जैसे एक तरह से सीखना एंड देन फिर सिखाना, एक तरह से ये जैसे, और मैं समझती हूँ जो सीखने की जो प्रतिक्रिया है गोज लाइफ लॉन्ग, क्योंकि अभी भी हम जैसे, और खासकर
0: जब भी सीख रही हूँ,
1: दैट इज व्हाट, क्योंकि मैं समझती हूँ आज पहले के ज़माने में जहाँ पर ब्यूटी सलोन्स होते थे, मैं समझती हूँ 20 साल या 25 साल पहले की हम जब बात करें तो पहले जो तैयार होने का ढंग होता था, मेकअप लगाने का जो ढंग होता था, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो लिमिटेड हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें आज देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और मैं समझती हूँ आजकल यंग लड़कियों का नहीं लड़कों का भी बहुत क्रेज़ है, जहाँ पर मेकअप इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो आप आए दिन देखते हैं कि किस तरह से, किस बखूबी से लोग इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते जा रहे हैं। बिल्कुल, आज वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हमारी एक ऐसी मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं जिनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग है। डेफिनेटली इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है, और वैसे हम आपको ये भी बताते चले इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिल रहा है। तकनीक पर इस वक्त हमारे साथ है अपर्णा और दीपशिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट, तो बस हमारा साथ दीजिएगा। कार्यक्रम को जारी रखते हैं एक गीत के बाद।

0: उड़ान की कहानी। उड़ान की कहानी। और इसी के साथ आज हमारे साथ वेलनेस इंडस्ट्री से आई हैं यहाँ पर श्रीमती निवेदिता नाथूर जी। जैसे हर महिला की एक कहानी होती है, हर महिला के जीवन में सैक्रिफाइसेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और साथ ही साथ बैलेंस करना, जी हाँ, जीवन को किस तरह से बैलेंस करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक महिला के लिए। तो चलिए जानते हैं निवेदिता जी ने कैसे बैलेंस किया सारा कुछ। निवेदिता जी, आपने भी काम शुरू किया, एक वेलनेस इंडस्ट्री आप चला रही हैं, और साथ ही साथ आपने नई कंपनी के बारे में भी अब हम थोड़ी देर में जानेंगे लॉन्च किया है। तो बीइंग अ वुमेन, आप शादीशुदा होने के बाद आपने घर को, प्रोफेशन लाइफ को किस तरह से मैनेज किया?
1: मैंने तो पहले अपने परिवार को मैनेज किया, क्योंकि जब मुझे इतनी सपोर्ट मिल रहे थे उन लोगों से
0: जी,
1: और तो मैंने कहा अगर इतना सपोर्ट मुझे परिवार से मिल रहा है तो मुझे आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता।
0: सही बात।
1: तो मेरी मम्मी थी, मम्मी ने बहुत किया मेरे लिए, मेरे बच्चों को उन्होंने लगभग उन्होंने ही पाला मेरे बच्चों को शुरुआत के दिनों में
0: जी।
1: और मेरी सास भी थी, तो मेरे इन लॉज थे, मेरे मम्मी पापा थे, तो उन सभी का मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला। हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट मिला।
0: बिल्कुल।
1: तो जब इतने सारे सपोर्ट मिलते हैं ना किसी महिला को, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
0: और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जब तक हम जब अपने परिवार के भले का सोचती हैं, और अगर हमें परिवार का सपोर्ट मिलता है, खासकर हस्बैंड का, बच्चों का, माता पिता का, सास ससुर का जब सपोर्ट मिलता है, तो एक महिला को उनकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। और वो बहुत अच्छी उड़ान, बहुत लंबी उड़ान भरती है, और बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ सकती है। और केवल ये उड़ान एक परिवार की उड़ान नहीं होती, साथ ही साथ जैसे हम हमेशा कहते हैं कि उड़ान की कहानी जो है वो एक महिला के सहयोग की कहानी है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में अगर देश विकसित हो रहा है, देश विकास कर रहा है, समाज विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं

0: महिलाओं का सहयोग इसमें पूरी तरह से, हम कह सकते हैं इसमें उनका पूरा कंट्रीब्यूशन है और इसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। तो चलिए जब हम वेलनेस की बात करते हैं, और जैसे निवेदिता जी ने शुरू की खूबसूरती के साथ और साथ ही साथ वे हेल्थ कॉन्शियसनेस की ओर भी बढ़ी, तो आपका ये जो डाइवर्जन था, कह सकते हैं कि जब आपने हेल्थ ब्यूटी के साथ शुरू की पर धीरे धीरे करते हुए आपने हेल्थ की ओर भी ध्यान दिया, तो ये आपने किस तरह से, मतलब आपको कहाँ से ऐसे मन में आया कि अब हमें हेल्थ के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना ज़रूरी है?
1: अच्छा, अगर आपको अपना स्किन अच्छा रखना है, यंग दिखना है, स्किन और बालों को अच्छा रखना है, तो आपको फेशियल करवाना होगा, आपको हेयर मास्क डालना होगा वगैरह वगैरह। पर इन द लॉन्ग रन आपको अपनी न्यूट्रिशन पे भी ध्यान रखना होगा।
0: सही, बिल्कुल सही।
1: अगर आप अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखोगे, कितनी भी मेकअप आप डाल लो,
0: हाँ जी,
1: वो आपको वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हेल्थ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा ब्यूटी उसी में दिखती है जिसकी स्किन हेल्दी हो, हेयर हेल्दी हो, और जो हेल्दी, जो इंसान हेल्दी दिखता हो, और वो सिर्फ मेकअप से नहीं दिखता।
0: सही बात,
1: इट्स एन ओवरऑल।
0: बिल्कुल।
1: तो तब से मैं योगा करने लगी, प्राणायाम करने लगी, और न्यूट्रिशन पे भी मैंने बहुत बहुत ध्यान किया। इंडिया में मैंने कोर्सेज भी किए हैं आयुर्वेदिक कुकिंग, क्या खाने के, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वगैरह।
0: ट्रू ट्रू।
1: तो इट्स ऑल कम्स इन ए पैकेज।
0: बिल्कुल। जैसे केवल हम आप खूबसूरती की बात नहीं करती, आप अंदरूनी खूबसूरती, जैसे हम कहते हैं ना कि खासकर न्यूट्रिशन से मिलने वाली जो हेल्दी ब्यूटी है, हेल्दी ब्यूटी जहाँ पर आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपके बाल है वो शाइन करेंगे नेचुरली, क्या खाना क्या नहीं खाना इस पर ज़्यादा ध्यान देना। और साथ ही साथ निवेदिता जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जहाँ पर हम वेलनेस की बात करती हैं, ब्यूटी की बात करती हैं, तो ये केवल महिलाओं के लिए आप देखती हैं, या अगर कोई पुरुष भी आपसे कोई एडवाइस मांगना चाहें तो पुरुषों को भी आप एडवाइस देती हैं?
1: मेरे जो क्लाइंट्स होते थे सब होते थे,
0: सब यानी यूनिसेक्स, यानी जो भी आपके यहाँ आते हैं आप उनको गाइडेंस देती हैं।
1: और मैं आपको एक बात बता दूँ, अब जाते जाते हम, मुझे ये महसूस भी हुआ कि जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं।
0: रियली?
1: हाँ।
0: ओके, क्योंकि एक समय था जब महिलाएं हेल्थ कॉन्शियस, ब्यूटी कॉन्शियस थी, पर आजकल मैं समझती हूँ पुरुष भी अपने हेल्थ को लेकर कुछ कॉन्शियसनेस दिखाने लगे हैं।
1: वेरी हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनको काम का प्रेशर भी होता है।
0: सही, बिल्कुल।
1: तो ये सब सोचते में उनको एक बैलेंस करना होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये लोग बहुत अभी आ रहे हैं योगा की तरफ, प्राणायाम की तरफ, और आयुर्वेद की तरफ भी बहुत आ रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बदल रहा है, समय बदल रहा है, दुनिया परिवर्तित हो रही है, और लोगों को अब जाकर कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का, एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन जहाँ पर हम कहते हैं ना कि बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, हमारा जो काम करने का ढंग है बदल रहा है, और आए दिन हम रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं जीवन शैली पर, यानी हमारी जो लाइफ स्टाइल्स है उस पर, तो इस पर कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात पहुंच रही है और धीरे धीरे लोगों में भी वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो निवेदिता जी, आपने एक अभी रिसेंटली एक कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है वेलनेस स्टेप्स, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, ये किस तरह की कंपनी है और यहाँ क्या होता है इस कंपनी में?
1: क्या है कि जिंदगी में मैंने बहुत सारे पड़ाव देखे अपने
0: जी,
1: तो अभी कोविड के बाद काफ़ी मुश्किल समय गुजरा हर किसी के लिए
0: जी,
1: तो मैंने सोचा इस कोविड के बाद मैं करूँगी क्या। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि बहुत सारे मैं खुद करती हूँ प्राणायाम, मैं खुद करती हूँ योगा, मैं खुद करती हूँ वो आयुर्वेद के अनुसार मैं अपना जीवन बिताती हूँ,
0: दिनचर्या जैसे कहते हैं।
1: दिनचर्या।
0: हाँ।
1: और मेरे बच्चे भी और मेरे पूरा परिवार, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको इम्पार्ट करूँ अब लोगों को। और मेरी बात हमेशा होती थी जो लोग बिजनेस में होते हैं तो हमेशा उनको एक प्रॉब्लम होती है कि दे आर सो स्ट्रेस, इतना सारा स्ट्रेस उनको है, अभी डेडलाइन को पूरा करना है, ये करना है, तो उनको स्ट्रेस इतना जकड़ा हुआ है। तब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि चलो लेट मी डू समथिंग फॉर यू, कि तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, कंपनी बनाई वेलनेस स्टेप्स, उसमें प्रोग्राम ये है कि मैं लोगों को जाकर कंपनीज में प्राणायाम सिखाती हूँ।
0: ओके।
1: कि प्राणायाम कैसे किया जाए अच्छी तरह से, उस तरीके से,
0: यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रही
1: हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में।
0: ओके।
1: तो प्राणायाम के

0: से करते हैं, और मैं उनको ये भी करती हूँ कि वत पित्त और कफ क्या है और कैसे उसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद आप अपना अपने काम में कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं अगर वत पित्त और कफ
1: बैलेंस्ड हो तो। बिल्कुल,
0: और उसमें मेडिटेशन भी आ जाता है, यू नो, अगर ब्राह्मी प्राणायाम के बाद अगर आप मेडिटेशन करो तो You go to another level.
1: बिल्कुल, आप ट्रांस में जाते हो, आप कनेक्ट हो जाते हो एक तरह से, आपका जो कहते हैं ना कि इमोशनली आपका जो माइंड है, बॉडी है, फिजिकल आपका, वो एक अलग स्टेटस है, एक अलग लेवल पर पहुंचता
0: है। और हमारी जो हमारा जो शरीर है ना रचना जी, वो बना नहीं है कि हम 6-8 घंटे तक बैठ कर ऑफिस में काम करें।
1: सही बात,
0: हमारे शरीर ऐसा बना नहीं है,
1: हम टॉर्चर कर रहे हैं ना हमारे
0: शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे ऑफिस योगा भी लाते हैं।
1: ओके, यानी आप चेयर पर बैठकर
0: आप कैसे योगा कर सकते हो, आप कैसे अपने पैरों के लिए चलना पड़ेगा, हर 45 मिनट पर आप उठिए, चलिए कुछ कीजिए,
1: तो यानी देखा जाए तो
0: क्यों पीना चाहिए।
1: बिल्कुल, मतलब जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा काम इतने बजे से इतने बजे तक है, इसके बीच में हम टाइम नहीं निकाल पाते, तो इसी के अंदर आपने वो वेलनेस को इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर लोग भले ही आप कंप्यूटर के सामने 6-8 घंटे बैठकर काम करते हैं, पर उसी के अंदर आपको कैसे अपने आप को, आप अपने वेलनेस का भी ध्यान रख सकते हो, किस तरह से आप ब्रीद कर सकते हो, कहीं पर भी आपका काम रुकेगा नहीं, उल्टा आपका काम करने का जो जज्बा है, जो आप कहते हैं ना एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी जो है
0: वो बढ़ जाएगी
1: डेफिनेटली आपका काम करने, और बिल्कुल बिना थकावट के। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि बर्नआउट्स हो जाते हैं आजकल, तो बर्नआउट मतलब एक ऐसा शब्द हमारे सोसाइटी में एंटर हो चुका है कि हर आए दिन हम इस शब्द को सुन रहे हैं कि भाई मुझे बहुत बर्नआउट हो रहा है,
0: मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं, और जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं जहां पर बहुत सारा काम होता है, और सारा कहते हैं ना कि आजकल फिजिकल लोड कम हो गया है, मेंटल लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये हमारे शरीर को और भी असर करता है। और जहां पर हम स्वास्थ्य को हम प्रावधान देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, वहां पर बिल्कुल कॉर्पोरेट दुनिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो भी काम को बिना छोड़े वेलनेस को साथ में पैरेलल अपना सकते हैं।
0: कहते हैं ना आपको बैलेंस होनी चाहिए माइंड बॉडी एंड सोल।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर आप इसमें बैलेंस बनाकर चले तो
1: आपकी लाइफ जो है सही पटरी पर,
0: बिल्कुल।
1: और जैसे जब हम बात करते हैं नेशनल वुमेन, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, साथ ही साथ जब नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल की जब हम बात करते हैं, NWEC की बात,
0: वो जो बहुत साल पहले की बात है ये।
1: ओके, बट आपने बताया था कि आप उसकी चेयरपर्सन रह चुकी हैं, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आप इस मतलब इस काउंसिल के साथ कैसे जुड़ी, और आप एक चेयरपर्सन होने के नाते आपका जो अनुभव था उस समय का, वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप साझा करें हमारे प्रोग्राम में।
0: वो अगर आप किसी भी पद पे जाते हो, गवर्नमेंट पद पे जाते हो, तो आपको ये पावर मिल जाता है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करें।
1: सही सही,
0: तो जब मैं वहाँ पे नॉमिनेट हुई तो मुझे कुछ पता नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में
1: जी,
0: तो मैंने सारे एक साल पूरे साल के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मांगे, पढ़ा मैंने, तो मैंने कहा चलो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरी जो पहली प्रोजेक्ट थी वहाँ पे इनक्यूबेटर्स फॉर लेडीज़ मैंने बनाए थे।
1: ओके ओके,
0: इनक्यूबेटर्स क्यों चाहिए थे लेडीज़ को, और उस समय चाहिए थे और आज भी चाहिए रचना जी, इनक्यूबेटर्स आज नहीं है लेडीज के लिए। तो इंक्यूबेटर्स में क्या हो जाता है, जो लोग जो वहाँ पे आते थे, बास्केट बनाते थे, फूल बनाते थे, एम्ब्रॉयडरी करते थे, कुछ भी आर्टिस्टिक काम करते थे, तो उनको सिर्फ अपना काम आता था, उसको उनको कॉस्टिंग नहीं आता था, उनको पता नहीं होता था कि
1: उनको नहीं पता कैसे कमाना है,
0: कैसे कमाना है,
1: कैसे मनी जनरेट करना है,
0: कैसे मनी जनरेट करना है, कैसे बैंक से लोन लेना है, वगैरह वगैरह। तो सब इंक्यूबेटर्स में हम सब सिखाते थे उनको। और उस समय मैंने एक काम ये भी किया था, मैंने जितने भी होटल्स हैं मॉरिशस में, सारे होटल्स के डायरेक्टर से मैं मिली और मैंने उनसे कहा कि इन लेडीज़ को एक टेबल दे दें,
1: एक आउटलेट दे, मतलब
0: एक टेबल दे दे, हफ्ते में सिर्फ एक बार, हफ्ते में एक बार एक टेबल दे दें ताकि वे लोग आके अपना सामान बेच सकें। और वो सारे सामान मैं खुद स्क्रूटिनाइज करती थी, मैं सिलेक्ट करती थी.
1: हाँ, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स को कहाँ एक्सपोज करना है. बिल्कुल बिल्कुल.
0: अगर क्वालिटी अच्छी हो तब जाएगी, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो उनको और ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपना क्वालिटी
1: इम्प्रूव कर सके. बिल्कुल, उसका जो फिनिशिंग है उसको ठीक से कर सके.
0: वो जो है मेरे मुझे मार्क कर गया कि इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग, क्योंकि लेडीज महिलाएं एक रात में एक बार तो एक महिला ही रोने लगी मेरे सामने, कहने कि मैंने एक रात में 8,000 कमाए.
1: मतलब एक ही दिन में
0: उन्होंने इतने सारे अपने सामान बेच दिए होटल में जाकर कि 8,000 कमा लिए थे.
1: ये एक बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है,
1: बहुत
0: किसी भी लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात है.
1: बिल्कुल, मतलब कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर बैठे बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहती हैं, लेकिन नहीं जानती कहाँ जाना है.
0: और मेरी फिलोसफी हमेशा ये रही है, नेचर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है.
1: बिल्कुल,
0: अगर आप समुद्र में जाएं तो आप देखेंगे जो बड़ी सी जो मच्छी जा रही है, लाबालन कहते हैं, वो जा रही है, उसके स्किन पे छोटी छोटी मछलियाँ लगी हुई है, कुछ खा रही है, तो उसके स्किन में जो मॉस लगे हुए हैं तो उसको निकाल रही है, तो उसको साफ कर रही है.
1: बिल्कुल,
0: उनका पेट भी भर रहा है.
1: जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
0: तो बड़ी मछली के लिए भी जगह है नेचर में, और
1: छोटी मछलियों के लिए भी जगह है. और मैं समझती हूँ जब हम प्रकृति से कुछ लेते हैं, लेते तो हम सब है, लेना सभी चाहते हैं, देने की क्षमता, जैसे कहते हैं ना कि ऑलवेज ट्राई टू गिव, जितना आप ज्यादा दोगे हमेशा बढ़ेगा जितना.
0: पर अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होता है.
1: बिल्कुल,
0: इंसानों की दुनिया में ऐसा नहीं होता है.
1: सही कहा,
0: बड़ी मछली जो है हमेशा छोटी मछली को खाने में लगी रहती है.
1: बिल्कुल सही. और
0: जो बड़ी कंपनी होती है, बड़ी छोटी कंपनी को ग्रो नहीं करने देते.
1: ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही गलत बात. ये हमें ये बात मैं बिल्कुल सहमति जताती हूँ इसके लिए कि सही बात में समाज में आज देखा जाए तो जो एक स्तर पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बेशक अगर हम छोटों का हाथ पकड़ के उनको भी ऊपर चढ़ना सिखाए तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से उनके लिए भी जगह बना रहे हैं, और साथ ही साथ आप ग्रो कर रहे हैं,
0: आप भी ग्रो कर रहे हैं,
1: आप उनको भी हेल्प कर रहे हैं. लेकिन ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, हम एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं. तो ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई जो हमारे समाज में आज देखी गई है. पर चलिए, ये तो बात समय समय की बात है, लेकिन जो लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं, जैसे आपने बताया कि नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल ये आज भी महिलाओं को मौका देती है, और जैसे उन्होंने कहा कि मौका ही नहीं देती, उनको आगे कैसे बढ़ना है. जैसे मैं कई सारे प्रोग्राम में ये वाक्य का प्रयोग कर चुकी हूँ कि अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को खाना देंगे तो हो सकता है कि कल वो दोबारा आएगा आपके यहाँ खाना मांगने के लिए, पर आप उन्हें पैसे जनरेट करना सिखाएं.
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल. खाना कैसे उगाना है, कैसे बनाना है, कैसे पकाना है, आप अगर उनको सिखाएंगे,
0: खुद भी खाएंगे, पूरे परिवार को
1: भी खिलाएंगे. बिल्कुल, कहीं पर हाथ फैलाने वाली नौबत नहीं आएगी. तो जैसे आपने बताया, और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि उसके बाद ये जब आप बने थे चेयरपर्सन, ये कितने साल पहले की बात है निवेदिता जी?
0: 2009 फेसबुक में देख लिया होगा मेरे.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और क्योंकि बहुत लंबा समय, बहुत ही लंबा समय, और साथ ही साथ आप NEF यानी नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की भी प्रेसिडेंट अध्यक्षा रही हैं,
0: डायरेक्टर
1: रही हैं. तो उसका एक्सपीरियंस हमें बताएं कि आपने कैसे ज्वाइन किया इस फाउंडेशन को.
0: वहाँ पे भी मैं नॉमिनेट हुई थी, और वहाँ पे मुझे एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है लोगों के लिए तो वो संभव हो सकता है वहाँ से. और दूसरी बात ये भी मुझे समझ में आई थी कि जो पैसा ईमार्क होता है गरीबों के लिए, तो मान लो कि इतना बड़ा वो आयस होता है और गरीबों के यहाँ आते आते इतना छोटा हो जाता है,
1: छोटा सा टुकड़ा रह जाता है. क्योंकि तो बीच में जो होता है,
0: बहुत कुछ गलत भी होता है.
1: सही बात.
0: और पिघल भी जाते हैं,
1: पिघल जाते हैं, सही बात.
0: पिघलता है, इतना बड़ा बर्फ
1: डिसॉल्व होते होते वो छोटा, जितना मिलना चाहिए
0: आते आते इतना हो जाता, इतना सा हो जाता.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो ये सब, ये बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए. तो हो सकता है

0: कि अगर इतने सारे मिडल थिंग्स जो हम निकाल दें तो
1: कहीं ना कहीं उनको भी वो उनका उनको फायदा हो सकता है
0: हो
1: और
0: सकता
1: जो कहते हैं ना कि जो सही हकदार है उनको सही मात्रा में जितना चाहिए उतना पहुंच सकता है। पर जैसे कहते हैं ना कि कई बार बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में होती नहीं है बिल्कुल पर चलिए जो हमारी मेहनत है जो हमारी नीयत है जो हमारा इंटेंशन है उसी इंटेंशन से हम काम करते रहे कि जो भी हो जो भी कार्य हम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए करें समाज की भलाई के लिए करें और कहीं ना कहीं वो रास्ते निकल आते हैं कहीं ना कहीं वो कहते ना कि एक से एक कारवां जुड़ता जाता है और बस कारवां बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल ऐसा ही निवेदिता जी के साथ भी हुआ और धीरे धीरे करते हुए ग्रो करना कोई कहते ना कि आज एक रात की बात नहीं होती इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। चलिए लेते हैं गीत का ब्रेक और हम आपको ये भी बता दें इस वक्त हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं महादेवन साथ हैं दीपशिका और टेक्निक पर हमारे साथ बनी हुई है अपर्णा। गीत को सुनते हैं आते हैं थोड़ी ही देर में उड़ान की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए।

0: की कहानी उड़ान की कहानी
1: उड़ान की कहानी और उड़ान की कहानी में आज निवेदिता जी हमारे साथ है, जहां पर वेलनेस स्टेप्स का इस कंपनी को उन्होंने लॉन्च किया है। वे साथ ही साथ नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की डायरेक्टर रह चुकी हैं, और साथ ही साथ आज जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के किसी भी कोने से आप उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और जी हाँ, ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म, ऐसे ही एक मंच पर हिंदू लेडीज काउंसिल की फाउंडर भी हैं निवेदिता जी। तो जी हाँ निवेदिता जी, इस की आप फाउंडर बनी हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएं।
2: रजना जी, हिंदू लेडीज काउंसिल को हमने इसलिए बनाया था कि महिलाओं को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली यंग महिलाओं को, कि कभी ज़्यादातर वो लोग अकेले रहते हैं, सास ससुर के साथ तो रहते नहीं ज़्यादातर लड़कियाँ आजकल, तो इनको कैसे किया जाए, कौन सी पूजा कब करनी है, कौन सी तिथि होनी है, कैसी पूजा विधि कैसी करनी है, तो उनको बहुत सारे प्रश्न होते थे। तो इसलिए मैंने हिंदू लेडीज़ काउंसिल का वो प्लेटफॉर्म बनाया, एक फेसबुक पेज बनाया, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे बीच। तो एक जो आचार्य होते हैं, जो पंडित होते हैं, कभी कभी उनसे हमें नहीं पता होता, तो उनसे पूछकर हम जवाब दे देते थे।
1: बिल्कुल।
2: तो ये प्लेटफॉर्म है लेडीज़ के लिए, और मैंने ये भी देखा है कि लेडीज़ जो कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहती है तो वो उसमें भी वो अपना ऐड दे देती है, तो इट हेल्प्स आउट उसको
1: नेटवर्किंग करने में सहायता हो जाती है। तो चलिए, एक तरह से देखा जाए ना कि कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और आपने एक ऐसा मंच क्रिएट किया
2: जहां
1: पर बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए लोग इसमें जुड़ते चले गए। और कहते हैं ना कि जैसे हमने शुरू में कहा, जहाँ चाह है वहाँ राह है।
2: 16,000 मेंबर्स हैं हमारे।
1: 16,000 मेंबर्स, यानी देखा जाए तो ये इसको कितना समय हुआ है,
2: लगभग 5-6 साल हो गए,
1: यानी अभी धीरे धीरे करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसमें कनेक्ट होते जा रहे हैं। और बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि आज सोशल मीडिया का ही ज़माना है, और सोशल मीडिया एक, जैसे कहते हैं ना कि जंगल में जब आग लगती है, एक छोटी सी बस चिंगारी पूरे जंगल को कहते ना कि आग फैलती चली जाती है, और ऐसा ही कारवा एक जब आप काम शुरू करते हो तो बस वो फैलता चला जाता है, और सोशल मीडिया कुछ ऐसा ही रूप है आज के समाज का। और साथ ही साथ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी निवेदिता जी से, निवेदिता जी, आज का ये जो सफ़र है यहाँ तक पहुँचा है, आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आपका क्या मानना है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में?
2: वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो पहले तो आपको हर महिला को आत्मनिर्भर होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: और आत्मनिर्भर होने के लिए आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। आपका सपोर्ट सिस्टम शुरू होता है घर से, अपने खुद के घर से, अपने परिवार से, माता पिता से, भाई बहन से, और जो करीबी दोस्त होते हैं उनसे। तो अपना सपोर्ट सिस्टम आप मजबूत बनाएं। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो तो आप आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल।
2: और इन लॉज की भी, सास ससुर के भी, और जितने भी ननद और
1: जेठानी है
2: सभी का,
1: और सबसे बड़ा होता है पति का साथ।
2: सबसे जरूरी तो होता है पति का साथ, और पूरे परिवार का साथ।
1: बिल्कुल।
2: ज्यादातर यहाँ पे मैंने जो नोटिस किया है कि लोग, महिलाएं अब सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाती अपनी,
1: अकेले
2: जूझती रहती है, अकेले आगे बढ़ती रहती है, और उनको बहुत सारे हर्डल्स भी देखने को मिलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अगर आप अपने परिवार से बात करने अच्छी तरह से कहें कि देखो मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए,
1: सही,
2: क्योंकि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ,
1: सही,
2: आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ,
1: बिल्कुल,
2: तो हर कोई परिवार, हर एक परिवार आपको सपोर्ट करे।
1: बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन से शुरू होना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि

0: इसमें पुरुषों का भी उतना ही साथ, जैसे हमने कहा कि जितना हम कहते हैं ना भाई का साथ, पिता का साथ, ससुर का साथ, पति का साथ, ये भी एक तरह से महिलाओं को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मजबूत एक कदम है। और जो हर महिला चाहती है, मैं समझती हूँ हर एक महिला चाहती है कि इस जंग में उनका परिवार उनके साथ जुड़ा रहे। तो जाते जाते हमारी महिलाओं को आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है? निवेदिता जी,
1: आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहिए।
0: बिल्कुल,
1: अभी मैं AI सीख रही हूँ, तो अभी AI का ज़माना आ गया है। आप भी अपना AI कोई भी कोर्स कर लीजिए AI में, कहीं भी शुरुआत आपको जहीं भी आपको ओकेजन मिले, मौका मिले, आप शुरू कर लीजिए, क्योंकि
0: आने वाले दिनों में
1: जो AI लिटरेट नहीं होंगे
0: उनको बहुत दिक्कत होंगी,
1: वो पीछे छूट जाएंगे आगे।
0: बिल्कुल,
1: वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
0: बिल्कुल, ज़िंदगी की गाड़ी है, बहुत बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही है, और अगर हमने दौड़ना नहीं सीखा तो बिल्कुल हम पीछे रह जाएंगे। तो निवेदिता जी, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे इस मंच पर आएं, और बिल्कुल एक नई कहानी के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपर्णा का, दीपशिका का, और साथ ही साथ महादेवन का जो हमारे साथ टेक्निक पर हमारा साथ देते रहे।
1: पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। हम मौत के सौदागरों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समझौता नहीं करेंगे और कोई कवर अप नहीं की जाएगी। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कही। वे विपक्ष नेता जूली जोंगा के पीएनक्यू का जवाब दे रहे थे। जोरेनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे के कथित तस्करी के मामले में पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेरोनिकुल गोविंद के पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि वेरोनिकुल गोविंद के वाहन की फोरेंसिक पुलिस द्वारा जांच की गई है, उसमें कैनबिस का एक बीज और उसके निशान मिले हैं। नवंबर 2024 से इस वर्ष 29 जुलाई तक देश की जेलों में 579 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इनमें से 41 फोन कैदियों के पास से बरामद किए गए। आज राज्यसभा में सांसद अदरियन जुवाल के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये आंकड़े साझा किए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इनमें से कुछ फोन का इस्तेमाल आपराधिक अपराध करने के लिए किया गया था। जेल परिसरों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 6 कदम लागू किए जाएंगे, जिसमें मिलरोज जेल में मोबाइल फोन जामर सिस्टम की स्थापना भी शामिल है। प्रधानमंत्री को संबोधित प्रश्नों के सत्र में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की है कि सरकार पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरीज पीपीएस की व्यवस्था को बहाल करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इस बदलाव से जूनियर मिनिस्टर का पद समाप्त हो जाएगा। सांसद अदरियन जुवाल ने तब ये तर्क दिया कि एक जूनियर मिनिस्टर के विपरीत

जो उस मंत्री पर निर्भर होता है जिसके साथ वो जुड़ा होता है। पीपीएस की विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं, विशेष रूप से किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति। हालांकि प्रधानमंत्री इस विचार से सहमत नहीं है। सांसद जुआना बेरोंजे के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा में क्रियोल मॉरिशियन के इस्तेमाल पर बनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले सिलेक्ट कमेटी के समक्ष पेश किया जाना होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस समिति की भूमिका के बारे में अधिक स्पष्टता आज देर शाम तक दी जाएगी। वैसे ये रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में स्पीकर को सौंप दी गई थी। 8 साल की घोषणा के बाद वेटलैंड्स बिल को आखिरकार इस मंगलवार को राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। इस कानून का उद्देश्य वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिन्हें अब तक एनवायरनमेंट एक्ट के तहत केवल अप्रत्यक्ष सुरक्षा ही प्राप्त थी। अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भी एक कानून तैयार किया जा रहा है। और विदेश में जंगल की भीषण आग के कारण उत्तर पश्चिमी अमरीकी राज्य वाशिंगटन के कुछ हिस्सों से लगभग 60,000 लोगों को सुरक्षित बाहर जाना पड़ा है, जिससे सैकड़ों इमारतें नष्ट हो गईं और हजारों लोग बिजली से वंचित हो गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कार, 4 अगस्त, आप सभी का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस प्रोग्राम में। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। तो चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। ऐसे तो मंगलवार को आपको पता ही है, खासकर हम या तो शिक्षा से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, कभी कभार किसी सामाजिक जो है विषय को भी हम लेकर आते हैं। आज हमने सोचा क्यों ना महिलाओं के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। महिलाओं का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे परिवारों में तो है ही, साथ ही हमारे समाज में भी, देश के विकास में भी, और साथ ही जो है ग्लोबली भी महिलाओं के योगदान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मिस्टर अश्विन कतवारू जी जुड़ चुके हैं। अश्विन जी जो है फाउंडर प्रेसिडेंट है लकी चाइल्ड स्पेशल एजुकेशन नीड्स एसोसिएशन के, साथ ही वो सामाजिक और जो है सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी अपना योगदान देते हैं। जूरिस्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर्स में भी जो है इनका काफ़ी योगदान है, साथ ही इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन से भी जो है इनका नाता है, और बच्चों और नौजवानों के लिए काफ़ी काम करते हैं, मेंटर भी है और साथ ही फाउंडर है जेपी नारायण सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड पीस के। तो चलिए अश्विन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, नमस्कार आपको। और महिलाओं की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कह सकता है कि महिलाओं का योगदान नहीं है उनके जीवन में। अगर हम परिवार से शुरू करते हैं तो बच्चे के लिए पहली गुरु कहे वो माँ ही होती है, जो उनसे जन्म तो देती ही है, साथ ही पालन पोषण भी करती है, और जीवन में आगे बढ़ने की जो नींव होती है वो कहीं ना कहीं माता पिता के द्वारा ही होती है। तो जब हम परिवार की बात करते हैं, निजी जीवन की बात करते हैं, तो महिलाओं को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, उनके योगदान को?
1: सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ पर बुलाया और इस विषय में बोलने का योग समझा, तो आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: पहली बार

0: है कि जब हम घर से निकलते हैं, काम पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो जब कहाँ से निकलते हैं वो घर है। और आंकड़े तो मैं मुझको पता नहीं है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जो माता है वो देखभाल करती है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस दुनिया के इस सभा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो माता ही ऐसी व्यक्ति है जो बच्चों का पालन पोषण करती है
1: जी।
0: और जितने जो जैसे व्यवहार कैसा होना चाहिए,
1: हमारा आचरण कैसा होना चाहिए,
0: डिसिप्लिन, ये सब तो घर से शुरू होता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो बच्चा घर से निकलता है वो जो माता जी के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है तो आगे चलकर काम में उन्नति करता है और आगे जो समाज का भविष्य का वो नींव बनता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे आचरण की बात करें, हमारे व्यवहार की बात करें, कभी कभार एक बच्चा जब समाज में प्रगति करता है, अच्छा कार्य करता है, समाज के प्रति अपना योगदान देता है, तो सबसे पहली बात जो व्यक्ति देख रहा है उसे उसके मुंह से यही निकलता है कि इसे जो है अच्छे संस्कार मिले हैं। और संस्कारों का जो भार है वो कहीं ना कहीं माताओं पर ज़्यादा है, इस पर आपके क्या विचार है?
0: हाँ, ये तो एक पहले बात जो है, जो बोलते हैं जो एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम एंड्स इन द टूम, तो जब बच्चा माता जी के घर में होता है तब से वो शिक्षा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माता ही एक ऐसी है कि बच्चों को नज़दीक से देखते हैं, तो इसीलिए माता जी को इतना बड़ा दर्जा दिया है।
1: दर्जा दिया जाता है, बिल्कुल।
0: और पहला गुरु होता है बच्चों का
1: जी। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ महिला दिवस पर ही महिलाओं के योगदान के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं की बात करें तो माँ के रूप में, बहन के रूप में और अन्य हमारे रिश्ते नातों के रूप में महिलाएं हमारे जीवन का, हर रोज के जीवन का हिस्सा है ना। सुबह उठते ही हम सबसे पहले माँ को याद करते हैं, भले एक बच्चे की शादी भी क्यों ना हो जाए, कितने साल भी क्यों ना हो जाए, आज भी हम एक दिन में एक बार अपनी माँ से बात किए बगैर नहीं रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और संस्कारों की बात करें, अभी के समय में जो है लाइफस्टाइल हमारी काफ़ी बदल गई है, जीवन शैली अभी जो नए तौर तरीके हैं उसके चलते काफ़ी प्रभावित हुई है, और आजकल बच्चों में संस्कारों की कमी देखी जा रही है। शायद काफ़ी बाहरी इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से कह सकते हैं, या काफ़ी फैक्टर्स है, तो इस पर आपके क्या विचार है?
0: वैसे देखेंगे तो जो यूनिट होता है जो परिवार का, उसमें माता होता है, एक पिता होता है और कभी कभी भाई बहन भी होते हैं। तो आगे देखते थे तो एक एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करता था, तो एक्सटेंडेड फैमिली में दादा दादी चाचा चाची सब इकट्ठे रहते थे। अब देखेंगे भी नए दौर में माता पिता और बच्चों के साथ रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। तब न्यूक्लियर फैमिली के दौर में देखेंगे तो बच्चों का जो स्कूल जब समाप्त होता है, घर पर आते हैं तो माता पिता काम पर रहते हैं, तो कौन बच्चे का देखभाल करेगा?
1: कर रहा है, बिल्कुल।
0: हाँ, तो एक साधन है कि उसके हाथ में मोबाइल थमा दें, या वो टीवी देखेगा या ट्यूशन जाएगा
1: जी।
0: तो ये आधुनिक मॉरिशस का अभी स्थिति है।
1: मॉरिशस ही के परिप्रेक्ष्य में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्लोबली यही चीजें हमें देखने को मिल रही है।
0: ग्लोबली है, लेकिन फिर भी ग्लोबल में देखेंगे तो कानून भी है कि बच्चों को अकेले 16 साल के नीचे नहीं रखना चाहिए, छोड़ना होता है।
1: कई देशों में ऐसा है,
0: जैसे इंग्लैंड हो गया
1: जी,
0: तो और भारत के वर्ष में देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सिस्टम हो गया है कि एक न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन उन लोगों के साथ एक हेल्प होता है,
1: एक हाउस हेल्प कहे या केयरटेकर कहे।
0: तो यहाँ पर सुविधा ज़्यादा हम देखने को नहीं मिलता है
1: जी। अच्छा,
0: तो बच्चे अपने आप रहते हैं और तब देखेंगे तो सहारा हो जाता है टीवी या मोबाइल या फोन
1: जी,
0: तो यही एक साधन हो जाता है बच्चों को।
1: और समय के साथ बच्चे जो है अपने, अभी खासकर हम बच्चों की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, और अभी तो हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे छुट्टियों पर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो इस कार्यक्रम को अवश्य सुन रहे होंगे और कार्यक्रम से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठा रहे होंगे। अगर हम बात करें महिलाओं के रोल की, आज से कई वर्षों पहले जो है मॉरिशन समाज में जो है महिलाओं का, परिवारों का बड़ा योगदान रहा है,

0: आज जो एक खुशहाल जीवन शैली हम व्यतीत कर रहे हैं, आज हम जहाँ हैं, जिस तरह के जो है वर्तमान को जी रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले वो काफ़ी संघर्ष से भरा रहा, तो चाहेंगे कि एक नज़र हम उस पर भी दौड़ाए।
1: हाँ, आगे आगे था कि ज़्यादातर जो पुरुष वर्ग होते थे वो लोग काम पर जाते थे और माता

0: दिए थे, कोई किसी के पास गाय थी, कोई किसी के पास कुछ ऐसा व्यवसाय था,
1: छोटे मोटे साधनों से अपने जीवन को चलाते थे।
0: हाँ, चलाते थे। लेकिन अब देखते हैं कि ये थोड़ा बदल गया है और आगे के समय में, जैसे मैंने बोला, आगे के समय में दादा दादी थे तो वो बच्चों को जैसे कहानी ये सबसे ये करती थी, अवगत कराती थी, तो बच्चों में संस्कार भरने का वो एकमात्र साधन था।
1: जी,
0: अब लुप्त हो गया है।
1: हाँ बिल्कुल। अभी जो है शायद बच्चे जो है या अन्य लोग भी है, अकेलेपन का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, है ना, क्योंकि आइसोलेशन ज़्यादा हो गया है हमारे जीवन में, स्ट्रेस बढ़ गया है, चैलेंजेस बढ़ गए, और कभी कभी हम अपने स्ट्रेस और चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को बंद कर लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो हमारी बातों को समझ पाए, जो हमारी भावनाओं को समझ पाए, जो हमारे इमोशंस को समझ पाए। और कहीं ना कहीं महिलाएँ अभी के समय में इससे बहुत जूझ रही है। आजकल मेंटल वेलनेस की जहां पर हम बात करते हैं, मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं, कहते हैं कि एक उम्र के बाद महिलाएं जो है अपने आप में इस तरह से गिर जाती है परेशानियों से कि निकल नहीं पाती हैं, क्योंकि जब तक वो फिजिकली फिट है, बच्चों को देख रही है, बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी राह चुन लेते हैं, तो ऐसे में महिलाएं अकेले हो जाती है, क्योंकि इतने दिन पूरा भरा परिवार था और एक समय आता है अकेले। तो इस ट्रांजिशन को आप देखते हैं?
0: हाँ, जैसे वेदों में बताया गया है कि जितने जो आश्रम होते हैं, तो एक एक समय में आता है जब हमको इसमें डिटैच होना पड़ता है, तो हमको जो डिटैचमेंट है, जो वनवास जो लेते हैं, तो वो खास नहीं है कि हम घर से निकल जाते हैं, उसमें है कि हम ध्यान करें, पूजा पाठ करें, हवन यज्ञ करें, तो ये सब एक साधन होता है उस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो हमको जो प्लानिंग होता है, जैसे बोलते हैं ना, जब
1: रिटायरमेंट
0: प्लान करते हैं, तो उस ट्रांजिशन को भी प्लान करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो जैसे एक वेव जैसा होता है, ठीक है ना, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो उसमें चाहिए कि हमको एक प्लानिंग, और हमको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जिंदगी एक तरह का ये नहीं होता है, हर दुख के बाद सुख आता है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कभी कभार जिंदगी में, जैसे आपने कहा, ये सारी चीज़ें पहले से हमारे जीवन का हिस्सा है, बचपन हुआ, बड़ा हुआ, हम करियर की ओर गए, फिर गृहस्थ जीवन में हमने प्रवेश किया, बच्चों का पालन पोषण, फिर एक समय आता है जहाँ पर हम इन सब से दूर होने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले से चलती आई है, इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ हम अपने आप को इन सभी बदलावों के लिए किस तरह से तैयार करते हैं, ये अपने आप में हमें पहले से प्लानिंग होनी ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं ना, दिन की शुरुआत करने से पहले अगर हम पूरे दिन को अच्छे से प्लान कर ले कि मुझे किस समय क्या करना है, तो वो दिन में जितने भी काम हमने सोचे होते अच्छे से हो जाते हैं। वहीं जब प्लानिंग नहीं होती तो बहुत सारे काम छूट जाते हैं, बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं, फिर हम अफसोस करते हैं। तो शायद हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है।
0: तो एक एक चीज है
1: जी,
0: जिसे एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, अपेक्षा, तो ये सबसे बुरा चीज है। जो हम सोचते हैं कि हमने इतना काम किया और इतना मेहनत किया बच्चों के लिए, अब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे हमारे ये करेंगे, ये फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब जब बच्चों के पास समय नहीं होता है, तब ये दुख का शिकार।
1: बिल्कुल। और अभी बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे शायद इस परेशानी से गुजर रहे होंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पहले का जो लाइफस्टाइल थी, अभी की जो लाइफस्टाइल है, काफ़ी बदल चुकी है, हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल चुकी है, जिस तरह के चैलेंजेस शायद हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखे हैं, जिस तरह की कठिनाइयां उन्होंने देखी है, शायद हमने वो नहीं देखे हैं। अभी के समय में जो कठिनाइयां है वो पहले के मुकाबले अलग है, और आने वाले दिनों में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनके सामने जो चैलेंजेस होंगे वो अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम इस फेस को समझ नहीं पाते हैं, तब ऐसा होता है कि हम में मतभेद हो जाता है, सोचते कि सामने वाला हमें समझ नहीं पाता।
0: Exactly.
1: तो इसलिए कहते हैं ना, बदलते समय के साथ हमें भी अपने सोच को, अपने विचारों को बदलना चाहिए। ये नहीं कि हमें अपने बच्चों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा उम्मीदें कभी कभार हमें ही तकलीफ देती है, है ना। इस पर आप क्या कहेंगे?
0: क्योंकि बच्चे भी, जैसे माता पिता, उन लोग को समझ में आना चाहिए, और समझ में आता है कि माता पिता ने इतना हमारे लिए किया है, लेकिन हद से ज़्यादा जो अपेक्षा होता है वो

0: हानिकारक
1: हानिकारक होता है। चलिए हम अगर माओ की बात करें, हमारे बहनों की बात करें, हमारे नानी दादियों की बात करें, जो कुछ हम उनसे सीखते हैं वो शायद हम अपने स्कूल कॉलेज के लाइफ में नहीं सीख पाते, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में सीखा होता है अपने माता पिता से, वही गुण वही जो ज्ञान है हमें मिलता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है और वो होता है हमारे दिमाग के लिए, ठीक है, दिमाग को सशक्त करने के लिए, दिमाग को तेज़ करने के लिए और मेमोराइजेशन और ये सब करने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, ये सब एग्ज़ाम को पार करने के लिए। लेकिन जो शिक्षा जो हमारी माएँ और जैसे दादी नानी हो गई है वो हमारे दिल हृदय के लिए है, तो ग्रैटिट्यूड हो गया, लोगों से प्यार करना,
1: एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना, ना समझ की भावना,
0: समझ की भावना, तो वो जो शिक्षा है वो हमारी माता और नानी दादी।
1: आजकल जैसे हॉलिस्टिक लर्निंग्स की बात करते हैं, टीचिंग्स की बात करते हैं, जो आजकल स्कूल कॉलेजों में इस पर बड़ा जो है ध्यान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी मानवीय मूल्यों को ही उजागर करता है। क्योंकि हम अपने माताओं की बात करें, नानी दादी की बात करें, तो हमें जो है ह्यूमन वैल्यूज ही हमें उनसे मिले हैं, ना संस्कारों की हम बात करते
0: लेकिन
1: हैं।
0: लेकिन वो जो देखते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो जैसे अकादमिक हो जाता है, ठीक है ना, वो अकादमिक जैसा हो जाता है। और एक जैसे टीचर आता है ब्लैक बोर्ड के सामने, व्हाइट बोर्ड के सामने, ग्रीन बोर्ड के सामने, लेकिन ये जो माताएं और नानी दादी है ये उदाहरणों से आपको शिक्षित करती है,
1: मतलब कि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में सीखा है
0: अपने जीवन में
1: उसी के चल।
0: और वो अपने जैसे उसमें इमोशंस भाव भी ला रहे हैं उसमें, और दिखाते हैं कि ये देखो ये तुम्हारा जो चाचा है या मामू है, मैंने इसको ये किया, ऐसे किया तो इतना अचीव किया। लेकिन क्लासरूम में इतने बच्चों के सामने ये
1: मतलब कि वो इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। ये नहीं कह रहे कि वो जो सिखा रहे ठीक नहीं है, वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम अपनी माँ से जिस तरह से बात करते हैं जब एक किसी इमोशनल टॉपिक पर बात कर रहे हैं या किसी लाइफ एक्सपीरियंस पर बात कर रहे हैं, तो जो भाव उस समय हमारे मन में आते हैं शायद एक क्लासरूम में वो भाव नहीं आता है।
0: एग्जैक्टली यही मैं।
1: चलिए अगर हम समाज के प्रति, समाज को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो आजकल महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटैलिटी हो, पढ़ाई के क्षेत्र, मतलब कि आज जहाँ तक आप सोच सकते हैं महिलाएं वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो इस पर आपके क्या विचार है, क्योंकि अभी भी देखें तो महिलाओं के लिए चैलेंजेस ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले।
0: देखेंगे जो काम और जो लगन के साथ वो जो माताएं वो कर रही है वो जैसे इग्नोर हो जाता है जब हम इकोनॉमिक्स के बात करते हैं। जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है जो माताएं हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज हो जाता है
1: जी।
0: लेकिन जो काम करती है वो लोग काम करती है फुल टाइम और घर आकर फिर फुल
1: घर के काम काज में लग जाती है। बिल्कुल,
0: तो ये एक जैसे उसको एक मूल ये नहीं डालते हैं उसमें, जैसे एक प्राइस नहीं कर सकेंगे उसको
1: जी।
0: तो इतना अमूल्य है वो जितना जो
1: आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो महिलाएं बाहर कार्य करती है अपने प्रोफेशनल लाइफ को तो देखती ही है, लेकिन जब वो घर पर आती है तो घर की जिम्मेदारियां भी उस पर पड़ जाती है। लेकिन बदलते समय के साथ अभी के जो नव जो नए कपल्स हैं उनमें हम थोड़ा सा बदलाव ज़रूर देख रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति समझ उनमें थोड़ी सी ज़्यादा है ना, घर के कामों में हाथ बटाना। पहले ऐसा होता था कि लड़का जब घर का काम कर रहा है तो उसे टोका जाता था कि ये लड़के का काम नहीं है, लेकिन समय के साथ ये धारणा काफ़ी बदल रही है, काफ़ी घरों में इस चीज़ को अपनाया जा रहा है, समाज में भी इसके प्रति जो नज़रिया है वो बदल चुका है। आजकल तो हम तो काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि महिलाएं घर चला रही है और पुरुष घर पर जो है घर के काम काजों को देख रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, खासकर हमारे समाज के लिए।
0: मैं अभी गत साल एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है चेतन भगत, नाम सुना होगा आपने,
1: जी बिल्कुल,
0: तो मैं उनसे मॉरिशस में ही मिला था।
1: अच्छा,
0: तो उसके परिचय में एक जो एक सेमिनार हुआ था तो वो बोलते हैं कि आई एम ए हाउस हस्बैंड, तो ये शब्द दिया गया है हाउस हस्बैंड। तो हाउस हस्बैंड
1: जैसे हाउसवाइफ हम कहते हैं,
0: तो हाउस हस्बैंड है, तो घर में रहते हैं। और काफी अभी इस आधुनिक दौर में देखेंगे, जैसे मैं भी मैं घर पर

0: रहता हूँ, कभी घर से काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, और तो मैं भी एक तरह का वो घर पे रह के मेरे काम मैं करता हूँ और अन्य घर का भी काम करता
1: हूँ। बिल्कुल हाँ। तो और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं ये सालों से करते आई है। अभी के लिए जो है, जैसे हमने कहा, जीवन शैली काफ़ी बदल गई है, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। कोविड के बाद जो है एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, बहुत सारे ऑफशोर्स कंपनी है जो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं जहाँ पर आपको हर रोज़ दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शायद सप्ताह में एक दिन या कुछ दिन रिपोर्ट करना होता है। तो ऐसे पुरुषों को भी अवसर मिल रहा है कि घर पर रहकर काम करें, और साथ ही घर में जो उनका योगदान है वो बढ़ गया है, और ये समाज में, समाज की प्रगति के लिए और खासकर रिश्तों में जो है मधुरता लाने के लिए या वो जो कंपैटिबिलिटी है लाने के लिए बहुत अच्छा जो है ये अपना प्रभाव डाल रही है।
0: जैसे बोलते हैं ना, टीम वर्क होता है।
1: एग्जैक्टली
0: एक टीम वर्क होता है, ना कि एक आइसोलेशन में।
1: बिल्कुल
0: हाँ। तो जब ये टीम वर्क होता है, जो मैं अभी खुद सीख रहा हूँ टीम वर्क, क्योंकि मैं ज्यादा टीम वर्क में,
1: आप सीख रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े थोड़ा अपना अनुभव बताएं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक पुरुष घर पर रह के काम करे, पहले के समय में ये बात को अलग तरीके से देखा जाता था। महिलाओं का घर पर रहना अपने आप में बड़ी बात नहीं होती थी हमारे समाज के लिए, क्योंकि ऐसी धारणा थी कि महिलाएं घर का काम करने के लिए बनी है। लेकिन समय के साथ ये धारणा काफी बदली है और हमें बड़ा गर्व है इस पर। तो इस पर आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
0: मेरा अनुभव है कि जब मैं छोटा था तो माता जी जब शाम के समय
1: जी,
0: वो हमको जैसे वो खाना परोसती थी, तो हमको जिम्मेदारी दिया करती थी कि हम पानी और जैसे प्लेट हो गया ये सब वो खाने के बाद फिर उसको समेटना और धोना
1: जी,
0: तो हम करते थे
1: जी।
0: तो बीच में हम विदेश चले गए पढ़ाई के लिए और काम के लिए, जब वापस आए तो हम बड़े हुए हैं देखने कि माता जी पकाती है और वो खुद मान ये बर्तन सब मांजती थी। तो हमको अब देख, हमको ऐसा था कि पिताजी कुछ नहीं करते थे, लेकिन पिताजी का और काम था ना, जैसे वो काम करते थे फुल टाइम और माताजी घर पर रहती थी। अब जब मेरे पर आ गया ये सब, तो मुझको भी अभी थोड़ा शुरू में ऐसा लग देखता था कि थोड़ा अजीब सा महसूस होता था
1: जी,
0: कि
1: जी,
0: हमको भी हाथ बटाना ये सब। तो अभी इस दौर में तो सबको हाथ बटाना पड़ता है
1: और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी जो है हमारे जो है जीवन शैली काफ़ी बदल चुकी है और महंगाई का समय है, बच्चे हैं, बच्चों के एक्सपेक्टेशंस है, बच्चों की उम्मीदें हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्च है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में अगर पति पत्नी दोनों काम नहीं करे तो जीवन को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब अगर दोनों काम कर रहे हैं, बाहर की जिम्मेदारियाँ रहे हैं, तो आई बिलीव हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों ही की जिम्मेदारी होती है कि घर की जिम्मेदारियों को भी एक साथ निभाए, है ना। और बहुत से ऐसे पुरुष हैं कि घर पर खाना पकाते हैं, अपनी पत्नी का हाथ बटाते हैं। और अगर बच्चों में, आपने कहा छोटे थे तो घर का काम छोटा मोटा करते थे, कल को अगर वही लड़का बड़ा होकर विदेश में पढ़ने जा रहा है और छोटे मोटे काम करने की आदत है, तो उसका जो जीवन है वो सरल हो जाता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है घर के काम करने की, है ना।
0: तो अभी जैसे आपने बोला ना, छुट्टी चल रही है और शायद नौजवान लोग हमसे जुड़े हैं,
1: हाँ।
0: तो मैं इस यहाँ से मैं बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा काम अभी से सीखे, झाड़ू पोछा और ये सब बंथर मांझना,
1: हाँ।
0: क्योंकि बाद में आपको ये काम आएगा।
1: हाँ बिल्कुल,
0: देश में
1: जी नहीं, काफी काफी जरूरी, क्योंकि घर के काम सिर्फ महिलाओं को करना या महिलाओं तक सीमित नहीं है, अभी के समय में पुरुष भी जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और अगर हम बात करें कि कभी कभार ऐसा होता है कि सारी बोझ, सारी जिम्मेदारियां घर की जब महिलाओं पर आ जाती है, तो महिलाओं का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। एक समय के बाद जो है शारीरिक रूप से जो है बहुत कुछ बदलने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति बीमार है तभी ही उसके शारीरिक, मतलब कि इसमें बदलाव आता है, उम्र के साथ हमारे शरीर में बहुत कुछ बदलाव आता है और ये फिर कल को स्ट्रेस का कारण बन जाता है। और घर में एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कितना हर एक व्यक्ति, मतलब कि हर एक परिवार के सदस्य को जागरूक होना चाहिए।
0: हाँ, मैंने अभी जैसे हम भी बड़े हो रहे हैं और माता जी भी
1: उम्र हो रही है,
0: तो हम देखते थे कि जितने जो गति से आगे खाना पकाती थी और ये सब काम करती थी, अब थोड़ा मैं देख रहा हूँ थोड़ा कम होने लगा है।
1: जी।
0: तो अभी जब बोल रहे हैं ना इतना ये समस्या, तो मैं सोचता हूँ

0: किसी का एक
1: असर होगा,
0: असर
1: हाँ,
0: होता
1: बिल्कुल,
0: है
1: हाँ,
0: हाँ, हाँ। लेकिन जैसे बोलते हैं वो काम को लगातार करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा ढीलापन हो जाएगा तो खुद स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि
1: हाँ।
0: हम एक जैसे एक गति से हम भागेंगे ना तो रोकेंगे एकदम से, तो ये भी हानिकारक होता है।
1: क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ परिवार के सदस्य काफ़ी डिमांडिंग होते हैं, मतलब कि आज अगर मेरी सेहत अच्छी है तो मैं सब कुछ करके दे पा रही हूँ, कल को अगर मेरी सेहत ख़राब है या मानसिक रूप से शायद मैं किसी चीज़ का शिकार हूँ या मेरा आज मन नहीं कर रहा है तो शायद मैं अपने हर एक कार्य को उस गति से नहीं कर पाऊँगी, और जब नहीं कर पा रही हूँ तो सामने वाला के एक्सपेक्टेशन जब पूरे नहीं हो रहे तो आपस में अनबन शुरू हो जाता है कि देखो तुम तो कुछ करती ही नहीं हो ना।
0: ये बहुत सही आपने बोला है और मैंने देखा है अपने ही घर में और बहुत घरों में मैंने देखा है ये सब होते हुए।
1: जी, क्योंकि ऐसा होता है कि हम महिलाओं पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डालते हैं। आप सोचते हैं कि महिला अगर घर पर है तो शायद पूरा दिन उसे काम ही करते रहना चाहिए, क्योंकि सुबह अगर महिला अपने बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही है, पति के लिए खाना लंच ब्रेकफास्ट सब बना कर दे रही है, तो सोचो कि पूरे दिन का काम उसने सुबह के उस एक घंटे में कर लिया है, है ना। और फिर शाम के आपके आते आते उसने कुछ और तैयार कर लिया, और फिर बाद में रात के खाने की तैयारी, इसी में तो दिन निकल गया। फिर घर की सफाई, घर को समेटना, और घर बड़ा है तो आंगन की सफाई, तो जिम्मेदारियां काफ़ी हैं।
0: मैं निजी तौर पे किसी को जानता हूँ
1: जी
0: जो आगे बहुत, जैसे मैं अत्याचार नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ये सख्ती से वो पेश आता था अपने धर्म पत्नी से
1: जी।
0: तो बाद में जब वो चल बसी तो मैं उनसे जब पूछता हूँ तो आप क्या कर रहे हैं दिन में, तो आप निकल ये जाए, तो बोलते हैं नहीं नहीं अब मुझको पता लग गया है कि जब मैं मेरी धर्म पत्नी को बोलता था कि इतना काम है तो वो घर में रहते हुए कितना काम होगा, तो मैं काम करता हूँ तुम क्या काम करती हो घर पे, तब अब उसको एहसास होने लग गया
1: कितना
0: है
1: काम
0: कि कितना
1: होता है।
0: काम होता
1: बिल्कुल
0: है घर में।
1: क्योंकि एक व्यक्ति 2400 घंटे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सुबह आपने थोड़ा काम कर ले तो थोड़ा सा समय आपको अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में जो है इस सोशल वर्ल्ड के चलते, इस ग्लोबलाइजेशन के चलते, आजकल मी टाइम को बहुत जो है इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि अपना ध्यान रखना, अपने बारे में सोचना। पहले जब कोई अपने बारे में सोचता था तो कहते थे कि वो बहुत सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी के समय में जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ की बात ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पर अपने आप को समय देना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होते जा रही है समय के साथ। फिर चाहे वो महिला अपने अपने ज़रूरतों को समझे, अपनी इच्छाओं को समझे या अपनी इच्छाओं को व्यक्त करे, वह ये लागू घर के हर सदस्य पर होता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: हाँ, मी टाइम में देखेंगे जैसे अब तो मॉरिशस के अंदर बहुत सुविधा होने लग गया है, जैसे मसाज हो गया है, स्पा, ये सब आए दिन देखते हैं कि ये मॉरिशस भर में स्पा अभी उमड़ने लग गया है
1: जी।
0: तो हमको भी इस क्षेत्र में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग
1: योग ध्यान,
0: योग ध्यान और ये सब, तो हमको भी ये सब में जाना चाहिए और उसका लाभ भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके अलावा एक छोटी सी बात ये भी जोड़ना चाहूँगी कि इसके अलावा अपने आप को व्यक्त करना ना, ये एक बहुत, मतलब शुरुआत इसी से होती है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों को सुनने वाला और समझने वाला नहीं है, तो महिलाएँ जो है अपनी इच्छाओं को दबा कर रखती है, अपनी बातों को बोल नहीं पाती है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाती है, और वहीं पर जाकर उसका स्ट्रेस शुरू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है और अन्य बीमारियों का फिर समय के साथ, ये कभी कभार किसी बड़ी बड़ी बीमारियों का कहते हैं कि इसका तो कारण स्ट्रेस ही है, है ना।
0: स्ट्रेस एक तरह का अच्छा है, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा है। अभी पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं होता तो हम यहाँ पर स्टूडियो में नहीं बैठते।
1: हाँ, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं।
0: लेकिन ये थोड़ा भी स्ट्रेस भी है और जब खाना खाते हैं तो भी स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वजह से हम खाते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन जब निगेटिव स्ट्रेस हो जाता है तब ये हानिकारक हो जाता है।
1: चलिए ऐसा करते हैं, एक छोटे से गीत के साथ कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज महिलाओं के योगदान की बात कर रहे हैं, फिर चाहे हम परिवार में उनके योगदान की बात करें, समाज में, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मॉरिशन महिलाओं का बड़ा ही योगदान रहा है आज मॉरिशस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। पहले के समय में भले ही वो खेतों में जाती थी काम करने, लेकिन उस योगदान को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। खेतों में काम करते करते आज महिलाएं देखिए पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है, तो इस पर आपके क्या विचार है अश्विन जी?
1: तो देख, जैसे आपने बोला है पॉलिटिक्स में आकर और इस देश का राष्ट्रपति भी बन गई है महिला, तो ये इतना योगदान उन लोगों का होता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है शिक्षा
0: जी,
1: तो शिक्षा के वजह से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो देखते हैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, ये सभी लोग, सभी काम में महिलाओं है उसमें। अब देखेंगे कंडक्टर, ड्राइवर, बस
0: मतलब का, कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जो सिर्फ पुरुष तक पुरुष प्रधान थे, अभी महिलाएं भी, फिर चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आज हर एक सेक्टर में हम महिलाओं को उभरते हुए देख रहे हैं।
1: तो ये एक तो एक पॉजिटिव बात हो गई है
0: जी।
1: और लेकिन उसमें भी बहुत महिला सोचती है कि एक थोड़ा एक ग्लास सीलिंग हो गया है, तो उससे ऊपर भी जाना उन लोगों को चाहिए, लेकिन वो जा नहीं पा रही है, तो ये इस पर थोड़ा काम करना बाकी है।
0: क्योंकि मॉरिशस में तो उतना नहीं शायद, हम अगर ग्लोबली इसकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर महिलाएं हैं, जहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बीच में अभी भी जो पे स्केल है वो समान नहीं है। हम यहाँ के कंटेक्स में बात नहीं कर रहे, लेकिन विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है इस पर नज़र दौड़ाई जाती है कि जो काम पुरुष कर रहे हैं महिलाएँ भी तो वही कर रही है। तो फिर जब तनख्वाह देने की बात आती है तो फिर बराबर क्यों नहीं है, है ना?
1: तो ये एक डिस्पारिटी जैसा हो जाता है। और ये बात तो आम मॉरिशस में नहीं है बहुत, लेकिन विदेशों में
0: हाँ, विश्व स्तर पर इसे काफ़ी जो है देखा जाता है इसके बारे में। चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आज महिलाएं किसी देश की प्रधानमंत्री है, तो कहीं प्रेसिडेंट है, बड़े बड़े जो है सोशो कल्चरल ग्रुप के जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने कहा शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी नींव होती है, और महिला सशक्तिकरण की बात करें, और ख़ासकर हम एक बहुत ही ऐसे समृद्ध देश में रहते हैं जहाँ पर लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं किया जाता है, लेकिन ये फ़र्क आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से देशों में देखा जाता है कि महिलाओं को या बच्चियों को वो समानता जो है नहीं दी जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, इसमें है कि जैसे आपने बताया पुरुष प्रधान, जितने जो खास तौर पर जितने जो MNCs होता है मल्टीनेशनल कंपनी में हम देखेंगे तो रेम्यूनरेशन में डिस्पारिटी होता है
0: जी।
1: हाँ, कितना सेम वर्क लेकिन डिफरेंट पे
0: एग्जैक्टली,
1: तो ये इसमें बहुत काम चल रहा है
0: exactly।
1: हाँ, और अलग अलग संस्था है विश्व स्तर पर, तो उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है
0: जी।
1: खासतौर आपने जब मेरा जो इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस
0: जी,
1: तो उसमें ये विषय आता है।
0: अच्छा,
1: तो बोर्ड में इक्वालिटी और बोर्ड में जैसे एंगेजमेंट कैसे उसमें शामिल हो और काम हो
0: जी। और डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आज भी समाज में काफ़ी वर्ग में हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो है अत्याचार अभी भी हम देखते हैं, विश्व स्तर की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से जो है इस पर कार्य किया जा सकता है? क्योंकि आज हम यहाँ से चांद तक पहुँच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मानसिकताएँ अभी भी नहीं बदली है। महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति जो अत्याचार हैं विश्व स्तर पर आज भी हो रहे हैं, तो किस तरह के जो है हमें कार्य करना चाहिए या अपना योगदान किस तरह से देना चाहिए कि इसके बारे में लोग और ज़्यादा जागरूक हो?
1: हाँ, जैसे देखते हैं ना

0: एक समय मॉरिशस में था कि जब बच्चे वो बच्चा ये लड़का है तो आगे पढ़ाई जारी रखेगा, और जो लड़की है वो जैसे यहाँ पर बोलते थे सीजम के बाद कुछ नहीं होना।
1: लेकिन समय के साथ इसमें काफी बदलाव आया
0: तो
1: है,
0: समय के
1: अभी वैसा नहीं है,
0: ऐसी वैसा नहीं है। तो फिर भी अलग देशों में ये हो रहा है कि बच्चों को ऐसे वो रोकते हैं, उसको पढ़ाई आगे नहीं करने देते हैं। तो ये जब बदलेगा तो
1: अपने आप में अन्य बदलाव भी आएंगे, क्योंकि कई देश आज देखो जहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे देशों में हम देखते हैं कि बच्चियाँ और महिलाएं भी हैं जो ज़्यादा अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें जो है उनके ही हक से वंचित रखा जा रहा है। तो महिलाओं की हक की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से एक महिला को अपने हक के बारे में जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आप जो है जूरिस्ट भी है, जो है लीगल कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं, तो आप बताइए कि किस तरह से एक महिला की हम बात करें तो किन बेसिक चीज़ों की जानकारी उसे होनी चाहिए कि हाँ ये उसका हक है, ये उसका राइट है, इसके लिए उसे आवाज़ उठानी चाहिए।
0: हाँ, जैसे देखते हैं ना अभी अभी के दौर में एक मान लो एक एप्लीकेशन निकलता है तो देखते हैं ऑन द बेसिस, जैसे वो अभी शादीशुदा है तो इंटरव्यू में पूछते हैं यदि आप शादीशुदा है तो इन लोगों को लगता है कि अभी आगे चल के उन लोगों को बच्चा ये सब होने लगेगा तो फिर ऑफ लेंगे। तो ये सब के खिलाफ हमको काम करना चाहिए कि इक्वल ये हमको चाहिए कि उन लोगों को एम्प्लॉय करना। और जैसे अभी देखे है ना आगे ये वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम नहीं था,
1: लेकिन अब हुआ है।
0: हाँ, अब हुआ है तो बच्चे भी होंगे और काम भी करेंगे, ना कि वो शादीशुदा है या उसके जवान है तो बच्चे होने का संभावना है तो उसको वंचित करेंगे उसे काम से।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को तो आगे लेकर जाना ही है ना, तो करके ना जो है लोग शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे ही तो आने वाले कल का भविष्य है। तो इस पर भी आपने सही कहा कि बहुत से जगहों पर इस सभी बातों को हम सुनते हैं, पर किस हद तक वाकई में ऐसा होता है शायद सही सही हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में।
0: तो ये सब आगे नहीं आएगा ना, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में जब हम देखते हैं, अभी मॉरिशस की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व भर में जो स्टैटिस्टिक है तो देखेंगे कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है इस वजह से, क्योंकि वो महिला है, जवान है और शादीशुदा है और उसके बच्चे होने का संभावना है।
1: हाँ, तब हाँ, जी।
0: तो ये पूरा ट्रेनिंग हम आपको देंगे और छः महीने के बाद बोलेंगे कि मैं थोड़ा काम स्लो करूंगा क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और उसके बाद में बच्चा होगा, तो फिर से किसी और को लेना चाहिए और उसको भी ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि
1: मत ही
0: मैं नहीं लूँ तो अच्छा है।
1: जी, और ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। आज जहाँ पर देश प्रगति कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इतना कुछ हो रहा है, तो उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन सराहनीय है। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी के समय में हम बदल सकते हैं जिससे महिलाएं और प्रगति कर सके आपके हिसाब से?
0: हाँ, मैं सोचता हूँ जैसे बहुत से सुविधा है, ठीक है, जैसे लोन हो गया है और ट्रेनिंग, क्योंकि हम देखते हैं कि एक जैसे बहुत यहाँ मॉरिशस में मैंने देखा है कि बहुत लोगों के पास हुनर है और उस हुनर को आगे तक जैसे इकोनॉमिक करने के लिए, उससे आमदनी आने के लिए उन लोगों को पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए, जो स्टार्टअप है। हाँ, तो बहुत महिला है कि महिलाओं के पास बहुत ये सब हुनर है लेकिन शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। है भी ऐसे डेवलपमेंट बैंक ये सब पैसे देते हैं, तो यदि ये हो और ट्रेनिंग हो तो मैं सोचता हूँ ये बहुत आगे चलेंगे।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं SME की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करें, ज़्यादातर महिलाएं जो है इससे जुड़ी हुई है, जहाँ पर उन्हें कोर्स दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, आगे बढ़ने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। और अगर महिलाओं में कुछ हुनर है तो समाज को आगे आकर उनका साथ देना चाहिए, इस हुनर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ उसके लिए ही रोज़गार का ज़रिया नहीं बनता है, वो समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपना योगदान दे रही है, इससे समाज की भी प्रगति हो रही है और साथ साथ में राष्ट्र की भी प्रगति हो रही है।

0: हाँ
1: हाँ, क्योंकि इसमें देखते हैं कि महिलाओं के पास जैसे बोलते हैं ना बहुत शक्ति होती है और इन लोगों को बहुत जैसे पेशेंस होता है और ये सब काम करने के लिए
0: जी।
1: तो खास तौर पर जब देखेंगे कि खुद का बिजनेस रहेगा तो बहुत प्रगति करती है।
0: और कहीं ना कहीं अगर हम लड़कियों की बात करें तो आजकल एजुकेशन में भी लड़कियां जो है ज़्यादा बेहतर कार्य कर रही हैं। मतलब कि नंबर्स की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो लड़कों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो है लड़कियां कर रही है। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि अगर आप महिलाओं में इन्वेस्ट करें, अगर उनके पास कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस आइडिया है, तो उसे डेवलप करने की कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं ना कि आप उसे मकान देते हो तो वो उस मकान को घर बनाती है। तो ये शायद उसकी पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, ये उसके प्रोफेशनल लाइफ को भी शायद इस तरह से कर सकता है कि आप उसे एक चीज़ दो तो उसे 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकती है, है ना। जैसे प्रकृति को हम माँ कहते हैं ना, एक बीज डालते तो उससे कितना बड़ा पेड़ होता है और उसी पेड़ पर न जाने कितने फिर फल आते हैं और बीज के रूप में फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो महिला भी अपने आप में कुछ उसी तरह की है।
1: हाँ, क्योंकि वो लोग जैसे बोलते हैं ना बहुत जुड़े होते हैं और बहुत डिलीजेंटली काम करती है, तो इस वजह से वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं SC HSC के। जब पेशाक से लेकर जितने जो ये एग्ज़ाम होते हैं उसमें लड़की सबसे अच्छा वो काम
0: परफॉर्म करती है। तो चलिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम था खासकर हमारी महिलाओं पर आधारित था, उनके योगदान को जो है हमें इस पर बात करने का अवसर मिला इस कार्यक्रम के द्वारा। और देखते ही देखते हम कार्यक्रम के लगभग अंत तक भी आ पहुँचे हैं। अश्विन जी, जाते जाते आप हमारे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनको कोई संदेश देना चाहते हैं।
1: हाँ, तो मैं संदेश यही दूंगा कि महिलाओं को हम रिस्पेक्ट दें और बहुत से ऐसे वो हम देख रहे हैं कि केसेस आए हैं फेमिनिसाइड का, तो ये नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस को भी थोड़ा
0: इस हम, पर भी हमें सोच
1: विचार करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि देश को आगे बढ़ाएंगे तो टीम वर्क होना चाहिए, क्योंकि इतना आधा पुरुष करता है आधा महिला करता है, तो हम दोनों

0: टीमवर्क होना चाहिए, क्योंकि इतना आधा पुरुष करता है आधा महिला करता है, तो हम दोनों
1: अच्छा बदलाव देखना चाहते हैं तो सिर्फ बातें करने के बजाय उस बदलाव की ओर हमें भी अग्रसर होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अश्विन जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन कहेंगे आपको और जितने लोग हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। पुनः हमारी आपकी भेंट जल्द होगी। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से।

0: आइए सुनते हैं समाचार रिधिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। हम मौत के सौदागरों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समझौता नहीं करेंगे और कोई कवर अप नहीं की जाएगी, ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कही। वे विपक्ष नेता जोली शोंगो के पीएनक्यू का जवाब दे रहे थे। जोरेनियन और मोशस के बीच 155.7 किलो गांजे के कथित तस्करी के मामले में पूर्व जूनियर मंत्री वेहो निकोलो गोविंद के पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी पर केंद्रित थी। जेल प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण मिलेंगे। मार्च 2027 तक इसके पास किसी भी अनधिकृत ड्रोन गतिविधि का पता लगाने और उसका मुकाबला करने के लिए एक नई एंटी ड्रोन प्रणाली होगी। प्रधानमंत्री ने आज पीएमक्यूटी के दौरान इस परियोजना का उल्लेख किया। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, जिसे जल्द ही बनाया जाएगा, के लिए एक उच्च योग्य पेशेवर के चयन को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। सरकारी नेता ने इसके अलावा रियल इस्टेट और टैक्स से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। मॉरिशस में नैतिक भर्ती को बढ़ावा देना और विदेशी श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने इस मंगलवार को पोर्ट लुई में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मिक्सा और आगिम के साथ किए गए हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य नौकरी बाजार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हुए अधिक जिम्मेदार श्रम प्रवासन को बढ़ावा देना है। और विदेश में मोरक्को से स्पेन के स्वेटा में प्रवासियों के भारी आगमन के बाद यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने सीमा सुरक्षा के लिए संयुक्त कार्रवाई की मांग की है। इस बीच स्थिति पर चर्चा के लिए मंगलवार को यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक होगी। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You're listening to RM3 Radio. Man.

0: आपके सितारे।
1: वेल फ्रेंड्स, आपका प्यार भरा नमस्कार और आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम मंडे और ट्यूसडे। लेकर आते हैं आपके लिए आपके सितारे, जहां पर आसमान से एक सितारा हम भी आपके लिए लेकर आते हैं। एक सितारा ऐसा जो शायद कहीं दिल में छुपा बैठा है, और उनके गाने जिन्हें आज भी सुनकर लगता है कि शायद वो यहीं कहीं है। सो आज के हमारे जो सितारे हैं वो तो आप समझ ही गए हैं कौन होंगे, क्योंकि ये जो आवाज़ है इसे हमने काफ़ी बार सुनी है और आज भी इस आवाज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। सो टुडे वी आर सेलिब्रेट बॉलीवुड के डिस्को किंग यानी कि बप्पी लहरी। गोल्ड चेन्स या फिर फंकी स्टाइल, डार्क ग्लासेस हो या फिर ऐसे बीट्स जो आज भी सुनते ही डांस फ्लोर को जिंदा कर देते हैं। कुछ ऐसे गाने 80s 90s के नॉस्टैल्जिक यादों को आपके लिए हम ताजा करने वाले हैं। बप्पी दा ने बॉलीवुड को एक नई पहचान दी, इंडियन मेलेडी प्लस वेस्टर्न डिस्को ग्रूव। तो रेडी हो जाइए इस नॉस्टैल्जिया के लिए, और इस सफर को स्पेशल बनाएंगे हम आपके लिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूं परी आपके साथ, और साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स। कोशिश यही रहेगी कि ये जो दो घंटे हैं आपके लिए हो खास और स्पेशल, और खास तौर पर हमारे सभी बप्पी लहरी फैंस आपको फील करवाएंगे स्पेशल। एंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गोविंद रघुनंदन। सो ये जो अगला गाना है आपके नाम, फॉर योर वाइफ वेदा, एंड इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: सवेल बॉपी लहरी स्पेशल आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, जहां पर उनके जो फैंस हैं वो उनकी यादों को एक बार फिर जी सकते हैं। कुछ गाने ऐसे हुए उनके जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, और सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड उनका जो क्रेज़ था वो बिल्कुल कह सकते हैं कि सारे जो लेवल्स हैं वो क्रॉस कर गया था। बल्कि रशिया में तो उनकी जो गाने थे वो कल्ट हिट्स बन गए थे। वहाँ के जो डिस्कोज होते थे वहाँ पर भी बप्पी लहरी के गाने चलते थे, और ये गाना ऐसा है जिसे हम बार बार सुनते हैं, बार बार याद करते हैं। बम्बई से आया मेरा दोस्त बप्पी लहरी की आवाज, और ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम हैव अ ग्रेट टाइम। आपके सितारे, आज जिस सितारे को हम लेकर आए हैं वो है बप्पी लहरी।

0: RM3 Radio. Radio.
1: और गाने गाना हो या फिर गानों को कंपोज करना हो, बप्पी लहरी दोनों ही चीज़ें लाजवाब करते थे। उनके गाए हुए गाने या फिर उनके कंपोज किए हुए गाने आज भी उतने ही पॉपुलर है, तो कह सकते हैं कि ही वॉज अ क्वाइट अहेड ऑफ हिज टाइम। और वही जो थे जिन्होंने डिस्को कल्चर इंट्रोड्यूस किया इन बॉलीवुड, सो वेस्टर्न बीट्स के साथ बॉलीवुड गानों को मिक्स किया और ऐसे गाने बनाए जिन्हें हम आज भी इन 2026 इतना एंजॉय करते हैं। यानी कि 70s, 80s, 90s का मैजिक आपके लिए अभी भी चल रहा है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। 2026 में लेकर आए हैं ये गाने बप्पी दा के, जो लगता है कि भाई एकदम ट्रेंडी है, एकदम लेटेस्ट है, क्योंकि उनके म्यूजिक का स्टाइल ही कुछ ऐसा था। तो अभी के लिए एक ऐसा गाना जो हमेशा से रहा है यादगार, बप्पी लहरी की आवाज़ और ये गाना उनके सभी फैंस, हमारे सभी सुनने वालों के नाम।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: वैसे उनका कंपोज किया हुआ हर एक गाना स्पेशल, लेकिन दिस वन इज लिटिल एक्स्ट्रा स्पेशल. जब भी इस गाने को सुनते हैं, जब भी इस गाने को चलाते हैं, दिल जो है वो एक अलग दुनिया में चला जाता है. अभी के लिए तो इस गाने को हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम, फॉर ऑल द लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं. और इस गाने के जरिए हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि कभी अलविदा ना कहना, हमारे जो साथ आपका कनेक्शन है उसे ऐसे ही बनाए.

रखना फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन लेकर आए हैं आपके सितारे सेलिब्रेटिंग बप्पी लहरी उनका म्यूजिक उनके गाने मैं हूं परी आपके साथ शाम के ठीक 6 बजे तक

तो अगर आप भी बप्पी लहरी के फैंस हैं और उनके ऐसे ही गानों को आप एंजॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आप. उनकी कुछ यादों को ताज़ा कर रहे हैं, उनके कुछ कंपोज किए हुए गाने, उनके कुछ गाए हुए गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं. प्रोग्राम है आपके सितारे और रवि के लिए ये हार्ट टचिंग गाना उनके सभी फैंस के नाम. और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर. एक बार फिर लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और प्यारे प्यारे गाने और बप्पी लहरी, उनके कुछ ब्यूटीफुल कंपोजिशंस, उनके कुछ ब्यूटीफुल गाए हुए सॉन्ग. सो कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड. फॉर नाउ वी हैव दिस सुपर रोमांटिक गाना आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. RM3 रेडियो मनोरंजन, मैं हूं परी आपके साथ. प्रोग्राम आपके सितारे.

और इस वक्त यहाँ पर चाचा महीन हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि इन गानों को सुनकर उन दिनों की याद आती है जो हमेशा यादगार रहेंगे. बप्पी दाव वॉज रियली अ लेजेंड और उनकी

जो आवाज थी सबसे अलग सबसे जुदा उनके गानों को सुनकर लगता था कि बस इन गानों को सुनते जाएं और कहते हैं कि अगर उनके कोई सोलो गाने हैं उनके कोई डुएट्स हैं हर एक गाना लाजवाब था उषा उत्तम के साथ उनके कुछ डुएट्स इतने वंडरफुल रहे और दोनों की जोड़ी कमाल की थी तो बिल्कुल उनके कुछ डुएट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे चाचा महेन हमारा साथ दे रहे हैं आप अभी इस वक्त सो बस ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आप भी एंजॉय करें और एक बार फिर रीलिव करते हैं द मैजिक ऑफ पपी लहरी

0: se tavi.
1: So, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। शाम के 5:10 हो गए हैं, हमारा प्रोग्राम अभी भी जारी है, आपके सितारे प्रोग्राम, जहां पर आज जिस सितारे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है बॉलीवुड के वन एंड ओनली बप्पी दाद, कह सकते हैं उनको द डिस्को किंग ऑफ बॉलीवुड, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिस्को कल्चर इन बॉलीवुड सॉन्ग्स। और जैसे हम कहते हैं, उनकी गोल्डन चेन्स, उनके स्टाइलिश डार्क ग्लासेस, फंकी आउटफिट्स और ऐसे बीट्स जो आज भी हम सुनते हैं और हमारे पैर थिरकने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वन एंड ओनली बप्पी लहरी को, और यहाँ पर उन्हीं के कुछ प्यारे गाने हम लेकर आए हैं। शादी हो या फिर स्टेज शोज, ऑर्केस्ट्रा हो या फिर रेट्रो नाइट, बप्पी दा का म्यूजिक हर जगह अपनी अलग पहचान बनाता है। उन्होंने इंडियन मेलोडीज को वेस्टर्न डिस्को ग्रूव्स के साथ ऐसे ब्लेंड किया कि बॉलीवुड का जो साउंड है वो बिल्कुल बदल गया। उनके गानों को आज भी सुनकर लगता है कि ये गाने जो हैं वो तो अपने टाइम से काफ़ी आगे थे। 2026 में हम एंजॉय कर रहे हैं 70s के गाने, लेकिन मैजिक आज भी बरकरार। So this one goes out for all the fans of Bappi Lahri, for all the listeners of Radio Manoranjan. मैं हूँ परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक। ये है हमारा प्रोग्राम आपके सितारे।

0: आपके सितारे।
1: So well friends, ये तो बन गई थी एक iconic जोड़ी बप्पी लहरी and अमिताभ बच्चन। उनकी दोस्ती इस गाने के बाद इतनी गहरी हो गई और इस गाने को हमने सुना फिल्म नमक हलाल में और उसके बाद उनकी जो फ्रेंडशिप है उसके काफ़ी किस्से सुनने को मिले और ये जो गाना था वो रेट्रो पार्टीज़ की जान हुआ करता था। और आपको बप्पी लहरी के बारे में भी कुछ हम बताना चाहेंगे। वैसे जो उनका असली नाम है वो है आलोकेश लहरी। कोलकाता की एक म्यूज़िकल फैमिली में वो पैदा हुए और बप्पी दा ने बचपन से ही म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली थी। सिर्फ 19 साल की एज में बॉलीवुड में एंट्री हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, अपनी एक अलग पहचान बनाई। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बप्पी लहरी स्पेशल। सो वेल दोस्तों, ये जो अमिताभ बच्चन और बप्पी लहरी का ज़बरदस्त हिट था, ये था आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ सुपर पॉपुलर वन और ये जो गाना है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि रशिया, चाइना और ईस्टर्न यूरोप में भी काफ़ी पसंद किया गया। आपको बता दें कि उस जमाने में बॉलीवुड का ग्लोबल क्रेज काफी हद तक बप्पी दा के डिस्को साउंड की वजह से ही बढ़ा और अभी के लिए वही आइकॉनिक गाना आप सभी के लिए। गुड म्यूजिक की बात करें तो भाई ऐसा म्यूजिक बस बप्पी लहरी कंपोज कर सकते हैं। आज भी इस गाने को हम उतना ही पसंद करते हैं। पार्वती खान की आवाज आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रही हैं, कंपोजिशन ऑफ बप्पी लहरी, दैट्स जिमी जिमी आपके लिए। एंजॉय दिस वन।

0: के सितारे।
1: और वेल दोस्तों, आज हम पप्पी लहरी स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोग्राम आपके सितारे में। और आपको बता दें कि एक साल में 30 से भी ज़्यादा फिल्म्स के लिए म्यूज़िक कंपोज करते थे पप्पी लहरी। और एक टाइम था जहां पर एक साल में 30 से ज़्यादा फिल्म्स के लिए उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया भी। प्रोड्यूसर्स उनकी स्पीड और क्रिएटिविटी दोनों से इम्प्रेस रहते थे, और इतनी फास्ट कंपोजिंग जो एबिलिटी है वो बहुत ही रेयर मानी जाती है। यहाँ पर कुछ फन फिल्ड गाने उनके हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जो गाने ऐसे हैं जिन्हें हम आज भी सुने, पग घुंघरू या फिर यार बिना चैन कहाँ रे या फिर जिमी जिमी डिस्को डांसर, हर एक गाना लाजवाब। डिस्को डांसर गाने के बाद मिथुन चक्रवर्ती जो है उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो दुगनी हो गई थी, इतना पसंद किया गया। और उसी गाने के साथ लोगों को पता चला कि मिथुन दा हैज़ अ वंडरफुल डांसिंग स्किल्स एज वेल।

गाना ही इतना बढ़िया था तो उसके बाद बप्पी दा का म्यूजिक और मिथुन चक्रवर्ती के डांसिंग मूव्स दोनों का हुआ परफेक्ट कॉम्बिनेशन और वो गाना बन गया एपिक एपिक सॉन्ग जिसे हम आज भी कहीं भी जाए इस गाने को सुनते जरूर है। तो चलिए दोस्तों सिर्फ पुराने गाने नहीं लेटेस्ट गानों में भी हमने उनकी आवाज़ सुनी और एक फिल्म आई थी टैक्सी नंबर 9211 उसमें भी उनकी आवाज़ का मैजिक हमें सुनने को मिला। फिल्म में नजर आए थे नाना पाटेकर जॉन इब्राहिम और उस फिल्म में विशाल ददलानी का म्यूजिक एंड आवाज बप्पी लहरी की एक ऐसे सिंगर जिन्हें हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं एंड हाउ कैन वी नॉट प्ले दिस गाना। लेटेस्ट हो या फिर पुराने हर एक दौर में उन्होंने अपना मैजिक बिल्कुल बिखेरा और उनका जो स्टाइल था उनकी जो आवाज़ थी वो हमेशा दिल के करीब रहेगी।

सो बम्बई नगरिया से बैक टू मॉरिशस और जी हाँ पप्पी लहरी के कुछ फेमस सॉन्ग्स आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250-6200 पर अभी के लिए संध्या हमारा साथ दे रही हैं सीपीएसए और चलिए इस गाने को हम आपके नाम डेडिकेट करते हैं थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए साथ ही जबरदस्त गाने एंजॉय कर रहे हैं प्रीतम जी आप हैं न्यू ग्रोव से सो ये गाना आपके नाम एंड थैंक यू सो मच आपने कनेक्ट किया है RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ ज्योति जी साथ देने आई हैं ऑल द वे फ्रॉम शातो बनारस सो ये गाना आपके नाम गोज आउट फॉर आशनी रेखा सुरेखा सभी मदब परिवार के नाम बपी लहरी आशा भोसले की आवाजें एंजॉय दिस वन

और चलिए दोस्तों, अभी के लिए हमारा ये जो बप्पी दास स्पेशल था वो यहीं पर समाप्त होता है उनके लास्ट गाने के साथ। यानी कि वो गाना ऐसा था जिसे हमने कुछ ही सालों पहले सुना, लेकिन रातों रात ये गाना इतना वायरल हुआ क्योंकि शायद ये लगता है मैजिक था बप्पी दा की आवाज़ का। और कुछ लेटेस्ट अंदाज में उन्होंने इस गाने को गाया, उनका साथ दिया बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने, एंड दैट वॉज एपिक सॉन्ग जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बप्पी दा ने हमें सिखाया कि म्यूज़िक सिर्फ सुना नहीं जाता, म्यूजिक को फील भी किया जाता है, जिया जाता है और डांस करके सेलिब्रेट भी किया जाता है। सो बस इस सिंगर को हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहेंगे, भले ही हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके गाने आज भी वायरल और आज भी उतने ही स्पेशल। इसी गाने को डेडिकेट करेंगे हमारी प्यारी सी रेखा जी के नाम, उनका बेटा अंश पोमो, जिसे हमारा साथ दे रही हैं आप सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेडियो मनोरंजन RM3 आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम हम लेकर आए, जहां पर हमने चलाए बप्पी दा के कुछ बहुत ही फेमस सॉन्ग्स। और थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। सो हमारे साथ जुड़े रहे ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी शाम 6:30 बजे समाचारों के बाद, लेकर आएंगे प्रोग्राम नई सोच और दिलों की आवाज़। मैं हूँ परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। एंजॉय दिस वन।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ. हमारी धरोहर.
5: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा. कल हमने चर्चा शुरू कर ले रही जा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर, और हमने देख ली जा कि कैसे ई दीवार के जो ढांचा बा उ दुनिया के सातवा अजूबा में गिनल जाला, और ई एगो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा होला जगह है, साथ में ई एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. तो आज देखब जा कि ई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जेके देखे खातिर दुनिया भर के लोग जुटे लन जा, एकर अंकन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के कौन शर्त पर हो रहल, और एकर जोन विशेषता है उका है. वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के 5 गो शर्त पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करल गल बा. पहला जोन शर्त है वह मिंग डिनास्टी के ग्रेट वॉल के रंग रूप ही अद्भुत नहीं बा, बल्कि ओकर निर्माण भी संपूर्ण पैफिक्सियों से करा गल बा. ई पूरा रूप से एगो मास्टरपीस है. ई उ अकेला हाथ से बनावल ढांचा है ई पृथ्वी पर जोन चांद से भी नजर आवेला. ई दीवार एगो पूरा कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा जगह ले ले बा, और एगो बहुत ही निपुण उदाहरण है जहाँ आर्किटेक्चर लैंडस्केप बहुत सुंदर रूप से घुल मिल गल बा. दूसरा जोन शर्त बा उ ई कि चंग्यू पीरियड के दौरान चीनी लोग अपन जोन कंस्ट्रक्शन मॉडल बा और अपन उलोग के लेसपास बा ओके अपन प्रतिरक्षा कार्य में और उत्तर के जोन सरहद बा ओकर पर स्थापित कर लन सा, ओकर पर एम्पोजे कर लन सा. तीसरा शर्त है ग्रेट वॉल प्राचीन सभ्यता के अनोखा गवाह, कहे कि एकर कुछ भाग गांसु प्रोविंस में मिंग जमाना से बा, मतलब कि ये बहुत ही पुराना एगो दीवार है जोन बने की शुरू हो रहा. चौथा शर्त है कि ये जटिल जोन कल्चरल प्रॉपर्टी बा एगो मिलिट्री आर्किटेक्चरल एंसेंबल है, एकर अनोखा और एकमात्र उदाहरण है जोन अपन उद्देश्य के 2000 बरिस तक पूरा कर लेबा. लेकिन साथ ही बदलती राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार एकर जोन प्रतिरक्षा के टेक्निक बा ओकर में नवापन आनल गल बा. अब पांचवा और छठा शर्त है कि ग्रेट वॉल चीन के इतिहास में अद्वितीय है. एकर मकसद रहल चीन के प्रतिरक्षा बाहरी हमला के खिलाफ करेगी, लेकिन साथ ही चीनी सभ्यता के जिंदा रख के ओके बचावे के भी एकर उद्देश्य रहल. एकर निर्माण बहुत दुख और त्याग से करा गल बा. ई खातिर

0: चीनी साहित्य में ग्रेट वॉल एगो रेफरेंस है, एगो उदाहरण है। ग्रेट वॉल उस सब टैंजिबल मूर्त आध्यात्मिक ऐतिहासिक पहलू के बच्चा के रखले बा जोन ओकर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू दर्शावेला। ग्रेट वॉल अपन जोन मौलिक स्थान बा ओरिजिनल प्लेस ओकर जोन निर्माण के सामग्री बा कंस्ट्रक्शन मटेरियल ओकर जोन रूप बा टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर के प्रिजर्व करके रखले बा ओके सुरक्षित रखले बा संरक्षित रखले बा। तो ई रहल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कौन कौन शर्त पर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करल गल बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते, कल फिर मिलब जा।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: मंगलवार 4 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कोई भी कानून से परे नहीं है और इस मामले में किसी तरह का कवर अप नहीं होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में ये बात कही। वे पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेरोनिका लुगोविन के पति गुलशन गोविन से जुड़े कथित ड्रग तस्करी मामले पर विपक्ष नेता जूली जोंग के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। मॉरिशस में वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। वेटलैंड्स बिल राष्ट्रीय सभा में पहली बार पेश किया गया। इसका मकसद इन प्राकृतिक क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी आज स्वदेश लौट गए। देश के नाम आई मेडल हमारी हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच एक बार फिर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत संघर्ष समाप्त करने का आखिरी मौका है। वहीं ईरान ने अमरीका के साथ किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता से एक बार फिर इनकार किया है। और उधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का कहर अभी भी जारी है। आसाम में बाढ़ और बारिश से हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। इस बीच भारत मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। कोई भी कानून से परे नहीं है और इस मामले में किसी तरह का कवर अप नहीं होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में ये बात कही। ये वे पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेरोनिका लुगोविन के पति गुलशन गोविन से जुड़े कथित ड्रग तस्करी मामले पर विपक्ष नेता जो लिजोंग के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। सिंचामुत्यू की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 26 जुलाई को रियूनियन टापू से प्राप्त उस सूचना के बाद की घटनाओं का क्रम बताया जिसमें 155 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किए जाने की जानकारी दी गई थी। इस खेप की कीमत 233 मिलियन रुपए बताई गई है। इसके बाद गोविंद परिवार के घर की तलाशी का वारंट जारी किया गया। पूर्व जूनियर मंत्री वेरोनिका लुगोविन का एक वाहन भी जब्त किया गया। वहीं उनके पति गुलशन गोविन को गिरफ्तार कर अस्थायी रूप से आरोपित किया गया।
2: On the 1st of August 2026, in the presence

0: मिस्टर वाईजे एंड आत्सू ऑफिसर्स।
1: पहली अगस्त 2026 को आत्सू और एफएसएल के अफसरों ने संदिग्ध की उपस्थिति में गाड़ी की जांच की, जिसमें गांजे के पत्ते और बीज पाए गए। उसी दिन उस पर अस्थायी आरोप लगाए गए और उसे वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया। उसे पुलिस हिरासत में रखा गया। ब्लैक रिवर की अदालत में उसे फिर से पेश किया जाएगा। 3 अगस्त 2026 को ब्लैक रिवर की जिला अदालत में उसके खिलाफ डेंजरस ड्रग्स एक्ट के तहत ड्रग तस्करी करके मॉरिशस में गांजे लाने, गांजे के पौधे रोपने और खतरनाक ड्रग्स अपने पास रखने के आरोप लगाए गए। उसे जमानत पर रिहा करने पर आपत्ति जताई गई। रविवार 2 अगस्त को उनकी पत्नी आत्सू दफ्तर गई, ये सोचकर कि उसे बयान देना होगा। उसे बुधवार 5 अगस्त 2026 को अपने वकील के साथ वहां आने को कहा गया।
0: On Sunday, the 2nd of August, Mrs. VLG voluntarily went to the ATSU Western Division because she thought she might need to give a statement. However, ATSU Western Division asked her to come with a legal counsel on Wednesday, the 5th of August, 2026.
1: डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने बताया कि अटोर्नी जनरल ने रियूनियन टापू से पारस्परिक कानूनी सहायता की मांग की है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में जांच शुरू कर दी है।
0: I'm informed by the Financial Crimes Commission that following information published in the press to the effect that Mr. YJ and others were arrested by the ATSU in connection with an alleged network involving the importation of drugs between Reunion Island and Mauritius.
1: फाइनेंशियल सर्विसेज क्राइम्स और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मुझे सूचित किया गया है कि प्रेस में प्रकाशित खबरों के बाद कि रियूनियन टापू और मॉरिशस के बीच भारी मात्रा में ड्रग्स आयात करने के संबंध में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और कि इस नेटवर्क के साथ उसका संबंध है, उसके और उसके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच की जा रही है। FCC के एसेट रिकवरी एंड मैनेजमेंट डिविजन उसके और उसके परिवार की संपत्ति की जाँच कर रही है। FCC इस मामले की सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है और जांच जारी है। हमने कई बार बताया है कि जब से ये सरकार सत्ता पर आई है, यानी 14 नवंबर 2024 से, हम ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष में कोई नरमी नहीं दिखाएंगे। अब तक की गई गिरफ्तारियों से पता चलता है कि हम ड्रग लीडरों को कैसे पकड़ रहे हैं।
0: In this case, just as in any other case, there will never be any cover-up. Whoever you may be, whatever high office you may hold, you will have to bear the consequences of your actions.
1: इसके बाद इस मामले पर कई अतिरिक्त प्रश्न भी पूछे गए।
2: Madam Speaker, while I know that the junior minister stepped down only yesterday, does the Honourable Prime Minister concur that this resignation should have been immediate upon the search of her residence rather than delayed until the public and media pressure became unbearable in the country?
0: I don't agree with the Honourable Leader of the Opposition. You must have evidence for people to step down. There was no evidence yet, but there was a perception. So that's why she decided she would step down.
2: Can the Honourable Prime Minister confirm if the former junior minister or her husband or both together have travelled to Reunion Island recently, and how many times, and whether they have had access to the VIP lounge?
0: Naturally, when she travels, she's a junior minister, she would have access to the VIP lounge. She travelled 3 times to Reunion Island. Twice, I think, her husband accompanied her.
2: My information, and can the Honourable Prime Minister confirm that they have travelled together to Reunion Island on 5 occasions in 2025, and on 2 occasions in 2026, and they have had access to the VIP lounge, both of them?
0: I was informed 3 times, but the Honourable Leader of the Opposition is saying 3 times. I'll check on that.
3: As the Prime Minister, whether he's aware that the Honourable Member is born on record for dealing in stolen property, and that her husband is also born on record, have been convicted, both of them. Is he aware?
4: Are you aware?
0: I'm not aware of this. Is a new
4: PSP.
0: I'm not aware of this. No.
3: Well, I will inform the Prime Minister. Cause number 398/11, dealing in stolen property, conviction, convicted for. She was 3 years on good behaviour, and 5,000 rupee fine. Is she aware of that?
4: Are you aware?

0: Prime Minister?
1: No, I'm not aware, but you were the president of the PMSD at the time. PMSD.
2: The PMSD refused to give her a ticket, and she came to your party, and you gave her a ticket. That is the reason why.
3: Will you give assurance to the House that there will be no cover-up in this case?
1: I said the proof of the pudding is in the eating. She's a junior minister in my government, but I did not hesitate. I did not tell the police, no, don't do this, don't do that. They did the work, and I said in my answer, nobody is going to be spared. Nobody is above the law.
4: खबरों को आगे बढ़ाती हैं। जेलों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में पीएमक्यूटी के दौरान ऐलान किया कि मार्च 2027 तक जेल प्रशासन को एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी मदद से बिना अनुमति उड़ने वाले ड्रोन्स का पता लगाया जा सकेगा और उन्हें रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट मॉनिटोरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट और टैक्स व्यवस्था से जुड़े कई सवालों के भी जवाब दिए। मीगान परापनाइक एंड करुणा लालू।
5: बजट 2025-2026 में VAT रजिस्ट्रेशन की सीमा 6 मिलियन रुपए से घटाकर 3 मिलियन रुपए कर दी गई। सांसद बिचुक के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने नई पंजीकृत संस्थाओं से प्राप्त आय का उल्लेख किया।
1: For the period 1st of October 2025 to 29th of July 26, the total VAT revenue collected from newly VAT registered entities amounts to 655 million rupees. The number of new VAT registration is 8,764 and the number of VAT deregistrations is 84.
5: सांसद सिब्बर ने किराए पर निवेश के लिए आवास ऋण यानी बाय टू लेट मोर्टगेज मौकेट के विकास पर प्रश्न किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस में पहले ही आवास ऋण और गृह वित्त पोषण का एक सुव्यवस्थित बाजार मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक बैंक ऑफ मॉरिशस को इस संबंध में नियामक ढांचे में बदलाव के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
1: That the banking sector has not approached the bank with regard to the lending based on the equity of existing residential properties and the income generating potential of investments. In the event of such a proposal, the bank will study all the aspects of these types of lending arrangements before determining the appropriate regulatory framework, if any.
5: सांसद जोआना बेरांजे के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि उनके दफ्तर के अधीन शीघ्र ही एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन, निगरानी और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है।
1: कंसल्टेशंस आर ऑलरेडी अंडरवे फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल विद अ व्यू टू एंश्योरिंग दैट द यूनिट will be manned by a proficient team with robust engineering background and proven track record in project management.
6: Si nous dire si cette unité aura un pouvoir décisionnel ou uniquement consultatif?
1: No decisional power, because he will be able to tell us where the bottlenecks is, where the delay are, where the costs of a run are, and he will look at that.
5: जेलों में जब्त किए गए मोबाइल फोनों के संबंध में सांसद अरगी अजवाल के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2026 तक कुल 579 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इनमें से 41 मोबाइल कैदियों के पास से बरामद हुए, जबकि 41 मामलों को जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया। एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा चुका और 35 मामले पर जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेल प्रशासन ने मोबाइल फोन की तस्करी रोकने के लिए पहले ही कई सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी लगाए जाएंगे।
1: The upgrading of the mobile phone jamming system at the Melrose prison will be implemented shortly. The Mauritius Prison Service is also implementing anti-pelting netting in correctional facilities to prevent the introduction of contraband and enhance the safety and security of prison institutions. The Mauritius Prison Service will also procure a new anti-drone system by March of next year to detect and counter unauthorized drone

0: independence of the National Assembly. With these words, Madam Speaker, I commend the motion to the House.
1: राष्ट्रीय सभा में केवल मोरिसियन को शामिल करने के प्रस्ताव पर आज बहस जारी रही. मंत्री पत्रिका सियावादन ने इसे लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. वहीं पोल बेरांजे ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों का चयन सोच समझ कर किया जाना चाहिए और

0: आशा हैं। मंत्री शकील मोहम्मद ने इसे आज़ादी के बाद की एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि भाषा का धर्म से नहीं बल्कि संस्कृति से संबंध होता है। वहीं सांसद साबावदी ने इसे नागरिकों के करीब एक गणराज्य की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। क्रियोल मॉरिशियन को राष्ट्रीय सभा में शामिल करने के प्रस्ताव पर बोलने वाले अन्य सांसदों ने भी इस पहल का समर्थन किया। उनके अनुसार ये इस भाषा के संरक्षण और प्रोत्साहन के साथ साथ संसद को लोगों के और करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका ये भी कहना था कि सिलेक्ट कमेटी को इस राष्ट्रीय सुधार के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहिए। मॉरिशस में वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। वेटलैंड्स बिल राष्ट्रीय सभा में पहली बार पेश किया गया। इसका मकसद इन प्राकृतिक क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार अन्य संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों के लिए भी नया कानून तैयार कर रही है। डोमेस्टिक अब्यूज एक्ट अब बिना सहमति के बनाए गए यौन संबंधों को घरेलू हिंसा का एक रूप मानता है। वहीं क्रिमिनल कोड में लाए गए बदलाव के बाद अब पति या पत्नी पर वैवाहिक बलात्कार का मामला भी चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में ये कैसे साबित किया जाता है कि वास्तव में वैवाहिक बलात्कार हुआ है? जांचकर्ता और अदालत किन बातों और सबूतों पर ध्यान देते हैं? आइए जानते हैं अंजू रामगुलाम की इस रिपोर्ट में करुणा लालू के विवरण के साथ।
1: वैवाहिक बलात्कार को अब कानून द्वारा अपराध के रूप में मान्यता दे दी गई है। हाल के कानूनी सुधारों के तहत यदि कोई पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।
2: Définir le viol comme la pénétration du vagin de la femme de l'organe féminin par l'organe masculin. Donc là, nous peut éliminer tout ce qu'on appelle objet, etc., etc.
1: Vakil Mokshada Pertub ne kaha, yahan par sabse mahatvapurna baat bina sahmati ke yon sambandh banana hai. Vaivahik balatkar hua hai ya nahi, ye nirdharit karne ke liye, janchkarta aur nyayalay kai prakar ke sakshon par vichar karte hain. यदि हिंसा हुई है तो सबूत होने चाहिए, मेडिकल एविडेंस होने चाहिए या गवाह होने चाहिए जिनसे आपने बात की। यदि किसी व्यक्ति ने शुरुआत में यौन संबंध के लिए सहमति दी लेकिन बाद में नहीं कह दिया तो उस क्षण से उसका इनकार मान्य होगा और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यदि कोई चोट लगने या प्रतिशोध के डर से शारीरिक रूप से विरोध नहीं करता तो सिर्फ विरोध न करने का अर्थ ये नहीं कि उसने सहमति दी हो। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, फैमिली सपोर्ट यूनिट जा सकते हैं अथवा पुलिस की फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट भी जा सकते हैं और प्राप्त साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को अदालत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
2: Et aussi un rapport psychologique demain quand nous allons du Gavin testify dans la cour.
1: एक अन्य महत्वपूर्ण बात वैवाहिक बलात्कार से संबंधित वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत किसी पुरुष को अपनी पत्नी के विरुद्ध इस अपराध में शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं। इस बीच एक पत्नी, लिविन साथी, जीवन साथी या प्रेमिका अपने पति या साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है यदि उसे लगता है कि उसके साथ उसकी इच्छा और सहमति के बिना यौन संबंध बनाया गया है। वैवाहिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर अधिकतम 40 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
0: मॉरिशस में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बनाने की दिशा की भर्ती को बेहतर बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने मेक्सा और आगिमा के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य है विदेशी कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना, भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना और देश में कामगारों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना।
3: जून 2026 में मॉरिशस के सदस्य

0: सदस्य बनने के बाद से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने देश में प्रवासन शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें प्रवासन नीतियों के निर्माण में सहयोग, डायस्पोरा की भागीदारी को बढ़ावा देना और अन्य कई पहल शामिल हैं। मॉरिशस के साथ सहयोग किए 20 वर्ष IOM की 75वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाते हैं। मॉरिशस और सेशेल्स के लिए IOM की प्रमुख आलिया हिर्जी कहती हैं, हम प्रवृत्तियों को समझ सके हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, विदेश में डायस्पोरा की क्या स्थिति है और देश के विकास में किस तरह योगदान दे सकता है। हम प्रणाली मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो वीजा या परमिट से संबंधित हो। हम सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर। इस अवसर पर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक भी मॉरिशस पहुंचे हैं। फ्रांस सेलेस्टे कहते हैं, मॉरिशस को प्रवासियों की जरूरत है, लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, बजाय कि लोग कभी भी और किसी भी तरीके से यहां आए। इस प्रक्रिया से सरकार फैसला ले सकती है कि कब कितने लोग आ सकते हैं और वो भी स्थानीय लोगों की रक्षा करते हुए। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रवासन के क्षेत्र में मॉरिशस के सामने कई चुनौतियां होंगी। मॉरिशस उन देशों में शामिल हैं जिन्हें विदेशी कामगारों की आवश्यकता है। हम कानूनी रूप से आने वाले उन प्रवासियों की ओर से समस्याओं का सामना करते हैं जो अपने ठहराव को बढ़ा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दफ्तर प्रधानमंत्री दफ्तर के साथ काम कर रहा है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।
1: Pour être capable d'adresser le problème de bas immigration qui nous gagnait.
2: Mauritius was at the time in 2012 one of the pilot countries to really make these linkages.
0: संगठन का ये भी मानना है कि प्रवासन के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन टिकाऊ विकास में योगदान दे सकता है, साथ ही मानव गरिमा को पूरा सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी आज स्वदेश लौट आए। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में मॉरिशस के लिए पहला पदक जीतने वाली नोएमी अल्फोंस और बॉक्सिंग में कांस्य पदक का विजेता मर्विन क्लेयर का परिवार, खेल प्रेमियों और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। उनके इस शानदार प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है। उर्दू स्पीकिंग यूनियन ने साल भर आयोजित की गई अलग अलग प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में बेहतरीन भूमिका देने वाले छात्रों को सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह वाकवा के सियाश कुंस्तोते थिएटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर उनकी मेहनत की सराहना की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का कहर अभी भी जारी है। आसाम में बाढ़ और बारिश से हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है, जबकि लगभग 2,00,000 लोग अब भी राहत शिविरों और अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं। इस बीच भारत मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरला, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज बारिश, जल भराव और बाढ़ का बना हुआ है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। इस पर तथा दुनिया भर की अन्य खबरों के बारे में ये रिपोर्ट पेश है।
4: एथेंस के पश्चिम में एक हवाई अभियान के दौरान दो दमकल हेलीकॉप्टरों की आपस में टक्कर हो जाने से दो चालकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना ने आपातकालीन कर्मियों के सामने आने वाले बढ़ते जोखिमों को उजागर कर दिया है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में आग फैल रही है। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। रविवार को रूस में कम से कम 9 और यूक्रेन में 5 लोग मारे गए, क्योंकि कीव और मॉस्को ने एक दूसरे पर लंबी दूरी के हमले तेज कर दिए थे। फरवरी में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए जाने के बाद से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिका के नेतृत्व वाली वार्ता प्रभावी रूप से ठप पड़ी हुई है। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 250 लोगों को ले जा रही एक इंडोनेशियाई नौका में समुद्र में आग लगने के बाद 5 लोग मृत पाए गए हैं और 41 लोग लापता हैं। ये स्पष्ट नहीं था कि नौका में आग कैसे लगी। रविवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की स्वात घाटी में एक उग्रवादी विरोधी रैली को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती बम धमाके में नागरिकों और पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम 14 लोग मारे गए और 2 दर्जन से अधिक अन्य घायल हो गए।

0: हाल के दिनों में इसराइल की चपेट में लेने वाली लूक के रविवार अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद थी, जिससे असाधारण रूप से उच्च तापमान और अत्यधिक गर्मी की स्थिति पैदा हो गई। बुधवार तक उल्लेखनीय रूप से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है।
1: बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर गीता सौरान के साथ।
2: मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं। पूर्व से आने वाली अस्थिरता से जुड़े बादलों का असर कल से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज रात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिन के दौरान बादल घिराएंगे। पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24 और साहिली इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:37 पर सूरज निकलेगा।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरी समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी लीडोविक है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

Choc Samachan Sounier. Canal Batous Saint-Croix-Main. Canal Batous Saint-Croix-Main. Satatar Sal, qui est 77 years old, qui est Shisatya Dee Boyrou, qui est Dev, qui est le nom de Janti, qui est le nom de Janti, qui est le nom de Janti, qui est le nom de Janti, qui est le nom de Janti, qui est le nom de Janti, qui est le nom de Janti, Railway Road, l'Espérance Trébuchet, mais Railway Road, l'Espérance Trébuchet, mais 36 Sal, qui 36 years old, qui Shrimati Pratima Ramkilawan. Shrimati Pratima Ramkilawan, Pedasham Rajkumar, aur jinhe Priti ke naam se bhi log zyada jante the ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal 12 baje, unki maa Vanita Gokhul ke ghar l'Espérance Trébuchet se uthakar antim sanskar ke liye Piton ki shamshan bhumi le jaayi jayegi. Commission tomorrow at noon. Petit Paquet Road, Montagne Blanche, mais Petit Paquet Road, Montagne Blanche, mais 70 साल के 70 years old के श्रीदयानंद कतोना, जिन्हें अनिल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थ कल दिन के 2 बजे उनके बेटे आशीव कतोना के घर मोंटाई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं के शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 2 पीएम. रू मॉरिस मेबर्ग में 58 साल के 58 years old के श्री देवेन पायन, जिन्हें जैसेन के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थ कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती गंधरावती पायन के घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग के शमशान भूमि ले जाएगी. कमीशन टुमारो 1 पीएम. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.

0: नई सो।
1: तो चलिए दोस्तों, शाम का टाइम और आपके सितारे प्रोग्राम समाचारों के बाद अब वक्त है हमारे इस प्रोग्राम का जिसका नाम है नई सोच। मैं हूं परी आपके साथ, रात के 9 बजे तक रहेगा आपका और मेरा खूबसूरत सा ये साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। तो बस दोस्तों, आज का हमारा ये जो शो है, बात करेंगे जिंदगी की और कुछ ऐसी बातें जो शायद हमारे कुछ दोस्त हैं उनके लिए जिंदगी के सफर को थोड़ा सा और आसान बना दे। जैसे हम कहते हैं कि अक्सर हम बात करते हैं पैसों की, सक्सेस की, लेकिन कभी फेलियर्स मिलते हैं, लाइफ है, कभी हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं और कभी कभी लगता है कि अब बस इससे ज़्यादा अब हम नहीं सह सकते। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घनेरी अंधेरी रातों के बाद एक उजला सवेरा ज़रूर आता है। हर सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी में स्ट्रगल्स तो होते ही हैं, डिफरेंस बस इतना होता है कि वो रुकते नहीं और कभी हार नहीं मानते। ये हम जानते हैं कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं उनके लिए सब कुछ थोड़ा अंधेरा ही नज़र आता है। यानी कि जहाँ भी देखो लगता है कि भाई एक रोशनी की किरण कहीं से मिल जाए तो थोड़ी सी एक उम्मीद मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हम तो चाहते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमारे इन गानों के साथ जुड़ें और इन गानों में कितना कुछ खास है। कभी कभार हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे बनते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि सारे सवालों के जवाब शायद इन्हीं में छुपे हैं। सो वैसा ही एक खास सा गाना नेवर गिव अप एटीट्यूड, और जैसे हम कहते हैं जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी हार कभी जीत, और कभी कभार ये भी लगता है कि हम इतना कुछ अच्छा करते हैं लेकिन फिर जो बुरी चीज़ें होती है वो हमारे साथ ही क्यों होती है। लेकिन दैट्स लाइफ, और आप अपने अच्छे कर्म करते रहें और फिर जिंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके साथ ज़रूर होंगी। अच्छी चीज़ें वक्त ज़रूर लेती है लेकिन ज़िंदगी में होती ज़रूर है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए सोनू निगम की आवाज़, ये गाना हम स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं हमारे सभी सुनने वालों के नाम। स्पेशली गोज आउट फॉर विशाल भैया, रीना भाभी और हमारे सभी जो कैंटीन स्टाफ है, आपके नाम आपको विश कर रहे हैं वंडरफुल इवनिंग। दिन भर के कामकाज के बाद, दिन भर की थकान के बाद कुछ गाने ऐसे जो शायद आपको भी कुछ आराम के पल, सुकून के पल जरूर दे। सो ये गाना हम आप सभी के नाम डेडिकेट कर रहे हैं। हमारा साथ निभाते रहिए 5250620 5250620000। मैं हूं परी आपके साथ ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और जैसे हम कहते हैं tomorrow is never promised, यानी कि जो पल आज मिले हैं बस वही सबसे खास है. कभी-कभार हम फोटोज खींचते हैं and you never know कि वो फोटोज कब memories बन जाए. कभी कोई इंसान आपके दिल के इतना करीब होता है लेकिन कभी-कभार वो बस एक तस्वीर बन के रह जाता है. So जैसे हम कहते हैं कि आपके loved ones के साथ जो भी पल आपको मिलते हैं, जो भी moments आपको मिलते हैं, इसे आप खास बनाएं, क्योंकि पल जो है वही तो खास है और जो टाइम है वो बीत जाएगा लेकिन जो रह जाएगा वो है यादें. सो अभी के लिए अगर आप भी किसी खास को मिस कर रहे हैं या फिर वो स्पेशल इंसान जो अब आपके साथ नहीं, कहीं सितारों में जाकर बसा है लेकिन जैसे हम कहते हैं सितारा बनके भी वो आपको बिल्कुल देखता है. सो फॉर एवरीवन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब थे लेकिन अब आपके साथ नहीं, दिस वन गोज आउट फॉर एवरीवन जो उन्हें मिस कर रहे हैं, हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं. ये है प्रोग्राम नई सोच, जहां पर कुछ गाने हमें जिंदगी की बहुत सारे जज्बात सिखा जाते हैं. सो हरिहरन साहब की आवाज़ और ये गाना आप सभी के नाम, गोज आउट फॉर ऑल योर लव्ड वंस.

नहीं सो। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हैं ये हमारा खास प्रोग्राम, जहाँ पर आपसे प्यारी बातें तो हम करते रहते हैं। और कुछ कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो चीज़ें चली जा

आती हैं वो कभी लौट कर नहीं आती और चीजें ही क्यों इंसान भी जब चले जाते हैं तो वो लौट कर कहां आते हैं जो गिले शिकवे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं और तभी हम कहते हैं कि जिंदगी में हर किसी को आप स्पेशल फील करवाएं बिकॉज़ यू नेवर नो कि कब जो इंसान है वो शायद आपकी जिंदगी का हिस्सा ना रहे तो जैसे हम कहते हैं दैट काइंडनेस लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है और कहते हैं ना कि एक इंसान एक अनसीन बैटल लड़ रहा होता है यानी कि हर किसी को जिसे आप मिलते हैं वो एक अनसीन बैटल लड़ रहा होता है और कभी कभार आपकी जो कड़वी बातें हैं वो शायद उन्हें थोड़ा सा और दुखी कर देती है सो लाइक वी से एक छोटी सी स्माइल एक एनकरेजिंग वर्ड या फिर किसी की हेल्प करना ये छोटी छोटी बातें किसी की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है और काइंडनेस जो है वो बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होती इट्स स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता जो दूसरों को नीचा दिखाए स्ट्रॉन्ग वो होता है जो दूसरों को उठाए और अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने तो बस दोस्तों काइंडनेस को आप बांटते रहें और किसी की मुस्कुराहट अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाते रहिए अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं हमारे अगले प्रोग्राम की ओर दिलों की आवाज़ मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन अभी के लिए हमने बात की काइंडनेस की और किसी के मुस्कुराहट को और बढ़ाने की तो ये गाना आप सभी के नाम

0: RM3 Radio.
1: तो चलिए दोस्तों यहाँ पर साथ दे रहे हैं आप हमारा और अभी के लिए तो कुछ रोमांटिक गाने रात के 9 बजे तक दिलों की आवाज़ हमारा ये प्रोग्राम आपके नाम आशा जानू जी कॉटेज से हमारा साथ दे रही हैं और कहते हैं कि एंजॉयिंग ये जो गाने हैं और आपके सितारे प्रोग्राम भी आपने एंजॉय किया सो थैंक यू सो मच आपकी ममा कुमारी और सभी जानू परिवार के नाम आप डेडिकेट कर रही हैं प्यारा सा गाना और साथ ही यहाँ पर प्रीतम जी हमारा साथ दे रहे हैं न्यू ग्रोव से एंड इट्स नाइस टू लिसन कि आप गानों को पसंद कर रहे हैं अभी के लिए कुणाल गांजावाला की आवाज़ और वी हैव दिस गाना आपके नाम हमारे सभी दोस्तों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं से लेकर आए हैं प्रोग्राम दिलों की आवाज़ और रोमांटिक गानों से आपकी शाम को हम सजाने वाले हैं साथ दे रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर और मैसेजेस डेडिकेशंस 5250602000 पर

और चलिए दोस्तों यहां पर आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन, ये है प्रोग्राम आप सभी के नाम दिलों की आवाज, और हमारा साथ दे रही हैं चांदनी पुरुषोत्तम, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप और कुछ प्यारे गानों को आप भी एंजॉय कर रही हैं। चलिए इस गाने को डेडिकेट करेंगे आपके नाम फॉर ऑल योर लव्ड वंस। यहां पर हमारे साथ कनेक्टेड है पूजा आप भी, एंड आई गॉट योर मैसेज, दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू सो मच। चलिए ये गाना होगा आपके नाम भी एंड गोज आउट फॉर दैट स्पेशल समवन। ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए अभी से लेकर रात के 9 बजे तक, और आपके मैसेजेस डेडिकेशंस भी चल रहे हैं हमारे इस मैजिकल नंबर पर।

0: तो चलिए दोस्तों शाम का टाइम और आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक अभी के लिए मुकुल अग्रवाल अलका याग्निक की आवाजें दिल तेरा आशिक फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम 7:45 हो चुके हैं ट्यूसडे की ये शाम जहां पर हम सजा रहे हैं आपकी शाम को इन गानों के साथ तो उम्मीद करते हैं कि दिन आज आपका काफी अच्छे से बीता अगर अच्छा नहीं भी बीता तो म्यूजिक के साथ आपके मूड को हम सेट जरूर करेंगे अभी के लिए इट्स एक प्यारा सा रोमांटिक प्रोग्राम रोमांटिक गानों का प्रोग्राम दिलों की आवाज जहां पर साथ रहेगा आपका और मेरा यानी कि परिका रात के 9 तक तब तक के लिए कुछ प्यारे गाने चलाते रहेंगे अभी के लिए शामिल होता हुआ ये गाना एंजॉय दिस वन
1: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो मन

0: तो चलिए दोस्तों, सुपर रोमांटिक गाने आपके लिए ऑन रेडियो मनोरंजन. ये था साइबो गाना तोची रहना एंड श्रेया घोषाल की आवाजों में. ये गाना आप सभी के नाम जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, दिलों की आवाज प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके अपने रेडियो स्टेशन RM3 रेडियो मनोरंजन पर.
1: You're listening to RM3 Radio Man.

जी हाँ दोस्तों, दिल की बातें हैं. होता है कभी कभार ऐसा, अगर कोई आपसे रूठ जाता है, कभी लगता है कि शायद वो आकर बात करेंगे, कभी उन्हें लगता है कि आप जाकर बात करेंगे. कभी कभार ये भी होता है कि दोनों में से कोई भी बात नहीं कर पाता और बात जो है वो अधूरी ही रह जाती है. रूठना मनाना ये तो प्यार का एक खूबसूरत सा हिस्सा होता है. और अभी के लिए ये गाना आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. प्यार के हर एक रंग को आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं और आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही प्यारे गाने. ये है फ्रॉम द फिल्म अकेले हम अकेले तुम, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ें. अक्सर ऐसा होता है कि दिल कहता है कुछ लेकिन दिमाग जो है उसे बिल्कुल पूरा नहीं होने देता. लेकिन जैसे हम कहते हैं कि दिल होता है ऑन द लेफ्ट साइड लेकिन हमेशा राइट बातें करता है. सो अगर कभी लगे कि किसकी बात सुननी चाहिए, दिल की या दिमाग की, हमेशा दिल की सुनिए. आप कभी भी कह सकते हैं इसमें आप अपसेट नहीं होंगे और दिल की जो बातें हैं वो अक्सर सही ही होती हैं. सो फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना आप सभी के नाम, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम. मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक.

उन्हीं गानों में से ये एक गाना फ्रॉम द फिल्म बरसात आप सभी के लिए कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ें 90s की ये वो आवाज़ें हैं जिन्हें हम अपने दिल में कहीं खास जगह पर छुपा के रखते हैं बीट उदित नारायण बीट कुमार सानू अलका याग्निक साधना सरगम अभिजीत भट्टाचार्य इनके गाने हमेशा ही खास और स्पेशल रहे हैं और ये जो आवाज़ें हैं इन्हें हम हमेशा ही सुनना पसंद करेंगे सो अभी के लिए टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद दिस ब्यूटीफुल गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मनोरंजन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन भी आपने भेजे हैं 5250-6200 पर और रेखा जी हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं कल बेटा अंश अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उनके लिए स्पेशल विशेस और अंश आप है पोबोंजे से एंड ऑफ कोर्स हमारी रेडियो मनोरंजन टीम आपको विश कर रही है जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां इट्स योर स्पेशल डे टुमारो लेकिन जैसे हम कहते हैं बर्थडे सेलिब्रेशंस पूरा महीना चलते हैं सो 5th ऑफ अगस्त ये होने वाला है आपके लिए स्पेशल सो जन्मदिन की शुभकामनाएं टू यू अंश एंड एडवांस विशेस हैं फ्रॉम योर ममा फ्रॉम योर फैमिली एंड सभी आपके चाहने वालों की ओर से और चलिए यहाँ पर रेहाना जी फिनिक्स से कहती हैं आदाब और अगला गाना हमारे नाम भी बिल्कुल जी रेहाना जी आप साथ दे रही हैं और आपके लिए गाना ना चले ये कैसे हो सकता है सो ये जो खूबसूरत सा गाना है डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम एंड विशिंग यू अ वंडरफुल नाइट कुछ ऐसे गानों के साथ आपकी रात को हम सजा रहे हैं जहाँ पर आसमान में जो टिमटिमाते तारे हैं वो भी लगेगा कि बस आप ही के लिए टिमटिमा रहे हैं रात का ये जो चांद है वो भी खूबसूरत लगता है और रात का ये जो समा है और भी निखर सा जाता है इन गानों के साथ हर एक मोमेंट स्पेशल लगता है और बस आपके हर पल को हम भी खास बनाना चाहते हैं मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक रोमांटिक गानों का ये कारवां दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और अभी के लिए ये गाना आप सभी के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंजॉय दिस वन

तो चलिए दोस्तों अभी के लिए कुमार सानू सपना मुखर्जी की आवाजों में ये गाना फ्रॉम द फिल्म आंदोलन आप सभी के लिए जो रोमांटिक गानों को पसंद करते हैं एवरीडे 7 से लेकर 9 बजे तक होता है हमारा ये प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन जहां पर आपके दिल को लुभाने के लिए होते हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत नगमे अभी के लिए ये गाना आप सभी के लिए हमारे सभी दोस्तों के नाम साथ देने के लिए शुक्रिया

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. और चलिए दोस्तों इसी गीत के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय और मैं तो चली लेकिन वादा रहा मुलाकात होगी जल्द छोड़े जा रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ और थोड़ी ही देर में भोजपुरी प्रोग्राम सुन पाएंगे आप हमारे इस रेडियो स्टेशन पर सो साथ देते रहिए एंड हैव अ ग्रेट नाइट टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ

0: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Bhojpuri, tadka. Bhojpuri, tadka. भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
4: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो
5: सब संगतियों के और जी प्रताप सिंह के और से प्यार भरा नमस्ते यह तो मन पसंद रेडियो चैनल्स रेडियो मोशस और रेडियो मनोरंजन रेडियो मोशस 719 किलो हर्ट्ज और रेडियो मनोरंजन 94.95.6 98.2 FM पर FM और AM दोनों पर चलता कार्यक्रम आज है मंगल की रात गमत की रात मंगल 4 अगस्त साल 2026 ऊत के महीना में चले रही सा है देखते देखते भी बनाने चलाई अभी बोनमेल चलाई रात के 9:07 और अभी से लेकर रात के 11 भोजपुरी तड़का प्रोग्राम थोड़ा मन करता कौन अभी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमैया नंबर वा दबैया काट जगह दे वो जगह विच सांक बेशक और बेशक मंगल के रात गमत के रात और बेशक भी ढेर को इनके साथ देवता भी साथ देते रहे आज उतना ठंडा नहीं करता है बाप रे बाप पानी काल से पानी जितना बरसल बा काल तक खूब पानी बरसा आज दिन भर पानी पानी पानी पानी इतना पानी अच्छा बा पानी बरसा था रिजर्वर तो भर जाए कहे कि मौके मौको वाकवा रिजर्वर सूखे के गार पीबा और सिद्धू भैया बोला था पानी गैस पिए नहीं करेंगे कहे कि अभी रिस्ट्रिक्शन हुई है पानी की जो है तो परी साखिविस करेंगे कहे कि पानी उतना नहीं बा जलाशय में जलाशय सूखले जाता तो अच्छा बा काल बरसर आज भी पानी बरसर आशा करते रोज के पानी बरसी ताकि इनके सब जलाशय भर जाए और आशा करते तू जहाँ भी हुआ एकदम मस्त हुआ और हमने के साथ देवत हुआ पहल का गाना जलसा बेशक जब हम आया था जलसा वाला गीता गज्जाधर के आवाज में और ये प्रोग्राम में केवल जलसा नहीं हुए ढेर कुछ अन्य से तो लोग खातिर सरप्राइज सरप्राइज अब ये सब नहीं बोला बोला तो जान जी बना अच्छा अभी जलसा कर गीता गज्जाधर के संग जितना कोई सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन गीत तो लोग के नाम जलसा

संगते लोग आजकल सावन मास चलता सावन मास के सावन भी बोलल जाला हिंदू धर्म के सबसे पवित्र महीना है जुलाई और अगस्त के महीना में हमने सावन मास दुनिया भर में मनाईला सा सावन मास में शिव जी की पूजा होला शिवलिंग पर शिवलिंग के अभिषेक करीला सा और भक्त लोग व्रत रखेलन सा मंत्र जाप होला फिर कोई छोटा छोटा कांवर बना के गंगा तालाब भी जालन जा और श्रावण मास में आर्य समाज के लोग भी वेद के पठन पाठन करेला घर में यज्ञ हवन होला वेद मंत्र के जाप वेद मंत्र के उच्चारण होला तो आजकल ढेर कोई कायम बा व्रत धारण कर ले श्रावण मास के तब बोलब जा जय हो प्रभु जय हो जी हाँ ऐसे ही पूजा पाठ करते रहिए लड़का लोग के भी सिखाया कि श्रावण मास में चाहे व्रत धारण करे के पूजा पाठ करे के यज्ञ हवन करे के और जन वेद है हमने की चार गो वेद है यजुर्वेद ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद तो जो वेद है ये चेहरा कर उच्चारण करे के एक में जो मंत्र है मंत्र व पढ़ब पूजा करब तो घर में सुख शांति आवेला तो श्रावण मास सब के बहुत बहुत अभिनंदन ऐसे में नहीं से गो भजन ओम जपो ओम और भगवान के दूसरा नाम ओम ही है पूजा पाठ चहला करे के रोज के जिंदगी में चहला पूजा पाठ और आजकल श्रावण मास चलता तो श्रावण मास के संदर्भ में है गीत तो लोग सब भक्त लोग के नाम प्रभु की कृपा प्रभु की अनुकंपा सब कोई पर बनल रही

रात की 9:24 होता आज जितना कोई के जन्मदिन बा जितना कोई किरानी जैसे बा हैप्पी बर्थडे जन्मदिन मुबारक ढेर माना प्यार ढेर माना आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि है जो नानी वैसा है तो लोग के जीवन में ढेर माना प्यार खुशी रहे जहाँ भी रहा हमेशा मस्त रह ऐसे ही उनके साथ देती रहे और तो लोग की लंबी आयु हो सौ साल जिया हमने के आशीर्वाद तो लोग के साथ बा और नानी वैसे जो है स्पेशल रखा है कि बरिश में एक ही दिन आवेला तो जितना कोई मॉरिशस में दुनिया भर में अपन नानी वैसे मनावाता जन्मदिन मुबारक हे माना प्यार आशीर्वाद है भाई जन्मदिन के गीत तेरों के नाम हैप्पी बर्थडे बसंत सुपुर की जुबानी और थोड़ा याद दिलावते हैं कि प्रोग्राम से रहता है रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर साथ में रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर फिर कोई हमने के देखा था टिकटॉक पेज पर सुना था भी रेडियो पर सुनते रह देखते रह एमबीसी रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो मनोरंजन हैप्पी बर्थडे

अब हम बात करें आपसे पुरनिया पकवान के बारे में, जिसे इनकी दादी नानी लोग आगे पकावत से तो जाने के आगे के ज़माना में हमने की दादी नानी लोग चूल्हा में पकावत हमने के दादा लोग दे नदी नदी से लकड़ी उकड़ी काट कूट के अन्यन सब लकड़ी सुखाई घमा में फिर मचान में चढ़ी तो आगे घास कुआ सब नहीं रहल तो चूल्हा में हमने की दादी नानी पकावत तो पुरानिया पकवान के बारे में बात करते हैं। तो ढेर मना पकवान

0: vagy ezt dálba, igen, fér dálme szuszú, rugáj, dálme kathar, poldámon ke csetni, poldámon kriye karke, csetni banáho tarisa, fér dálpuri, faráta, gato pima, ऐ सब और आगे दाल घोटनी से दाल काज होता है टेम्पो उम्पो नहीं रहा देखती मैं जब दाल चढ़े पर दाल डबके लगी तब दाल घोटनी से दरवा के परी काज करेगी हाँ कि नहीं और आगे मार छौंका रहा है और छौंकल भात खाते रही सर जब तरकारी नहीं रही तब भात ले बा एक दो पोल लामुन पीमा मा ले बा प्याज या दाल ले बा तजोरी से भात छौंक दे बा सब कोई भरपेट खा ले तो पुराने पकवान तो आजकल जो है लुप्त हो ही जाता पर जहाँ जहाँ दादी नानी लोग बा अभी ले जो है पुराने पकवान अभी हम देख रहे से ढेर मना घर में सिल लोढ़ा बा हमरे जाके तब बात सिल लोढ़ा हम तबन चटनी कब मिक्सर में तैयार कर रहा पर हम खुद से अपन हाथ से चटनी पीसे के सिल में और चूल्हा तो चूल्हा बा पर लकड़ी नहीं बा एक हाथ फू गैस फू इलेक्ट्रिक में पकाई रहा सा अभी पर अब सब प्रकार के सुविधा बा आगे लिखा नहीं हाँ कि नहीं अगला गाना है हमर फुलिया मोरे फुलिया गिरे रहेगी तो चलाओ जैसे बिना खातिर जीवन महादेव अमरे मीला जमन लाफिया रघुनंदन फजिया ईसा हेगी चली एंजल मेर कॉन्स्टेंस देवी महादेव केजू अनासी शालिनी और हेगी चलाओ जैसे संजय यादव और अमिता राधा शिवचंद सुनीता देवी जम इंदिरा एक गीत हो रखा तेर अनिता लाल जी कविता अमन के साथ देवत्वन मिशा नाली वनेसन देबोरा लीना जी खुर्शीद अन जोस पोलिडो बाबिता सुब्रन आतिश निजम बहादुर एक गीत चली इंदिरा की ओर से राजेश उगर और सब उगर परिवार के नाम और दौलत तरन एक गीत तो रखा तेर बिंदास गीतरो नाम और साथ में अनुशीन के साथ उतरन शोभा कृष्णा जीता दौलतरन जैसे बोली फिर माया रामदोस तैयब भोला श्वेतु परी एंजल है गीत चली सबीना और है गीत चावते सुनील खातेर तापन चौधरी है गीतरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ जमीन के देखा था टिकटॉक पेज और विमला देवी जी नमस्ते गीत और नाम मित्रा जी भी हमने के देखा था वन और अभी लाइन पे गुस्सा ना चाहे उनको से मिला जा काज जगह देवी जगह विच सेंक पर हेलो
1: हेलो नमस्ते बेटा
0: नमस्ते जी के हवा जा
1: तो हर चाची लालिता
0: चाची हमने के दुलारी चाची कैसे चाची
1: अच्छा
0: बेटा साल मंगल पानी बरसल बा तो बगल
1: थोड़ा
0: थोड़ा बाप हम तो थोड़ा पानी बस काल से पानी बरसती बा
1: अच्छा बात नहीं पानी
0: में रिजर्वोआर सब सूखा गल बा हां हां और कैसे समाचार सब ठीक बा
1: सब ठीक बा सब कुशल मंगल बा
0: आली बोला तो कौन की सुन बा चाची
1: डाल दिया हमर विनोद सिवदत के भोजपुरी भाषा
0: तने विनोद सिवदत के भोजपुरी भाषा एकर खातिर
1: डाल दिया बहन सुदेवी ज्ञानी छोटी दीदी दादी प्रभावती आत्माराम भैया सुखलाल मौसी और माला राम जियावन
0: सुखलाल मौसी उतना नहीं थे फिर करे आप नहीं तो नहीं थोड़ा से बच्चा ला
1: हाँ
0: ओके
1: तोरो खातिन बेटा
0: ओके बहुत धन्यवाद चाची शुभ रात्रि
1: शुभ रात्रि
0: आली तो चला अभी सुनब जाएगी तो एक बार भोजपुरी भाषा ललिता जलसा ग्रुप मोरे फुलिया गिरेरा और जितना कोई भी हमें देखा था टिकटॉक पेज पर एक गीत और नाम सुभाष लामा नौशीन कुदाबू रागिनी बी है गीत और खातिर और जितना कोई अस्पताल में काम करता था वो लोग खातिर भी चल एक साथ सुने गीत के बोल है मोरे फुलिया गिरेरा

0: धीरे धीरे आना शोर ना मचाना। हमने ऐसे दोनों के साथ देखा थे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। अगला संगत क्या लाइन भी। हेलो हेलो
1: आदाब प्रसाद।
0: आदाब आफिस जी, कैसे समाचार?
1: ए हम तो भी बहुत मजे ने करा सरनी।
0: आ क्यों
1: इतना सुना
0: इस समय रेडियो पर चला था ये प्रोग्राम और टिकटॉक पेज पर। बोला अगला गीत कर खातिर आफिस।
1: ए हमार प्रदाब हमार नाम जोड़ दिया कोई संगे।
0: हाँ अगला गीत है बाप दादा लोग के बोली। ठीक बा आले बहुत धन्यवाद आफिस सैम्पियर से जी को।

0: प्लेटफॉर्म में गीत मांगे के इधर उधर की बात नहीं बचिया सोचिया का बोलत हुआ ठीक बा ताफेज हवन सैम्पिया से माता जी आफेज खतरे गीत चली बाप दादा लोग के बोली तो माता जी गीत खासम खास तौर खातिर राजन लक्ष्मण जी उनके साथ होते हैं लाफ लोहा से हाय राजन जी शुभ नमस्कार
1: प्रताप जी नमस्ते
0: कैसे समाचार
1: बिल्कुल ठीक है भाई
0: ठीक ठाक श्रावण मास अच्छी तरह से चल रहा था पूजा पाठ या छवन हुआ था
1: ठीक बिल्कुल ठीक
0: हाँ हाँ हाँ बहुत अच्छी बात और बोला
1: अगला ये गाना मांगता हूँ
0: हाँ बोला बोला
1: सुनीता नंदकू की आवाज में
0: कौन गीत
1: अंबे मैया
0: अंबे मैया सुनीता नंदकू की आवाज में हाँ गीतवा के खातिर भैया
1: राजन लक्ष्मण और परिवार
0: ओके अंबे मैया सुनीता नंदकू गई लेवन ओके खोजब सभी लालिस पे अंबे मैया हाँ बा गीत है चला दियो अब से थोड़ी समय में ठीक बा
1: शुभ रात्रि भाई
0: बहुत धन्यवाद हमने की टेलीफोन कर ला का जगह देवी जगह विच का जगह देवी जगह विच सैंक पर और अंबे मैया हाँ पर अभी दो गीत क्लासिक बा बाप दादा लोग के बोली और मच्छी मरवा कह के संगत्यार मन हाँ चलाओ अब से ठीक बा विमला देवी अगला गीत और खातिर एंजल वाई है गीत और नाम लकी वुमन रागिनी है गीत और खातिर साथ में है गीत चलावते इस जैदन खातिर सुदेवी वाकवा से अवन नमस्ते जी अगला गीत हो नाम सुनील राम नोचन गीत सुनील वाले दिप्रत के हवन जा गीत और खातिर और सब परिवार के नाम बहुत बहुत धन्यवाद सुनील राम नोचन जी हमने के टिकटॉक पेज पर देखे खातिर और रेडियो पर सुने खातिर कौतिक सुविता है गीत हो नाम दिनेश गोपी नमस्ते है गीत और नाम नदानी जगरू है गीत और खातिर आप गुडलैंड मामजेल जान और विश है गीत और नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत आपने चावते चलावते से संगत आलो खातिर देवी का हम गत्या वन मोहताबा से उकर पति उकर बेटा पत्तो बेटी दामाद और सब राम गत्या परिवार के नाम अनिता लाल जी मोदाल बे से वन अनिता फ्रीकॉन फ्लाक से इंदिरा लौटन और इंदिरा मेबैग से सेंटो मैसेस कॉलेज के सब अध्यापक नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट्स और वहाँ के डायरेक्टर के नाम प्रेमिला ला फ्रांसे प्रेमिला हवन ला फ्रांसे प्रेमिला कटबोन से आशा जानू को तेज से हवन जा माँ कुमारी शुभम दिद्यार्थी जिजाजी और सब जानू परिवार के नाम है गीत चली है गीत चलावती से तियाराज रानी अंतिश अंकुश नेहा और सब दुलहर परिवार के नाम आप होवन लाल माती से नबीन रूपा बंगराय है गीत और नाम हाय संध्या संध्या भी उनके साथ देव तो बहुत बहुत धन्यवाद चलो सुन अब जा बाप दादा लोग के बोली चाची रहता है कुशल के फसल पर गीत बहुत बहुत प्यार के साथ

नींबू जी हाँ जो कि मैं लीमो बोल रहा सा वो जो है बहुत ही कर उपयोग करी रहा सामने और नींबू जो है गो पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर एगो खट्टा फल है एकर में विटामिन बा खनिज बा एंटीऑक्सीडेंट बा और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बा और नींबू के सबसे प्रमुख पोषक तत्व है ओकर में विटामिन सी बा रोग प्रतिरोधक क्षमता बा इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनावेला त्वचा के सुंदर बनावेला और घाव भरे में सहायक है और नींबू में साइट्रिक एसिड बा नींबू के जो खट्टा स्वाद है वो अच्छा है हम के खून खातिर पाचन में सहायता करेगा पाचन मतलब हमें के डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प करेगा खाए के पचाए के गुर्दे की पथरी बनने की संभावना कम करेगा और एकर में नींबू में लीमो में फाइबर भी बा और छिलका और गुदा भी बा एकर में और दोनों प्रयोग होला एकर पाचन तंत्र के सहायता करेगा लंबे समय तक पेट भरा जब रहेला तो ये थोड़ा एडी करेला टॉयलेट जाएगी अगर मैं पोटाशियम बा हृदय जिसे मैं बोली पोटाशियम जो है बहुत जो हेल्दी बनावे उनके शरीर के रक्तचाप के संतुलित रखेला ब्लड प्रेशर के जो है और अगर मैं कैल्शियम भी बा हड्डी और दांत खातिर बहुत अच्छा है नींबू और नींबू के हर प्रकार से कर प्रयोग होला नींबू के जी बनेला नींबू पानी नींबू और शरीर और बेशक नींबू के कर जूस बनेला नींबू तरकारी में भी सेवी करीला सा और ढेर नींबू खाइबा तो ओहो नहीं अच्छा अच्छा जीज खाएगी रोज के अगर एगो नींबू खाइबा तो अच्छा है स्वास्थ्य खातिर तो और ब्लड प्रेशर तो तोशों के वो अगले मोटे करेला एगो खट्टा फल है फिर भी चेहरा खाए के ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ स्वादिष्ट रहे वही अच्छा स्वास्थ्य खातिर कभी कभी जो चीज़ तीता अमेय रहे वो भी अच्छा स्वास्थ्य खातिर जैसे कि हमने के जो नींबू है हमने की हमने मॉरिशस में दो प्रकार के एगो ची लीमो एगो गो लीमो एगो लीमो वे है एगो लीमो जोन है तो दोनों अच्छा है नींबू भजिस के जब उठब नींद में से छोटा सा वे में गर्म पानी थोड़ा सा दलिया और में दो तीन गो बूंद शहद और दो तीन गो बूंद लीमो दलिया और पिया खाली पेट वो अच्छा है वो अपने के पेट के साफ करेगा रोज फजिस के को छोटा सा वे में गर्म पानी डालिए थोड़ा सा जीमेल डालिए और लीमों के दो तीन को गुट डाल के मिलावजे करके खाली पेट पिया तो हर पेट साफ हो जाए और तो स्वास्थ्य अच्छा रही ऐसे में चला सुनब जा मच्छी मर व हमर नाम हम ते मच्छी मारी ला हा हा अगीत एगो संगतिया मंगले रलन तो लोग खातिर सत्यम सोनू है गीत तोरो नाम संजय बिहारी है गीत तोहर भाई मुलुक तोहर भाई बेबी खातिर शुभ हवन बाकवा से शुभ बॉबली मुझसे और है गीत साइलेंट केयर से कर घरोरी रानी बेटी परी मारीता खातिर भी और आज शैलेश सीतालू की जन्मदिन बा तो धे माना प्यार कर पत्नी बा रेशमा बेटी अनुष्का भाई साइलेंट फिर माँ रीता और सब सीतालू परिवार की ओर से साइलेश सीतालू के हैप्पी बर्थडे शिव अभी सी प्रसाद रिवेजपुर से हवन कर पत्नी कर बेटी और सब सी प्रसाद परिवार के नाम उदय धनी राम हवन रिवेजपुर से घरोली बेटी बेटा पतु सब देव

नारायण सब धनीराम परिवार के नाम चले एक साथ सुने गीत मच्छी मरुआ हमर नाम हम तो मच्छी मारी रा

0: Continuous music. RM3.
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो कमर धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो
3: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

वक्त रात के 10:08 होता और 50 सेकेंड AM2 रेडियो मॉरिशस और RM फ्री रेडियो मनोरंजन 94.95 FM पर और रेडियो मॉरिशस 819 kHz पर यानी कि AM और FM पर दोनों पर चलता MBC के रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर कार्यक्रम भोजपुरी का अजय प्रताप सिंह के साथ। आज है मंगल की रात, मंगल 4 उत हाँ और भी चलता तकातक भोजपुरी प्रोग्राम मन कराता को नवी भोजपुरी गीत सुन के नंबर वा घुमावा कैद जगह विद सैंक पर। और आजकल देखी रह सक कि हमने के जन जलाशय में बा पानी के जन स्थिति चिंताजनक होली जाता कहे कि ढेर माना हमने के गजा वह सुख ले जाता और में से गुहा मोह और वाकवा जो बहुत ही बड़ा जलाशय पर ई जलाशय सूखे के कगार पी बात सही सुना था वह और पानी उतना नहीं बचता जितना छाना बरसे के अगर पानी नहीं रही तो कैसे हुई बोला था तो खातिर से डब्ल्यूआर सब को इसे बोला था जनता से मांग करता कि पानी गास्पी ना करे के पानी ज़ाया नहीं करे के कहे कि पानी के हर एक बूंद हर एक पानी के गुट अत्यावश्यक है कहे कि है पानी से हमने के कृषि होला आगे फ्यूचर में का इस्तेमाल होला खाए पिए में कपड़ा धोई के कोनो भी काम नहीं बह लुत्तो धोई के घर धोई के तब पानी चहला पानी नहीं रही तो कुछ नहीं बह भैया तो यही खातिर हम ही लोगों से मांग कर अब जा कि पानी ज़ाया नहीं करे के जैसे कि जब तू गोभी ने खोला था वह सभी का तो पानी मुँह धोई के तो नल खोला नहीं छोड़िया है नल खोलिया इस्तेमाल करके ओके बंद कर दिया फिर रेन वाटर हार्वेस्ट यानी कि जो पानी बरसे लगा धो में रमासिया उ पनिया से सकब अपन घर आंगन साफ करे ठीक बा और फिर पानी जो है पानी बचा के रखे जाब दिन के सकब देखची में या गमेल में पानी भर के रख दे ताकि अब जैसे काम में सहेला थोड़ा मन करता लेगी मुगीम धोई के तो सकब उ पानी के उपयोग करे ये नहीं कि नल खोल दे वह पनिया बहते जाता ढेर को भी देख रही सर गोबिने खोल के लोग टेलीफोन में बात कराते उन सर फलना टेलीफोन कराता कि सुने कराता तैसे पानी गैस पी लो ढेर कोई जालन से नहाए तो गीत गावे लगे से खा बोल से भैया और एक दो घंटा ले से नहाए के एक घंटा तो गोबी नहीं सकला ही नहाए के ई गैस पी आज दे लो नहीं है तो कौन ची है भैया अपन साल डिब्बे में गेला नहा ले लगो 10-15 मिनट तक ओके अब नहीं कि पन्या खोल के अब गीत गावत है वह शाहरुख खान ने खा तो पानी गास्पी नहीं होए है बोला था तो ये खातिर सब कुछ मांग करत है जा हम की ओर से डुबरिया भी बोला था कि सिचुएशन क्रिटिक बहन के रिजर्वर में पानी सूखल जाता है दो दिन के पन्या जो बरसल नहीं सोचा कि ढेर मोटा पानी बरसल भाई है फिर कोई बोला था अरे प्रताप जी तू ही तो बोला था पानी बरसा हाँ पानी बरसल बा हाँ पर उतना पानी नहीं बरसता जितना चहला बरसे की देखा जी लोगों से मांग कर अब सत्य लोग से कि पानी गास्पी नहीं करिए खासकर भी लड़का लोग कौन से में बात है कैसे लड़का लोग पानी से खेले वन वो भी नहीं खोल दिले वन सा लॉन्च खोल दिले वन सा कुत्ता के नहावत तो वन सा कुत्ता इधर उधर भागा था पानी गास्पी होता तो पानी के हर एक बूंद वाटर इज ए प्रीशियस कमोडिटी वाटर इज लाइफ लाइफ इज वाटर तो पानी के सदुपयोग करिए भैया पानी नहीं बा चिंगन मिंगन पानी भरे पानी नहीं बा है तो अच्छा होता है इसे हमने खास हम खास सही सब लोगन के नाम और ये हवन जा हाँ है कि तो चली स्विट्जरलैंड के रंभा ये उसे को 3 को बेटियों कर घरोला और सब कर परिवार के नाम जानकी परिवार गुड लाइन से वन विशाल मंडल बिटली में उनकर बेटी और पत्नी के नाम अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया में वन मॉरिशस में कर माँ इंदिरा चिंताराम अमृता गणेश पिताओं से वन अभी टेलीफोन कर लन अगे तौरों खातिर और हे गाना चलावती सब सब श्रोतालों के नाम जो नहीं बखत हमने की सुना था बहुत प्यार के साथ और स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्त स्कूल की छुट्टी एवं सर हैप्पी स्कूल हॉलीडेज छुट्टी की भरपूर मजाला भी ले सेज उत ले भी घरेला बल इज्जत से परी ले खुल जाए कि हाँ एक महीना के अभी तक एक महीना के गमट हुई पर लड़का लोग कौन से मिलल बा हाँ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी करिए नहीं कि
साको बिग दिलो कोना में लीव नहीं छुआ तो थोड़ा बहुत है ना है पढ़े के रिवीजन करे के कहे कि थोड़ा जमते में हेलबत सब भुला जाए भाई खातिर कौन से मिलल बा मजा करे के गमत करे के पर गमत के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करिए जया लिबरी लीव ली के तसन पढ़िया जाए ताकि कोनो चीज नहीं भुलाई बा जा अभी सिर्फ जा पानी नहीं बा चल एक साथ सुनेंगी तो

दुनिया में दो प्रकार के लोग बैगो शाकाहारी और एगो मांसाहारी शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन और मांसाहारी यानी कि जो गोश्त मछली खा लें सर और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला था जागरूक हुआ था बोला था धेमना रोग जो है हमने के खान पान पर आवेला और दुनिया भर के डॉक्टर लोग भी बोलेला जितना कोई स्वास्थ्य से जुड़ल बा कि अगर शाकाहारी रब वेजिटेरियन रब तो ज़्यादा फायदा बा इन्हें बोला था कि आदमी की गोश्त मछली नहीं खाते हाँ जो कोई खाला रुचि अच्छा बा पर धेमना रोग से सकब बच्चे जो आदमी लोग वेजिटेरियन हुआ सर वो लोग सकें सर धेमना रोग से बच्चे जैसे कि अभी कोलेस्ट्रॉल बा डायबिटीज बा धेमना ऐसा बीमारी बा अगर लेकिन फल खेबा तो सबसे दूर रह और शाकाहारी बनने के धेमना फ़ायदा बा ये तो हर हॉट खातिर तो हर हृदय खातिर अच्छा है तो दिल की धड़कन अच्छा रहेला तो हर खून निमन से बहेला तो दिल में पाचन तंत्र बेहतर रहेला डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प करेला और वजन हमने के नियंत्रित रखेला यानी कि हमने के मोटापा से दूर रखेला वेजिटेरियन खाना रोग प्रतिरोधक क्षमता बा हमने के इम्यून सिस्टम के खूब जोरदार बनावेला और मधुमेह से हमने के बचावेला जाबित से फिर थेवना जैसे बोलिए अबोताज बा विजिटोरी बना सब दाल राजमा माफ करिए दाल राजमा चना सोया पनीर ये सब सकब खाई एक रो में प्रोटीन बा थे को बोला कि गोश्त मच्छी में खाई प्रोटीन बन नहीं हाई सब में सोया बा राजमा बा दाल बा चना बा और बेशक डॉक्टर लोग बोल ले जाता हमेशा से बोल ले आलावन सर अभी ये बोल हमेशा बोलते रहें सर कि जितना तू लेगिम खाइबा जितना सब्जी खाइबा उतना तो हला सौते अच्छा रही और जैसा अन्न वैसा मन हो कि नहीं

बेशक जब शाकाहारी भोजन करते हो, पूजा पाठ में हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो तुहर जो न पुआ लेको वजन वो भी कंट्रोल में आवेला। अब ढेर खा के चीज खाइब तो हर प्रकार की बीमारी होला, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब। तो अगर खान पान पर सब कुछ ध्यान दे तो सबके लासौती अच्छा रहे। जब तुम्हारा लासौती अच्छा

0: per la santé ini cara kita kunci sebab kerja. Biar kita sangat tiada lain pihak sembilan belas. Kebesaran kerabat Shobha ji. Hello Shobha.
1: Hello, namaste.
0: Namaste. Kaisi samachar?
1: ठीक
0: आज के दिन कैसे बीते शोभा बोले तो हाँ
1: अच्छा से
0: तोर बगल पानी तोर हाँ तोर बगल पानी रहा
1: घर पर खाना बनाया
0: क्या बनाया आज
1: काम किया
0: कुछ बनाया शाम की बोले तो कौन तरकारी बनाई आज
1: तो कहाँ से जाएंगे
0: हाँ ने कौन सी बनाई ला भोजन बोले तो
1: ठीक है लीला कारीमन के पंडित आप कारीमन के शादी के सालगिरह बा रामचंद कारीमन और राधा कृष्ण सुभगर अमृता सुभग चारों के शादी के सालगिरह बा
0: शादी के साल
1: नाती के
0: बोलो बोलो
1: एनिवर्सरी रहल जिमास के
0: हाँ
1: के लिए एनिवर्सरी के गीत डाल दी हो
0: आले भी खोजब सा पर अभी रुकी चली स्वास्थ्य जेकर अच्छा बात ठीक बा
1: बहुत
0: बहुत धन्यवाद
1: आपकी माता जी ठीक है
0: सब ठीक तो हर बगल सुनाओ लड़का लोग सब ठीक ठाक हम तोर से पूछ ओके हाँ और माता जी दुनिया भर के डॉक्टर पर लिगिन जितना खेवा अच्छा बात तू का सोचे ला बोला था डॉक्टर दुनिया भर के डॉक्टर बोले जितना लेगिम खाइबा फल खाइबा अच्छा बला सोते की
1: तो
0: अभी जैसे श्रावण मास चल रहा है कोई कार्यक्रम होन सा तो अच्छा बा ला सोते खातिर ना सब्जी फल खाइबा
1: हम खाते
0: हाँ लेगिम में हाँ छोटा से कितना बड़ी शुगर लेगी कितना बड़ी शुगर लेगी खेला माता जी कितना बड़ी शुगर
1: सब लोग खाली लेगी खेला
0: दाल रोटी सब्जी ना
1: सब सब करके सब्जी
0: हाँ कदुआ सब खाला पिपोंगाई सब लेगी हम थोड़ा से को बात बोलो कहीं कौन दिन अपनी पकड़ी से कटहर और दाल दाल में कटहर ऐसे जोड़ी रहल दाल गांव में कटहर दाल दे बगो पूरी छान दे बा
1: हाँ
0: हाँ और तू बनावे ला व्यंजन वेजिटेरियन खाए की बनावे ला
1: पपाय के अचार पोम काहो दाल के बनाए ला
0: हाँ आम के अमरा के आयुष के अचरवा अकेले अकेले खा ले प्रताप के नहीं याद कर ला थ्रासन अचार
1: रोज के हमारा लगे जाहेला
0: थ्रासन अचार रखे हम खातिर आओ अब तोहर लगे
1: पपाय काट के रखे हैं काल बनावा
0: अब बैठे तो असन अचार बना के रखे आओ ले जाए तोहर लगे शोभा जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ बहुत हमने जो कौन सी बैठा था बॉन्टी जैसे जब बॉन्ट बट प्यार बढ़ेला हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद हमने के ओके ओके आले तो हर गीत डाल दो फिक्र ना करिए तो जैसे भी माता जी बोलन कि वेजिटेरियन जो खाए के है शाकाहारी बहुत अच्छा है ढेर कोई खुशियाँ खाए के पर चाहे बनाए के भी जाने के खाए वाला ढेर बा पर बनाए वाला कमती बा और पकाए के थोड़ा लेता हूँ लगे रहा अगर नहीं जानते हो पकाए वेजिटेरियन तो देखिए यूट्यूब में सब भैया अभी सुनी करेला के भिंदाई बनी रहा मोगोज भिंदाई मोगोज तो अच्छा है खून खातिर ढेर कोई बनावे ला कहूँ कहूँ बेचारा पर जहला एगो फासो बनाए के जमी वो तीखा नहीं लगी कहे कि जो करेला है मोगोस है ओकर स्वाद थोड़ा आमे वो रहेला पर ढेर कोई बनावे ऐसा जोरी से वो खेब तो नहीं बोलबा कि तू मोगोस खाते हुआ अभी कहती सुन जा स्वास्थ्य जे कर अच्छा बा बहुत ही प्यारा सन गाना चलावती जा सासी बनवाली भाई खातिर सासी बनवाली फिर गीत चली इब्राहिम भाई पोर्ट्री से और राफिक मोहित तायाक से अवनुकर घरोली सब परिवार के नाम और महजबीन टैनवेद से रोजिदा हाईलैंड से हवन साथ में गीत चली राफिक मोहित तायाक से जिसे हम बोल रही और है गीत चलाते से क्यूपिप के अमृता के नाम फातमा हवन न्यू ग्रोव से बहुत बहुत प्यार के साथ उनकी सुनते हुन हाय डॉक्टर रंजू बहुत प्यार से अपन फियांसे के याद करते हुन और है गीत चलावते इस प्रतिमा दीना और सुजाता के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ सरजू भाई है गीत और कहती धर्म गंगू है गीत और कहती विरापन आप पाया रोसाई रूसोल मिसेस अनुआ फिर

Mrs. Ganauri और तलोक सब संगत यार लोग खातेर और जितना कोई मॉरिशस में बाहर विदेश में होंसा जितना कोई विदेश से मॉरिशस आ होंसा अपन वैकेंस पास कर यहाँ पर एक दिन तलोक के नाम स्वास्थ्य जिकर अच्छा बा और जितना कोई रोज के एक्सरसाइज करेरा मेडिटेशन करेरा योगा करेरा तह गीत लोग के नाम भी तो ला सौते अच्छा बात सब कुछ अच्छा बात संगत ला सौते हुए नहीं अच्छा रही तो कौन से जी के

मौसम के साथ साथ जैसे मौसम बदला समय भी बदला और मौसम तो बदलते रहे और समय के साथ इंसान भी बदलते रहे रहा और आज के इंसान छोटा से बड़ा ले जितना कोई के दिखवा सब कोई सोशल मीडिया पर सब कोई बन पोता पर रह रहा दिन रात अब पोता में कौन सी दिखे रहा तो ढेर मना चीज टिकटॉक बा इंस्टाग्राम बा गूगल बा यूट्यूब बा फेसबुक बा और सोशल मीडिया के अलावा होता है कौन सी है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो रहा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मिल चला कि कहाँ पर ही भूकंप आल बा कि कहाँ पर ही साइक्लोन आवता या कौन पे ही में कौन मैच फुटबॉल दिखल जाता एंड सब चीज़ हमने कि सोशल मीडिया पर मिल जाला विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स और अच्छा बात है पर ढेर वो नहीं चला पोता आप देखिए ढेर पोताबों में रखब तो आँख खराब हो जा रहा हाँ कि नहीं एगो लिमिट रहेगा गुमोदे आशाओं से सकब देखे नहीं बोलते नहीं हमू पोताब से भी करी रहा अपन टीचिंग में अपने एम बी सी के प्रोग्राम तैयार करी में रिसर्च वर्क में पोताब का इस्तेमाल करी रहा सब पर एगो लिमिट से अब ढेर कोई रात के सुतल बा पोता बा टिक टिक करेला मिसाज होते होता मिसाज विदा होता तो आधा रात बिता देला मिसाज विदा करते तो कब कब सुतबा बोला था और फजर के परेला बुने उठे काम करे जाए कि अब काम में जब तक काम में छुका कर रहते हो नींद लगाता तब पाथरों बोली उपे गए सोमय आला काज तब का करब ये खातिर भैया सर अच्छा है सोशल मीडिया है अच्छा है देखे के फॉलो करेगे पर गो मोदे हाशों से ठीक बा अगला गीत मजा कर ले मेरी जान फिर से न होगा जवान होय होय होय बुरा बुरा मत करो बुरा है शैतान जी हाँ मजा कर ले मेरी जान हाँ तो मजा छहरा करे कि कहे कि जिंदगी की कोनो भरोसा नहीं बा भैया यहाँ पर ही आल से और दो दिन के यहाँ रह सा दो दिन के बाद ये दुनिया छोड़ छार के परी जाए के कुछ भी साथ नहीं जाए न तो धन न दौलत न बैंक बैलेंस न डिग्री न पत्नी न बच्चा अकेला आल हुआ दुनिया में और यहाँ पर इसे परी अकेली जाएगी कठिन बना सबको बोले नहीं हम अपन संगे अपन धन लेके जाब नहीं भैया जब यमदूत आए ना तो तोरा घींच के लेके जाए सब कोई मौत से डरेला पर मौत एगो वास्तविकता एगो सच्चाई है जैसे हमने की जन्म होल बा तो एक दिन मृत्यु भी आया और हमने मान लिया सर कि जो जो वक्त एगो एगो मनुष्य के जन्म होला वही वक्त ओकर मृत्यु भी लिखा चला ब्रह्मा जुन है हमने के सृष्टि करता है ख्याते है तो जब हमने के बनावेला तो वही दिन तय हो चला कि व्यक्ति के मृत्यु कब कहाँ और कैसे हुई ये तो हमने नहीं सकब से जाने केवल ब्रह्मा विष्णु में ही जाने ला तभी कहते चल गीता पर नाचब जाए झूमब जाए मजा कर ले मेरे जान फिर से ना होगा जवान गीत चलाते सब कलकतिया परिवार के नाम त्रियोले से हवन फिर सोनन चिटन किए गए थोड़ा खरीदारी जीवन लाफलोगा से हेलो शालिनी हीरू करपति विशाल कर दुगो बेटी कर भाई कृष्णा और सब हीरू परिवार लाफलोगा से उनके साथ देवत हवन विक्रम निफोक बेजपुर से प्रीतम राज मिला है गे थोड़ो खातिर और केशव बिला बेजपुर से हवन हमने के साथ देवत हवन राजमन्ना हमने के साथ देवत हवन होरीलाल दिनु साथ में लोंग चिबुक राजा प्रवीण भैरव नानो स्टीव और सब हमने की संगतियाँ जो बहुत प्यार से हमने सुनते हैं रात के गीत और नाम और अरविंद गंगा हवन न्यूग्रो से कर पत्नी और कर सब संगतियाँ लोग के नाम और है गीत हमने चला जैसा डॉक्टर पूनम के नाम खासम खास मजा कर ले मेरे जान फिर से न होगा जवान हो

0: दुनिया में जरूरी नहीं है कि चेहरा ढे मना संगतिया रहे के वो चाहे एगो संगतिया रही पर समय पर तुहार साथ दे तुहार दुख सुख बांटी वही काफी बा ऐसे नहीं को संगतिया जो हमेशा तुहार साथ दे जब तुम मूवी काम करते हो तो तुहरा सही सही राह दिखाए तुहरा अच्छा कौन से दे ओके संगतिया बुला ला A friend in need is a friend indeed. अंग्रेजी लिखा कच्चा बोल लगवा कि दुख के समय में जो उन काम आवेला वही सच्चा संगतिया कहावेला। तैसर में सब जाए दोस्ती पर गीत निरज गुप मधु के गावल गीत है और सब बेस्ट फ्रेंड्स के नाम जितना संगतिया लोग के बेस्ट फ्रेंड बाय गीत तो लोग खतेर बहुत बहुत है प्यार के साथ रेशमा हवन बाकवासिम के साथ देवोत्थन रेशमा गीत तो और बेस्ट फ्रेंड उर्मिला के नाम और यहाँ पर एक संगतिया बाकवा से मिलब जा हेलो नमस्ते नमस्ते जी हेलो के हवा जा हाँ प्रेमिला जी सुस्वागतम
1: हाँ,
0: कैसे वा समाचार श्रावण मास के हार्दिक शुभकामना वेद मंत्र के उच्चारण हुआ था रोज के यज हवन हुआ था घर में
1: रामायण थोड़ा
0: थोड़ा समय और
1: हाँ के लिए गीत डालिया
0: बोला कौन गीत सुन रहा
1: नमस्ते
0: कौन सुनते हैं
1: नमस्ते नमस्ते
0: के गेला बाकी तो भोजपुरी बॉयज
1: गौरी हाँ गौरी
0: गौरी ब्रदर्स
1: जल्दी रिलैक्सिंग दे रहा सुनी और बहुत बढ़िया रहा
0: हाँ हाँ और आज के दिन कैसे बिताल प्रेमिला घर ही पर अला घर अला घूमे नहीं
1: रामायण में गई नहीं हाँ
0: हाँ शिव अभिषेक भी हुआ था देखते देखो छोटा छोटा कांवर बना के गंगा तालाब भी जाता हुआ जा

0: मंदिर में रोज उल्लास वाला काल मां वृंदावन
1: वृंदावन में और सब कुशल मंगल लासोंते सब ठीक ठाक
0: मंगल ये अच्छी दलिया स्वस्तिका सीनियर सिटीजन के लिए रामायण मंत्री
1: रामायण मंडली खातिर ओके प्रवीणा चला दे सब फिक्र ना करिया बहुत बहुत धन्यवाद शुभरात्रि तो चला भी संगतिया पर गुजी टीचरी दोस्ती दोस्ती कौन चिया जैसे हम बोले कि दुख के समय में जब कोई काम आवेला तो वो सच्चा संगतिया कहा रहा संगतिया ने कि लता बगे तो खाई पिया ही होता ये तो रोज की है जब खाई पिए रह तो सब कुछ संगतिया बन जा रहा पर जिन दिन तोहर जेब में पैसा नहीं बा भैया उ दिन अगर कोनो संगतिया के तोरा मिलल और तोरा तुझसे तो बतेलक तोरा मदद कर लग दुख के समय में तो उ संगतिया कहाला चल भी सुनब जाएगी तो आजकल की दुनिया में वो नीमन संगतिया मिले के बहुत कठिन से मिले पर बा नहीं बोलते नहीं बा कमती हो एगो कमागत सेंसेर लॉयल फिडेल बा दुनिया में पर उस अकेला कमती हो अगर तुहरे को ऐसा बेस्ट फ्रेंड बा तू खुश नसीब हो एगी तुहर नाम और तुहर बेस्ट फ्रेंड के नाम और जितना कोई भी रात के मिकी सुनाता है ड्राइवर लोग ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली धीरे धीरे गाड़ी चलाई है कहे कि रास्ता काफ़ी फिसलन बा खूब पानी बरसल बा दक्षिण में स ड्राइवर दोस्त लोग ढेर गापे नहीं करिए सीमा में गापे बिन दे गापे जाने लाना हाँ तो सोचिए कि तुहर परिवार तुहर इंतजार करता घर में तुहर पत्नी तुहर लड़का लोग तो धीरे धीरे गाड़ी चलाइए कुछ दिल आखुद स्वीप करिए और हमने के साथ देते रहिए जितना पसाजे लोग सुनाता है कि इतने लोग के नाम अगर नाइट चीफ करे जात हुआ या नाइट चीफ करके आवत हुआ तो गीत सब कुछ के नाम चले एक साथ सुने दोस्ती नीरज गुप्त मधु की आवाज़ में

संगते लोगी दुनिया के दस्तूर है जेकर लगे पैसा बा ओकर पीछे आगे पीछे सब कोई लिटू करेला जहां जाला सब कोई ओकर आदर सम्मान करेला और सब कोई खुशीरा धनी आदमी लोग के पर जेकर जेब में गो रुपया नहीं बा गो सिक्का नहीं बा कोई ओकर से दोस्ती नहीं करेला ये दुनिया के वास्तविकता है दुनिया के कटु सत्य है अगर तोहर लगे पैसा बा दौलत बा बैंक बैलेंस बा तो सब कोई तोहर आराम सलाम करी जोन दिन तोहर पैसा फिनी होल भैया तो तू जाने रह कौन हाल होला तो दुनिया ही सिवा आजकल का कर बा दुनिया के साथ जहाँ चले के समय के साथ जहाँ चले के ये खातिर बोले से भैया करी मेहनत करिए पैसा कमाइए ताकि सब कोई तोहरा खुशी रही अब जब दामाद गल सासू माँ लगी और सासू माँ जाना था दामाद धनवाद बात बोले कैसे मर बेटा अच्छा हुआ ना आओ बेटा बैठा बेटा तो कहला है जो पैसा है कैसे सब कोई के नचावेला ये पैसा है गोल और सब कोई के नचावेला गोल गोल तो सच्चे कहे आज पैसा के बोल बाला बा है पैसा नहीं रही तो कुछ नहीं रही पैसा बात तो सकबर अच्छा भोजन खाए पैसा बात वो अच्छा लुगा किने पैसा रही तो सकबर जाए रसात सिनेमा फिल्म देखे पन पत्नी लड़का लोग के पैसा बात तो ढे मना फोज जैसे को बिजनेस सकबर करे अपन जेबर इन्वेस्ट करे तो पैसा चेहला हो कि नहीं तो पैसा के आगे पीछे सब कोई घूमते रहेगा हम लोग घूमते रहे सर गोल गोल गोल गोल गोल मटोल मनी मेक्स अ वर्ल्ड गो राउंड पर ही पैसा जो है हाथ में नहीं रहेला है कि जैसे आवेला भैया कोनो न कोनो बहाना से पैसा खर्च हो जाला ये वास्तविकता कटु सत्य रियलिटी है कि जिन व्यक्ति के पास ढेर पैसा रहेला वो लोग के हाथ से पैसा हाली से चला जाला कबो हमार हाथ में पैसा बात है पैसा कबो तोर हाथ में कबो तोर हाथ में तो कबो हमार हाथ में ढेर को बोला पैसा मैल है हाथ के तो ढेर को बोला पैसा जो है घर के लक्ष्मी है सब कुछ के अपन अपन पॉइंट ऑफ व्यू बा तो हमने बोला लक्ष्मी माँ है पैसा पैसा बात तो सब कुछ बा भैया पैसा नहीं बता कुछ नहीं बा चंद्रदेव जिबोधन का सोचिरन पैसा के बारे में चल एक साथ सुने महाराणा प्रताप ले इंट्रियोली त्रोबिश के सब हरकू परिवार के नाम है गीत और सब जिराखन परिवार के लिए जंत्र योली रहेलन सा

जेब में पैसा बाता रोज के बनाने में भैया हरी गीत के संगे करिश्मा के गावा गीत जलसा बनाने के संगे भोजपुरी इधर का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। तो लोग एसएमएस और फोन कॉल्स का दिल शुक्रिया। हमने के टिकटॉक पर देख ला जा, हमने के रेडियो पर सुन ला जा, हमने के साथ दिला जा, बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 9 बजे से अभी रे कुछ ही सेकंड्स में रात के 11 बजे सुन बजा सुनहरे पल कार्यक्रम और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तो लोगों की मुलाकात हुई कल बुधवार की रात के बुधवार 5 अगस्त के फिर से मिलब सा कल रात के 9 बजे से 11 बजे ले यही चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का। तो कल तक हमने की इजाजत दे, जिंदगी में हमेशा खुश रहिए, बी हैप्पी, की स्माइलिंग एंड एंजॉय लाइफ, मुस्कुराती रहिए। शुभ रात्रि, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ हैं। हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, स्वीकार करें नीतुषा का कर जोर प्रणाम। एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में सबका अभिवादन है। श्रोताओं, हम रोज गाने सुनते हैं, हर तरह के गाने, हर मोड के गाने, लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी गाने होते हैं वे सब रागों पर आधारित होते हैं। चले आज इसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं।

म्यूजिक इंडस्ट्री की बुनियाद सिर्फ सुर और ताल पर नहीं बल्कि भारत की शास्त्रीय परंपरा में उत्पन्न हुए रागों पर टिकी हुई है। राग एक ऐसा आध्यात्मिक और संगीतिक आकार है जिसमें सुरों का संगम इस तरह से होता है कि हर राग एक अलग भाव, एक अलग रंग और एक अलग महसूस पैदा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि राग सिर्फ सुर नहीं होता, राग एक जीवंत भावना होता है।

गानों में रागों का प्रयोग उन्हें एक गहरापन, एक भावनात्मक गहराई और एक लंबी उम्र देता है। चाहे वो लता मंगेशकर के कोमल स्वर हो, रफी साहब की मीठी पुकार या किशोर कुमार की अंदाज भरी आवाज और दर्द में डूबे मुकेश जी, आधे से ज्यादा अमरन फिल्मी गानों की जात में कोई न कोई राग छुपा होता है। राग यमन के मधुर सुरों से प्रेम की नरमियत उभरती है तो राग भैरवी दर्द और विरह को गहरा रूप देता है। राग मालकोस रूहानियत और गंभीरता जगाता है। राग दरबारी शक्ति और राजसी भाव पैदा करता है और इसी तरह हर राग संगीत को एक हसीन पहचान देता है।

हिंदी फिल्म संगीत की खूबसूरती ये है कि उसने रागों को आम इंसान के दिल तक पहुंचा दिया। जो संगीत पहले केवल महफिलों और सभाओं तक सीमित था, वो सिनेमा के माध्यम से हर घर, हर गली और हर दिल तक जा पहुंचा। इस मेल मिलाप ने फिल्मी संगीत को एक अमरण विरासत बना दिया, ऐसा विरासत जिसे ना वक्त मिटा सकता है और ना ट्रेंड्स।

रागों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो संगीत को एक भाव संपन्न रूप देते हैं। एक ही गाना जब राग के साथ बंधा होता है तो उसमें ना सिर्फ मेलोडी बनती है बल्कि एक आत्मा जागती है। इसीलिए पुराने फिल्मी गाने आज भी हमारे दिलों को उसी तरह छू जाते हैं जैसे पहली बार सुनने पर।

हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री की सफलता का असली रहस्य मॉडर्न साहित्यिक एक्सप्रेशंस और प्राचीन राग परंपरा का मेल है। श्रोताओं, दोनों जब मिलते हैं तो संगीत न सिर्फ मधुर बनता है बल्कि अमर भी हो जाता है। इसीलिए राग

आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे, क्योंकि राग संगीत की रूह है और रूह के बिना कोई धुन कभी अमर नहीं होती। शुभ रात्रि, प्रणाम।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: एबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले, मिले

तो मोहब्बत के मारे झील किनारे प्यार की चांदनी में नहाते हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं जानते थे कि जिंदगी क्या दिखाने वाली है। बस अगले ही मोड़ पर बिछड़ने की घड़ी आने वाली है और फिर यूं हुआ

कि जिंदगी आजमाती है, हंसकर रुलाती है, लेकिन दिन बीते और वो फिर मिले मगर खुशियों के फूल नहीं खिले, क्योंकि वो जान नहीं पाए, वो मान नहीं पाए, दिल और धड़कन मिले तो पर अफसोस एक दूसरे को पहचान नहीं पाए।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।